सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 17, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:58:44 हो रहे हैं। उपस्थित हैं हम अपने प्रातःकालीन प्रसारण के साथ। आज के प्रसारण में मीता आप सभी का स्वागत करती है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। खेती किसानी में आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं खरीफ दलहनी फसलों की खेती के बारे में। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
3: खरीफ मौसम में दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, अरहर और कुल्थी की खेती की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसल प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, अतः इसे खाने में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। जून के आखिरी सप्ताह से पूरे जुलाई तक अरहर, उड़द, मूंग लगा सकते हैं, लेकिन कुल्थी यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसकी बुआई का उचित समय अगस्त है। किसान भाई खेत तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे खेत की गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना दें। अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह बिखेर दें। इनकी खेती ऊपर की जमीन में करना चाहिए, जहां पानी का उचित जल निकास की जो है वो व्यवस्था है। अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नाली में डालकर उपयोग करने से उपज में वृद्धि होती है। अरहर की फसल के लिए 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। अगर आप संकर अरहर ले रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी होगा। उड़द और मूंग में बीज दर 30 किलो प्रति हेक्टेयर और कुल्थी में 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग करना उचित रहता है। इन फसलों के उन्नतशील प्रभेदों में अगर हम अरहर की बात करें तो बिरसा अरहर एक है। इसकी बुआई की जो दूरी है कतार से कतार 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर है। तैयार होने का समय बिरसा अरहर एक जो है करीब 185 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं और इसकी औसत उपज है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सबसे बड़ी बात है इसके जो विशेष गुण हैं वह है कि यह उकठा और बांझपन दोनों अवरोधी है और फली छेदक के प्रति सहनशील है। इसीलिए किसान भाइयों को अगर अरहर की खेती करनी है तो वो बिरसा अरहर एक को लगा सकते हैं। इसी तरह बहार भी एक अच्छी किस्म है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके तैयार होने का समय करीब 225 से 30 दिन है। औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह बांझपन रोग से अवरोधी है और फली छेदक के प्रति सहनशील है। इसी तरह ICPH 2671, अगर आप इस किस्म को लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तैयार होने का समय करीब 200 दिन है और इसकी जो उपज क्षमता है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह भी उकठा और बांझपन रोग से अवरोधी है। इसी तरह अरहर की एक बढ़िया किस्म है उपास 120। यह करीब 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें भी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और सबसे बड़ी बात है कि यह मिश्रित खेती के लिए अच्छी मानी गई है। इसी तरह उड़द की T9 पंत U19 लगा सकते हैं। मूंग की उन्नत किस्मों में खरीफ K-851, पूसा विशाल, गर्मा SML 668, इसी तरह कुल्थी के लिए बिरसा कुल्थी एक लगा सकते हैं।
2: खरीफ दलहनी फसलों की खेती के बारे में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का जन्म यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। उनकी जीवन शैली अद्भुत थी। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है जिसके कथ्य अत्यंत प्रेरणादायी हैं। एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति निराश और हताश होकर आया। उसने बड़ी विनम्रता से उनसे प्रार्थना की, मैं अपने जीवन की असफलताओं से परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे जीवन में सफल होने के लिए कोई गुरु मंत्र बता दें। सुकरात थोड़ी देर मौन रहे, फिर अपने स्थान से उठे और उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे लेकर आ गए। देखते देखते वे दोनों नदी में चलने लगे और अंततः नदी के मध्य में आ गए। हैरत तब हुई जब सुकरात उस व्यक्ति का सिर पकड़कर नदी में डुबोने लगे। इस कोशिश में हर बार व्यक्ति सांस लेने के लिए छटपटाता और अपना सिर पानी से बाहर निकालने की शिद्दत से कोशिशें करता, लेकिन हर कोशिश के साथ सुकरात उसका सिर उतनी ही तीव्रता से नदी में डुबो देते। अंत में सुकरात उसे नदी के किनारे ले आए। बाहर आकर याचक ने खुली हवा में राहत की सांस ली और क्रोधित होते हुए पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? ऐसे तो मेरी जान चली जाती, इसमें सफल होने का कौन सा गुरु मंत्र छिपा हुआ है? सुकरात ने धैर्य भाव से समझाया, जब नदी के मध्य मैं तुम्हारा सिर पानी में डुबो रहा था तो तुम्हें सबसे अधिक किसकी जरूरत महसूस हो रही थी? सांस के लिए हवा की, व्यक्ति ने अविलंब जवाब दिया। सुकरात और भी गंभीर होते हुए बोले, सफलता के लिए यही गुरु मंत्र है। जीवन में देखे गए सपने को साकार करने के लिए तुम में उसी प्रकार की बेचैनी होनी चाहिए जो नदी के मध्य में तुम में सांस को पाने के लिए थी। सफल होने के लिए यही छटपटाहट सफलता का कालजयी गुरु मंत्र है। इस दुनिया में सफल होने का सपना कौन नहीं देखता है, लेकिन इसके लिए हम में त्याग, तत्परता, समर्पण का अभाव होता है। लिहाजा सफल होने के लिए जब आपका मन बेचैन रहने लगे, आपको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो ये मानकर चलिए कि आप जीवन में सफलता के सोपान पर आरूढ़ हो गए हैं।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, सुबह हो चुकी है, आप सभी जग चुके हैं, अपने अपने कामों में भी लग चुके हैं। सुबह का ये वक्त काफ़ी निर्मल, काफ़ी सुंदर होता है। प्रकृति अपने पवित्र रूप में होती है। जब आकाश पर सूर्य की लालिमा छाती है तो मन बिल्कुल निर्मल पवित्र सा हो जाता है, और ऐसे पवित्र माहौल में, ऐसे पवित्र समय में पवित्र हृदय भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। सब कुछ प्रकृति को अपने समीप महसूस करते हुए ईश्वर को भी अपने समीप महसूस करता है।

ज्ञान और कर्म से ऊपर उठकर भक्ति में भाव का सबसे अधिक महत्व है। यदि हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम या भाव नहीं तो कोई भी अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, व्यक्ति के मन से ईर्ष्या, लालसा और अहंकार समाप्त होने लगता है। भक्त खुद को दीन और प्रभु का सेवक समझने लगता है।

भक्ति का अर्थ है भरोसा, भक्ति का अर्थ ही है विश्वास, उस परम पिता पर विश्वास, उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा, एक जिसके होने से ही अपने सभी दुख कम लगने लगते हैं। लगता है कोई है जो हमारा भी रखवाला है, कोई है जो हमारे सभी दुखों को तार सकता है।

हमारे सामने आते हैं, हम उन्हें उनकी लीलाओं के साथ ही आत्मसात करते हैं। उनके बाल रूप के दर्शन कर हर कोई आनंदित होता है।

सच्चा भक्त धैर्यवान होता है, छल कपट रहित होता है, दया और क्षमा से युक्त होता है, प्रेम स्वभाव से युक्त होता है, फल की आशा न रखते हुए भक्ति करता है, त्याग करता है सांसारिक इच्छाओं का और भरोसा रखता है अपने आराध्य पर कि अगर उसके आराध्य उसके साथ हैं तो फिर उसका कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रखवाले उनके परम आराध्य हैं।

जब आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, फिर आपका कोई अहित नहीं कर सकता, इस विश्वास को बनाए रखें। आज की सुबह आपके लिए मंगलमय हो। कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने

लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे से सुनेंगे समाचार हिंदी में, और 7:05 का समय होगा स्वास्थ्य चर्चा के लिए, जिसमें आज आप डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल से ली गई भेंट वार्ता सुनेंगे, मोबाइल पर रील का चस्का और सेहत पर पड़ता दुष्प्रभाव, उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। सुबह सुरीली का समय होगा 7:15 और 7:45 पर आप सुनेंगे खुला आकाश में अशोक कुमार की वार्ता उपभोक्ताओं के अधिकार, प्रस्तुति होगी।

प्रभु शरण की। समाचार प्रभात आप सुन सकते हैं 8 बजे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर होगा प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर लोक रंग में आज आप सुनेंगे मुंडारी लोकगीत, कलाकार होंगे कृष्णा बड़ाइक और साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन होगा 9 बजे और 9:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे जीएन उर्मा का गिटार वादन।

10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बढ़ते कदम। इसमें आज आप सुनेंगे आशुतोष कुमार वीरेंद्र रावत से ली गई भेंट वार्ता, उनसे बातचीत करेंगे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। जोहार रांची, हमारा यह दैनिक प्रसारण आप सुनेंगे 10:30 से। 11:30 होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और महिलाओं को संबोधित होगा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन के 12 बजे। चर्चा होगी बारिश में कैसे करें घर की देखभाल। सूत्रधार होंगी रानी शुक्ला और वंदना राय, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और दिन के 1 बजे होंगे हिंदी में समाचार। 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार 1:10 पर। 1:20 का समय होगा कार्यक्रम अनुरंजनी के लिए। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। जय भारती, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 2:30 पर। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। 3 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं, और 3:30 पर रांची मेलोडीज। 4 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, और 4:02 पर बढ़ते कदम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं। 4:35 पर संध्याकालीन प्रसारण में सांझ सरगम सुनेंगे, और 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे 5:02 से, और 5:30 पर होगा हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक।

0: श्रोताओं, अभी आप संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुरानी

में संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में आइए आज सुनते हैं ये भेंट वार्ता जो ली गई है डॉक्टर पवन कुमार वर्णमाल से। विषय है मोबाइल पर रील का चस्का और सेहत पर बढ़ता दुष्प्रभाव। उनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों वर्तमान समय मोबाइल का है। मोबाइल के सहारे हम दिन भर चिपके रहते हैं, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, बच्चे हों या फिर अन्य वर्ग के लोग हों। हर समय मोबाइल से चिपके रहना, स्क्रॉल करते रहना, रील का चस्का उन्हें लगा हुआ है और तरह तरह की जानकारियां हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, तो रील देखने के चक्कर में समय बीत जाता है, मोबाइल पर आंख की नज़र रहती है और ऐसे में समय गुजरता जाता है, अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, सर में दर्द, आंखों में जलन और कभी कभी तो हम अवसाद के भी शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ये रील देखने का चस्का क्यों पड़ गया है और इसका क्या नुकसान है, हमारे सेहत पर किस प्रकार ये प्रभाव दिखला रहा है और हमारे समय को ये कितना बर्बाद कर रहा है।

0: और कैसे इनसे हम बच पाएं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। रील देखने का चस्का लोगों में पड़ा हुआ है, छोटे बच्चे हो, नौजवान साथी हो या फिर हमारे बुजुर्ग साथी हो, दिन भर रील चलता रहता है, क्या कारण है?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कोई ऐसा उम्र के लोग नहीं है जो रील को नहीं देखते हैं, स्क्रॉल नहीं करते हैं, उससे मजा नहीं लेते हैं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 10 साल के लोग, 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के उम्र तक के लोग इसका जनरली सेवन करते हैं और उसमें ये रिसर्च हुआ है और उसके आधार पर ये देखा गया है कि इन लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहिए हुआ है कि लोगों में रील का चस्का क्यों लगता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि रील हम लोग मोबाइल के द्वारा देखते हैं और कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का चस्का तभी लगता है जब वो चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव हो, यानी वो चीज़ जो रील बनाया जाता है उसमें जो वीडियो बनाया जाता है या जो कुछ दिखाया जाता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि जो मुझे उसको देखने में मन लगता है, उसे देखने में मज़ा आता है, इसके कारण से हम उसको देखना पसंद करते हैं और एक रील को देखने के बाद फिर मन करता है कि दूसरा रील हम देखें और फिर इस तरह से हम देखते चले जाते हैं और इस तरह से हमारी समय बर्बाद होती जाती है। एक दूसरा फैक्टर है इसके कारण से इसका चस्का लगता है, ये जनरली जिसके पास समय होता है वो ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। मेरा कहने का मतलब है सब लोग देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होते हैं जिसके पास ज़्यादा समय होती है और क्रिएटिविटी उसमें जिसमें कम होती है, वो लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि लोग रील का चस्का, मतलब रील क्यों बनाते हैं। रील बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें एक अलग तरह की एक चीज़ें होती है जिसमें खुद को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना है, हमारा फॉलोअर बनाना है और अपना जो एक्टिविटी है उसके लोगों को दिखाना है और कभी कभी तो ये एक इनकम का सोर्स भी बन जाती है और इस तरह से लोग रील एक के बाद एक बनाते रहते हैं और लोगों को इससे इसके साइट पर भेजते रहते हैं, उसके मोबाइल में भेजते रहते हैं, जिसके कारण से लोगों में रील की आदत लग जाती है।
0: जी तो रील का चस्का लोगों को अपना गुलाम बना रहा है, मोबाइल पर उंगलियां नाचती रहती हैं लेकिन उन्हें ये भान नहीं होता है कि समय कितना निकल गया।
1: बिल्कुल,
0: और समय निकलने के साथ साथ मन मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर रहा है, तो क्या क्या नुकसान हो जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हमें तो ये भी सुनने में आता है कि आंखों में जलन, सर का भारी होना, सही से नींद नहीं ले पाना, रात को देर तक मोबाइल चलाना और रील देखते रहना।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज़ें आपने कहा और यानी रील के कारण से हमारे सेहत पर बुरी असर पड़ता है, चाहे हमारी शारीरिक सेहत हो, शारीरिक हेल्थ हो या मानसिक हेल्थ हो, दोनों पर बुरा असर पड़ता है। सबसे कॉमन चीज़ है रील की देखने वालों के चस्का, रील का चस्के वाले लोग को, रील देखने वाले को के साथ है कि इसका एडिक्शन हो जाती है, यानी अगर उसे रील नहीं मिले तो उसके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें होती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि एडिक्शन में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है लोगों को और एक फिजिकल डिपेंडेंस होता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब है यदि रील उसे नहीं मिले तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो खोजता रहता है कि किस तरह का फिर रील मिले और फिर उसको फिर देखने की कोशिश करता है, यानी एक साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है। फिजिकल डिपेंडेंस की बात अगर करें तो अगर नहीं मिलने के कारण से उनमें नींद की कमी आना, मतलब अनिद्रा जो कह सकते हैं, इरिटेशन होना, भूख नहीं लगना, सिर दर्द होना, इत्यादि लक्षण उसमें मिलने लगता है और जैसे ही रील फिर उसे मिलता है, मतलब इस तरह की वीडियो उसे मिलता है, इस तरह का मटेरियल मिलता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो एडिक्शन एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये रील के साथ जो पैदा होती है, जिसको रील का एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन का एक पार्ट है जो उसको हम रील एडिक्शन कहते हैं। इसके कारण से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है, यानी अगर कोई भी आदमी इसमें फंस जाए, रील का चस्का लग जाए, तो जो शारीरिक और मानसिक विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसमें समय की भी बहुत बर्बादी होती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय कैसे ही आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा गुजर गया।

0: है, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव होता है, उसके उसका बातें इतनी अच्छी, उसको वीडियो और जो ऑडियो है इतना अच्छा लगता है कि समय पता नहीं चलता है और हमारी समय की बर्बादी होती है। एक दूसरी चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारी क्रिएटिविटी का लॉस होता है। मतलब हमारे दिमाग में जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि अगर हम समय बर्बाद कर देंगे ये सब सारी चीज़ों में, तो हम क्रिएटिव कैसे हो पाएंगे? तो क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है लोगों में, अच्छे काम नहीं कर पाती हैं। और जैसा मैं बताया कि अगर इसकी एडिक्शन हो जाती है, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो डेवलप होता है वो है नींद की कमी हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, एंजाइटी डेवलप करना, मेंटल स्ट्रेस होना, इरिटेशन होना, कभी कभी गुस्सा आना, और जैसा आपने बताया है कि कभी कभी अवसाद यानी डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं इसके कारण से, रेगुलर यूज करने के कारण से, जब एडिक्शन लोग में कन्वर्ट हो जाता है ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सेहत में नुकसान जो पहुंचती है, ये सब चीज़ें हैं। और सब एक और चीज़ें हैं कि जब हम रील का एडिक्ट हो जाते हैं, इसके कारण से हमारे रूटीन पर बुरा ही असर पड़ता है। यानी जो हम टाइम पर सो नहीं पाते हैं, टाइम पर खा नहीं पाते हैं, टाइम पर अपना रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं, ऑफिस का काम नहीं कर पाते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये सब सारी चीज़ें प्रभावित होती है। यानी मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके कारण से हमारी पारिवारिक और सामाजिक रिलेशनशिप में भी कमी आता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो इन सारी चीज़ें नुकसान की कैटेगरी में आता है इसके सेवन, रील के सेवन करने से।
1: जी, कैसे हम बाहर हों इस रील के चस्के से, और जो इतना समय हम इस पर लगाते हैं उस समय को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम लगाएं तो हमारा भी फायदा होगा और देश समाज को भी लाभ होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मोबाइल का यूज करें, मिसयूज नहीं करें। मोबाइल को पॉजिटिवली यूज करें, जो ज़रूरत है उतना ही यूज करें। अगर मोबाइल की ज़रूरत नहीं है तो उसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट नाइट मोबाइल को ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आप मोबाइल आपका खुला रहेगा तो आप परेशान होंगे। रील एवं मोबाइल का एडिक्शन से बचें। जो रेगुलर एट्रैक्टिव वीडियो को कम से कम देखें, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो बार बार मन करेगा देखने के लिए, तो ऐसा नहीं करें। रूटीन को अपना मेंटेन करें, यानी टाइम पर सोना, खाना पीना, प्रॉपर डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना, पानी प्रचुर मात्रा में पीना, और रूटीन को मेंटेन में जैसे योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, ये सब सारी रूटीन वे में पूरा करना चाहिए। फैमिली और फ्रेंड को भी टाइम देने की ज़रूरत है, उसके साथ इंटरेक्शन को कम नहीं होने दें। समय को बर्बाद कभी नहीं करें, खुद को क्रिएटिव बनाएं, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, यानी मनोचिकित्सक की या और कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो उनकी सलाह जरूर लें अगर आप इसका एडिक्ट हो गए हैं तो अगर ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत हद तक आप इससे बच सकते हैं।
1: लोगों से मिलिए, दोस्त बनाइए, और घर परिवार को पर्याप्त समय दीजिए। यदि आप ज़्यादा समय मोबाइल में लगाएंगे तो आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, घर परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो क्या कहेंगे लोगों को, मिलते जुलते रहिए, दोस्त बनाइए, और कोशिश कीजिए कि मोबाइल के सहारे ना मिलकर उनसे प्रत्यक्ष जाकर मुलाकात करें।
0: हेल्दी जो रिलेशनशिप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों और फैमिली के बीच में, और अपनी रूटीन को मेंटेन करने की जरूरत है। खुशहाल रहने के लिए ये सब चीज़ से, रील जैसी और मोबाइल जैसी चीज़ जो मिसयूज ऑफ मोबाइल से बचने की ज़रूरत है। यदि ये सब चीज़ हम करते हैं तो अपने आप को बहुत खुशहाल रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं, एवं दूसरे को भी खुद प्रभावित कर सकते हैं, उसको भी सीख मिल सकती है अगर हम ठीक रहते हैं तो।
1: जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप मोबाइल का यूज करें, और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक समय घर परिवार को दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल, प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ रांची, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और कम से कम मोबाइल का यूज करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज करें, और रील का जहाँ चस्का लगता है तो समय की बर्बादी और बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
2: मोबाइल पर रील का चस्का और सेहत पर पड़ता दुष्प्रभाव, अभी आप डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। उनसे बातें कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

कार्यक्रम सुबह सुरीली में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, सुबह की अच्छी बातें, सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को ऊर्जावान और खुशहाल बना सकते हैं। तो उठिए और मुस्कुराइए, क्योंकि सुबह हो चुकी है। प्रकृति अपना सौंदर्य चारों तरफ बिखेर रही है। एक ऊर्जावान दिन आपके इंतजार में है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हैसियत का ये गीत यशुदास की आवाज में, और अब आइए सुनते हैं फिल्म हीरो का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, आपके पास हर सुबह दो विकल्प होते हैं, या तो आप सोते रहें और सपने देखते रहें, या उठें और उन सपनों के पीछे भागें। तो कहिए क्या ख्याल है आपका। हम तो समझते हैं कि आपको अब उठ जाना चाहिए और अपने सपनों को साकार होते देखना चाहिए। इतनी प्यारी सुबह मिस करना कहीं से भी अच्छा नहीं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम सुबह सुरीली इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोस्तों, सुबह का एक अर्थ सकारात्मकता भी होता है। काली रात बीत चुकी होती है, सुबह सूर्योदय के साथ हम नई आशा, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। दुख आए तो आए, कोई बात नहीं, हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे और सुख की कामना, सुख की लालसा, सुख की उम्मीद तो करेंगे ही।

राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ती का ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। बोलते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस प्यारी सी सुबह को और भी प्यारा बनाते हैं और सुनते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-07 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुरीली।

रंग भरे मौसम से रंग चुरा के फिल्म बंदिश के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसके साथ ही कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं अशोक कुमार की वार्ता उपभोक्ताओं के अधिकार विषय को लेकर। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, कम माफी, हर जगह ठगी, जैसे ऐसे तमाम संकटों से घिरा हुआ। यही कारण है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बने हैं। उपभोक्ता अपने अधिकार एवं कानूनों को जानकर ठगी के शिकार होने से बच सकता है। आम उपभोक्ता अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। वर्तमान उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की दुनिया में हर उपभोक्ता को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना समय की मांग है। हमें सबसे पहले यह जानना और समझना होगा कि आखिर उपभोक्ता है कौन। क्या हर व्यक्ति उपभोक्ता है? क्या वे अपने अधिकार के प्रति सजग है? उत्तर है, जो व्यक्ति वस्तु

और सेवाओं का उपभोग करता हो और उन वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य चुकाता हो या चुकाने का वादा करता हो, वही सही माने में उपभोक्ता है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद में पारित हो चुका है। इस कानून के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कानूनी तौर पर की जाती है। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। जीवन एवं संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार। उपभोक्ता पदार्थों एवं सेवाओं का मूल्य, उनका स्तर, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा एवं प्रभाव के संबंध में सूचना पाने का अधिकार। अपने पक्ष की सुनवाई का अधिकार। साथ ही इस आश्वासन का भी अधिकार कि सभी उपयुक्त मंचों पर उपभोक्ता हितों को हर हाल में ध्यान में रखा जाएगा। इसी तरह अनुचित व्यापार प्रक्रिया अथवा उपभोक्ता शोषण से संबंधित शिकायतों की सुनवाई का अधिकार हर एक उपभोक्ताओं को। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा छोड़ी गई कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर यह कानून सभी उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। इस कानून के दायरे में निजी, सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र आ जाते हैं। उपभोक्ता अपने अधिकार का कब और कहां प्रयोग करे यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह जानना भी आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए कहां क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस प्रकार से इस कानून का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब किसी उपभोक्ता को लगे कि वस्तु या सेवा में कोई अनुचित या खराबी है जिसके कारण उसे हानि पहुंचती है, उस स्थिति में वह इस कानून का प्रयोग कर उचित उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत कहां की जाए, यह बात सामान्य सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख से कम है तो उसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज की जाएगी। यदि यह राशि 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम है तो राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष, और यदि 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत सादे कागज पर लिखकर दर्ज कर सकते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण, पता तथा शिकायत से संबंधित लक्ष्य तथा कब और कहां का मामला है आदि विवरणी होनी चाहिए। शिकायत में आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी संलग्न होनी चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। उपभोक्ता या पीड़ित पक्ष इस कार्य के लिए नाम मात्र का न्यायालय शुल्क फोरम में जमा कर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम को किसी उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय शिकायत दर्ज करने के 21 दिनों के अंदर करना होता है। विपक्षी के द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर उपभोक्ता फोरम को उपभोक्ता की शिकायत पर अपना फैसला लेना होता है। यदि शिकायत से संबंधित वस्तु का प्रयोगशाला में परीक्षण होना है तो ऐसी शिकायत पर फोरम को 5 महीने में अपना निर्णय लेना होता है। आदेश का पालन न करने पर दंड का प्रावधान। उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन नहीं करने पर दोषी निर्माता या सर्विस देने वाले संस्थान को कम से कम 1 माह का कारावास का दंड मिल सकता है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक किया जा सकता है अथवा कम से कम

0: 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जा सकता है। दोनों सजाएं एक साथ ही मिल सकती हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के खिलाफ अपील। यदि कोई उपभोक्ता या आरोपित व्यक्ति या उत्पादनकर्ता जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील में जा सकता है। 30 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी राज्य उपभोक्ता आयोग अपील को स्वीकार कर सकता है। अगर जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के अंतर्गत अपीलकर्ता को विपक्ष की कोई रकम अदा करनी है तो उसे उस रकम का 50 या 25,000 रुपया जो भी कम हो अपील करने के पहले जमा करना होगा, तभी राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की जा सकती है। अपील दायर करने के बाद राज्य आयोग एक समुचित समय सीमा में अपना निर्णय देता है। यदि राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय से भी व्यक्ति सहमत न हो तो इसके खिलाफ अंतिम अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में कर सकता है। उपभोक्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि यदि भी किसी भी स्थिति में सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं से असंतुष्ट है या जिस वस्तु का वो उपयोग कर रहे हैं और उस वस्तु में त्रुटियां पाई जाती है तो उन्हें अपने जिले में जिला उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत अवश्य दर्ज करनी चाहिए। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और संबंधित कंपनी या सर्विसदाता को हर्जाना का भुगतान करना पड़ा है। इससे उपभोक्ताओं को तो लाभ मिला ही है, साथ ही साथ उपभोक्ता का जो एक जागरूकता अभियान है उसको भी बल मिला है। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता को एक निर्धारित समय सीमा में यदि वे अपनी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है या फिर किसी उत्पाद से संतुष्ट नहीं है तो वे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इस शिकायत को दर्ज करने में किसी प्रकार का कोई कानूनी झंझट नहीं होता है और वे आसानी से एक समय सीमा के अंतर्गत न्याय पाने के हकदार होते हैं और इससे उनको लाभ मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे उपभोक्ताओं के अधिकार विषय पर अशोक कुमार की वार्ता, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। खुला आकाश यहीं संपन्न हुआ।

श्रोताओं, आइए हम आपको अपने संध्याकालीन प्रसारण के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 6 बजे से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण खेतीबारी और 6:32 से हमारी दुनिया। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर होगा हमारा दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8 बजे से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और 8:30 पर सुर्खियों में समाचार संध्या का आज का अंक आप सुनेंगे। रात्रि 8:45 पर 9 बजे News@9 और 9:15 से उर्दू में समाचार आप सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है 9:30 से और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक। 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। पुनः हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे और 11:05 पर समाचार सुनेंगे आप अंग्रेजी में। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी हमारे संध्याकालीन प्रसारण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने

0: के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीए

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही कार्य थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृहमंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
7: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violence.

0: Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. Colombia faltered when Davinson Sanchez smashed his spot kick against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Vargas scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by two goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
2: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in Focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull runs turn 100. While the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी. पहले मुख्य समाचार. नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज. मुख्यमंत्री देश के सामने रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप और पहली एआई नीति का ड्राफ्ट. शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ. केंद्रीय एजेंसी को सौंपे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज. झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला. सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारक शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन के लिए मान्य. जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन. अब 21 से 23 जुलाई तक होगा आयोजन. जेएसएससी परीक्षा से टकराव के कारण आयोग ने लिया निर्णय. और राज्य में मॉनसून सक्रिय. मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट. और अब समाचार विस्तार से. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में झारखंड का डिजिटल रोडमैप और पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 का ड्राफ्ट पेश करेंगे. दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने, नई टेक्सटाइल और टूरिज्म पॉलिसी के प्रारूपों पर भी देश विदेश के विशेषज्ञों के साथ सीधी चर्चा की जाएगी. कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
5: जो दिल्ली में जो कार्यक्रम रखा गया हो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा. और ये एक सुखद परिणाम भी सामने आया।

0: में आप देखेंगे तो वन ऑफ द मॉडल स्टेट कहा जा सकता है जहां इस तरह का मुआवजा का प्रावधान है। था कि रिवॉल्विंग फंड नहीं होता था कि उसमें से आप विड्रॉ करके, और जैसे 1 लाख रुपए तो नगद देना है, तो ये कहाँ से दिया जाए, तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है, तो अब आसानी होगी।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से शराब घोटाले के सिलसिले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। समन के बाद कल सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे उरांव रात 8 बजे वापस लौटे। उनके द्वारा सौंपे गए आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी आगे का निर्णय लेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नियमित नियुक्ति से पहले पारा शिक्षक के रूप में की गई निर्बाध संविदा सेवा को भी पेंशन के लिए मान्य माना है। अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ पेंशन व अन्य लाभों के भुगतान का आदेश दिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में सड़क बनने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर ढंग से पहुंच सकेंगी। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर राजीव रंजन शर्मा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए सीसीडीसी डॉक्टर अब्दुस सत्तार को कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉक्टर शर्मा के इस्तीफे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। राज्य पुलिस ने नागरिकों से गुम या चोरी हुए मोबाइल की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल का उपयोग करने की अपील की है। नागरिक पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी और पुलिस शिकायत अपलोड कर फोन ब्लॉक करा सकते हैं। फोन मिलने पर इसे इसी पोर्टल से अनब्लॉक भी किया जा सकता है, जिससे इसका दुरुपयोग रुकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियां बदल दी है। अब यह परीक्षा 21 से 23 जुलाई तक होगी। JSSC परीक्षा से टकराव के कारण यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा बैकलॉग मुख्य परीक्षाएं 25 से 27 जुलाई और 1 से 3 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन और ज्योति सिंह मथारू ने गुमला में जन सुनवाई कर अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों की समस्याएं सुनी। आयोग की टीम ने कल्याण छात्रावासों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन ने कहा कि जन सुनवाई में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला प्रमुखता से सामने आया है। उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है।
2: एक्चुअली अभी हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा के हर जिला में माइनॉरिटी के एजुकेशनल स्टेटस का जानकारी ले रहे हैं। उनके संस्थान का क्या स्थिति, वहाँ पढ़ाई माइनॉरिटी जो हॉस्टल है उन लोग का क्या स्थिति है, इसी क्रम में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं सब जिला में, ताकि हम लोग को राज्य स्तरीय को बैठक हम लोग करना है बहुत जल्द है उसके लिए, ताकि हम रिपोर्ट बना सके, जानकारी ले सके कि हमारे माइनॉरिटी के स्कूल में क्या संचालन में क्या दिक्कत हो रही।
1: वहीं कटकम साड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना पर डांड गांव से 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को दबोचा है। हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के 2 सदस्यों को लोडेड पिस्टल और स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। SP अमन कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीछा कर इन्हें पकड़ा।
2: अभी हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा के हर जिला में
3: हजारीबाग जिले में राहुल दुबे गैंग के द्वारा कई घटनाएं यहां पर हाल में की जा रही थी, इस पर कार्रवाई करते हुए उसी क्रम में 6-7 की रात्रि को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो दुबे गैंग के हैं वो मांडू जाने वाले रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी से मूवमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर चेकिंग लगाई गई और जो उतर के उससे भागे उसको पकड़ा गया। इनके पास से हथियार और गोली बरामद की गई।
1: गुमला जिले के पालकोट में अज्ञात

अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के संचालक मनीष सोनी से हथियार के बल पर करीब 25 से 30 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व वॉलीबॉल दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के सिंथेटिक मैदान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। खेल समन्वयक डॉ. राजेश गुप्ता और राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षक विजय वर्मा ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास की सलाह दी और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईडी ने पूछा, शराब नीति से किसे फायदा हुआ? रामेश्वर उरांव बोले, जानकारी नहीं। प्रभात खबर की सुर्खी है, पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 7304 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी विशेष परीक्षा, जेएसएससी को भेजा गया प्रस्ताव। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, आज निवेशकों से करेंगे संवाद। दैनिक जागरण लिखता है, पेंशन के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे वृद्ध की मौत, सीएम के आदेश पर जांच शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज। मुख्यमंत्री देश के सामने रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप और पहली एआई नीति का ड्राफ्ट। शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ, केंद्रीय एजेंसी को सौंपे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारा शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन के लिए मान्य। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन, अब 21 से 23 जुलाई तक होगा आयोजन। जेएसएससी परीक्षा से टकराव के कारण आयोग ने लिया निर्णय। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण और आपके साथ

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लोक रंग में आइए सुनते हैं कुछ मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं कृष्णा बड़ाइक और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कृष्णा बड़ाइक और साथियों से कुछ मुंडारी लोकगीत, और इसके साथ ही कार्यक्रम लोकरंग यहीं समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में सभी श्रोताओं का स्वागत है। कुछ सुमधुर गीत अगर जिंदगी में हो तो रस कुछ ज्यादा जिंदगी का बढ़ जाता है ना श्रोता साथियों। गाने गुनगुनाते हुए या सुनते हुए अगर आप अपनी दिनचर्या में लगे रहेंगे तो हम समझते हैं कि आपको आनंद ज्यादा आएगा और काम भी आपका दुगना स्पीड से होगा, है ना। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपका मन प्रसन्न हो तो काम करने का आनंद कुछ और ही होता है, ऐसा मेरा अनुभव है और आपका अनुभव हमसे कुछ अलग हो नहीं सकता। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी के इस गाने से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, जिंदगी एक सफर है, लेकिन इस सफर में कोई साथी हो तो ये सफर आसान हो जाता है, और अगर साथी का साथ साथ ना हो तो फिर उसके ख्यालों से ही काम चलाना पड़ता है।

किसी के यादों में खोया मन कब उसके ख्यालों में होता है, कब रूबरू होता है, खुद वो भी नहीं समझ पाता।

अभी आप सुन रहे थे महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और अब आइए सुनते हैं फिल्म सीता और गीता का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। बोल एक बार फिर आनंद बख्शी के हैं और संगीत RD बर्मन का। ऐसे भीगे भीगे मौसम में एक से भले दो होते हैं, तो क्यों ना इस सफर में किसी साथी को चुन लिया जाए और इस सुहाने सफर का आनंद लिया जाए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस।

रंजन आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गीत, जिसे गाया है हेमलता और जसपाल सिंह ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। दोस्तों, जीवन एक अनजाना सफर है। इस सफर में कौन आपके हम सफर बनेंगे आपको भी कई बार पता नहीं होता, और जब दो लोग मिलते हैं तो किसी अनजाने सफर पर चल पड़ते हैं, उस सफर का भी हमें पता नहीं होता। इस अनजाने अनदेखे सफर में कुछ अच्छा घटित हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, और ईश्वर करे ये सभी के साथ अच्छा ही हो।

एक ही सफर के दो मुसाफिर जब साथ साथ चलें तो कब कौन किसे अच्छा लगने लग जाए कहा नहीं जा सकता।

में लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने और संगीत से सजाया है एन दत्ता ने।

0: आया, बंदर भी आया,
1: मोर भी आया, चूहा भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया। इस प्यारे से गीत को सुनते हुए आपने अपने बचपने को ज़रूर याद किया होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसी के साथ फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं के इसी नगमे के साथ कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त हुआ।

0: मैन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे जीएन उर्मा का गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं गिटार पर राग नट भैरव। तबले पर आपके साथ हैं श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आप सुन रहे थे जीएन शर्मा उर्मा का गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे गिटार पर राग नट भैरव। तबले पर आपके साथ थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी। और इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत यहीं समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। वाचन स्वर है कमलेश कुमार मिश्रा का और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। उम्मीद करता हूं कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत ही ये खूबसूरत जिंदगी है। बस जरूरी ये है कि हम किस तरीके से, अपने किन कामों से, अपने किस सोच से, कैसी शुरुआत से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। कार्यक्रम बढ़ते कदम भी वही काम करता है। सरकार के उन सकारात्मक सोच को शामिल करता है, सरकार के उन योजनाओं को शामिल करता है जिनसे हम और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपने जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आज के कार्यक्रम में हम एमएसएमई की बात करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम एमएसएमई के साथ आज किस तरीके से झारखंड में बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं, आज किस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आज किस तरीके से छोटे सपने बड़े बन रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके सपनों की, हम बात करेंगे आपकी एक नई शुरुआत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सपना खलको से, और नामबीन का सपना है और आज ये अपने सपने को पूरा कर रही है एमएसएमई के माध्यम से। सपना ने अपने मेहनत से हैंडीक्राफ्ट्स की शुरुआत की है और अपने शौक को पैशन में बदला और इस पैशन को पूरा करने में एमएसएमई ने साथ दिया। इन्हें बहुत सारे टूल्स दिए, इन्हें बहुत सारे मशीन्स दिए और आज सपना खुद का अपना काम कर रही है। बाहर से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं और लोग इनके बारे में पूछते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सपना, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं सपना आप?
2: ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। सपना ये बताएं, कितना अच्छा लगता है जब आज आप जिस चीज के लिए सोची, जिसके लिए मेहनत की, आज उसे आपने एक मुकाम दिया है?
2: बहुत ही अच्छा लगता है सर, सबको ये सम्मान देते हैं, मुझे बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
1: सपना, हम ये बात करें कि कैसे आप एमएसएमई से जुड़ी, कहाँ पे आप गई, विभाग में कैसे मिली, क्या फॉर्म भरी, उससे पहले थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सपना,
2: इसकी शुरुआत सर हम लोग के शौक से, हम लोग जो घड़ा में पेंटिंग करके, ऐसे टूटा फूटा घड़ा रहता था उसमें हमने पेंटिंग करके शुरुआत की, जिसके द्वारा हमें बेनीलम नगर निगम के द्वारा बुलाया गया, फिर हमारा काम देखा गया, फिर हमें भी एक समूह ग्रुप बनाने के लिए बोला गया।

0: इसमें हमारे घर आके उन्होंने खुद ही ग्रुप बना के रजिस्टर किया। उनके बाद ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने हमें स्टॉल देना शुरू किया, जैसे कि वेंडर स्टॉल होता है टाइप से, उन्होंने हमें स्टॉल लगाने का मौका दिया जिससे हम अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सके। हाँ
1: अच्छा, जो मेला वगैरह लगता है उस मेला में आपको स्टॉल्स भी दिए जाने लगे।
0: बिल्कुल सर, जैसे कि आपका खादी मेला हो गया, सरस मेला हो गया, फिर वेंडर मार्केट देख रहे हैं, वहां भी थर्ड फ्लोर में आपका स्टॉल लगता है। वो सिर्फ आपका नगर निगम के द्वारा ही, नगर निगम की लेडीज लोग के लिए ही रहता है वो, जो आपका महिला समूह बनाती है उन्हीं के लिए वो स्पेशल वेंडर स्टॉल लगाया जाता है, ताकि वो अपना प्रोडक्ट, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, वो सब वहाँ पे वो बेच सके।
1: तो आप क्या क्या आर्ट बनाती हैं हैंडीक्राफ्ट्स में सपना?
0: सर हम डोकरा, सोहराई, फिर अभी भेल पेंटिंग है, वो भी थोड़ा सीख रहे हैं। तो इसी तरह जितना भी कल्चर से जुड़ा हुआ पेंटिंग हो गया, फिर हैंडीक्राफ्ट मटेरियल अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका पुरखों से चलता आ रहा है, उस टाइप का हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं।
1: तो सपना आप ये बताएं कि वो सपना जो आप बता रही हैं कि चार बहन ऐसे ही घर पे एक छोटी सी शुरुआत आप लोग किए, तो वो सपना कैसे उन वो अपने काम को बढ़ा पाई, कैसे वो एमएसएमई से जुड़ी?
0: सर एमएसएमई से तो एक मैम थी, वो हम पहले तो हमें ट्राइब इंडिया से जोड़ा उन्होंने काम देकर कि आप लोग पेंटिंग करते हैं, तो इसी तरह जोड़ा गया। तो फिर उन्होंने बताया कि एमएसएमई के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, तो उन्होंने हमें फॉर्म भराया, लेकिन वो पेंटिंग का नहीं था, वो फ्रेमिंग का था, क्योंकि पेंटिंग हम लोग ऑलरेडी करते थे, तो इसलिए उन्होंने फ्रेमिंग का, हमें 25 दिन का कोर्स होता है उसमें, हम लोग से फॉर्म भरा के 25 दिन का कोर्स कराया, उसमें उन्होंने स्टेपन भी दिया। उसी तरह हम लोग ने अच्छा से काम किया, तो लास्ट में हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, फिर टूल किट भी प्रोवाइड कराया
1: यानी
0: बिगिनर्स।
1: आपको ट्रेनिंग भी दी गई, आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया और उसके बाद टूल्स भी दिए गए।
0: हाँ टूल्स भी दिए गए सारे, जितना भी मेंबर थे सारे को।
1: अब आप पहले तो बताएं कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हुई और किस तरह, कितना कितना अच्छा अनुभव रहा आपका ट्रेनिंग का?
0: ट्रेनिंग हमारे ही एरिया हीनू में ही हुआ, जैसे कि आपका कुछ एरिया वाइज या एनजीओ के द्वारा माध्यम से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी तरह एनजीओ हमारा हीनू में एक है, उन्हीं का संतोष बीएड कॉलेज करके उन्हीं का एक एनजीओ है यहाँ हीनू में, तो वो 25 दिन का हमें रूम अपना शेयर दिए, वहां से हमने ट्रेनिंग किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जिसमें हम लोग सीखे तो थोड़ा हिम्मत आया और भी आगे बढ़ने का, कि हम लोग लेडीज लोग हम लोग फ्रेमिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर सर सर सब आए, मैम आई, तो धन्यवाद देंगे सबसे ज्यादा एतन मैम को।
1: तो ट्रेनिंग हुआ आपका, उसका सर्टिफिकेट मिला, आपको टूल्स में क्या-क्या दिया गया सपना?
0: टूल्स में सर जितना भी हम लोग ट्रेनिंग किए, हैम्पर हो गया, आपका कटर हो गया, कैंची हो गया, जितना भी फ्रेमिंग का सामान आता है वो सारा पूरा एक बॉक्स करके हमने दिया गया।
1: यानी एक तो एक हैंड आपका खुद का पेंटिंग का था जो आप शुरुआत से कर रही थी, और आपको एमएसएमई से ये सहयोग मिला कि अब आप पेंटिंग तो कर ले रही हैं लेकिन फ्रेमिंग महंगा आता है, चीजें महंगी आती, तो आपको वो एमएसएमई के माध्यम से सारे टूल किट्स मिल गए। कितना एक बदलाव आया सपना आपके काम में जब आप एमएसएमई से कनेक्ट हुई, फ्रेमिंग सीखी, ट्रेनिंग ली, फिर ये टूल आपको मिले, ये सारे किट आपको मिले, क्या क्या बदलाव आया इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बदलाव तो सबसे पहले सर हमारा, जो हम दूसरे के यहाँ से फ्रेमिंग करा के देते थे, वो कॉस्टिंग बच गया, फिर प्रेस टाइमिंग बच गया, कि हम लोग जाके दूसरे के यहाँ जाने में एक टाइम निकाल के वहाँ फ्रेमिंग कराने जाओ, फिर उसको दूसरे दिन लेने जाओ, तो ये हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग प्लस जो हमारा ट्रैवल है वो भी बचा, से एक कॉस्टिंग हम लोग का क्रिएट हुआ, कि हम दूसरे को सस्ते दाम में भी दे सके और महंगे दाम में भी दे सके, इस तरह हमें अनुभव हुआ और बहुत कुछ सीखे हम लोग मार्केट में, कि किस तरह से फ्रेमिंग करना चाहिए, कैसे देना, कहाँ पे कौन सा फ्रेमिंग चलता है, ये सब का थोड़ा अनुभव मिला।
1: कितने एक बदलाव आपके जिंदगी में है, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है पहले आप दूसरे जगह जाके करती थी या छोटे से रूम में करती थी, और अब आपने अलग जगह ही ले लिया जहां पे अब आप काम कर रही हैं।

0: बहुत ही बड़ा एहसास है, ये तो बयां भी नहीं कर सकते सर।
1: नहीं, ये एक बदलाव आ गया आपका कि पहले बहुत छोटे से जगह पे कर रही थी, अब आपने स्पेशली एक जगह किराए पे लिया काम करने के लिए।
0: किराए पे भी लिया सर और लोगों को काम भी दिया। मैं खुद अकेले 4 बहन करती थी, लेकिन धीरे धीरे लास्ट 2014 में 2024 में वो लोग सारे अपने अपने सर्कल पे वो लोग चली गई, क्योंकि सारा लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया। वो लोग जिस जिस पे काम करती थी वो लोग फिर रिटर्न अपना अपना व्यवसाय शुरू कर ली। तो अकेले खुद हम करते थे, प्लस और एक मेरा सहयोग में एक स्टूडेंट थी, वो कॉलेज जाती है लेकिन कभी भी उनको बुलाते हैं वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती है। तो हमने 2 मेंबर से स्टार्ट किया, फिर काम अच्छा, ऑर्डर भी बढ़ने लगा। तो फिर एक बात रखे महिला लोग से कि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, MSME के साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ऑर्डर मिलता है, तो आप लोग सीखना चाहते हैं। किन्हीं से भी मैंने कॉस्टिंग का बात नहीं किया, उनको बोला फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सब जब भी टाइम मिले आप लोग मेरे यहाँ आइए, बिल्कुल सुबह मॉर्निंग 11 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है ऑफिस, आप लोग कभी भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते, प्लस
1: ठीक है,
0: काम करने का आपको चार्ज भी दिया जाएगा।
1: तो आज कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं?
0: मेरे अंडर में 20 महिला है जो कि रेगुलर है, और बाकी सब है स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट जो अपना पार्ट टाइम सब टाइम निकाल के काम करती है।
1: 20 महिलाएं आज आपके अंदर में काम कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: वाह। तो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को बताएं कि हम सपना से बात कर रहे हैं, और देखिए कैसे जब आप कुछ सोचते हैं और उस सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो आप कैसे अपने लक्ष्य को पाते हैं। आज सपना ने शुरुआत की और आज 20 महिलाएं सपना के साथ जुड़ी है। सपना, क्या आप लोगों से कहेंगी, क्योंकि झारखंड में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपने नए उद्योग की शुरुआत कर रहे हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, MSME का सहयोग ले रहे हैं, क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगी, क्या कहना चाहती हैं?
0: मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, सरकारी योजनाओं सबके बारे में जानिए, कहाँ से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, कैसे आप MSME से जुड़ेंगे, कहाँ आपको सरकार इतना मदद कर रही है, तो आप लोग भी बाहर निकलिए, ताकि रोजगार तो ऐसे है ही, लेकिन आप खुद का एक बिल्डअप तैयार करने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना होगा जो कि MSME आपको फ्री में सिखाती है, प्लस उसका स्कॉलरशिप भी देती है, लंच भी खिलाती है जो कि आपको खाली पेट रहने बिना खाली पेट आपको रहना नहीं पड़े, इसलिए और
1: यानी
0: आपको
1: आपको एक
0: सारा
1: मेंटल सपोर्ट देती है कि आपको कहीं भी
0: हाँ
1: रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है।
0: हाँ आपको थकना नहीं है, एनी टाइम आपके सपोर्ट में रहेगा, प्लस आपको सारा सामान भी प्रोवाइड करवाती है। आप जिस चीज का भी ट्रेनिंग लीजिएगा उसका आपको पूरी तरह, जब तक आपका सेटअप तैयार नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ भी रहेगी, सेटअप होने के बाद भी आपके सपोर्ट में रहेगी, आप बिना झिझक के आप MSME ऑफिस जा सकते हैं।
1: क्या बात है, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिटको उद्योग विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल की भी शुरुआत हो रही है। ये जो उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं, जो MSME से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पे सारी जानकारियां एक जगह पे होंगी। आप जब उस पोर्टल पे जाके आप विजिट करेंगे तो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड होगी, आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उससे आप जुड़ सकते हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से कुछ ही दिनों में अब आपको ये इसकी जानकारी एक ही जगह पे मिलेगी। तो झारखंड सरकार की अपनी कोशिश है कि कैसे झारखंड में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे एक नए झारखंड का निर्माण किया जाए। सो सपना, क्या आगे सोच रही हैं, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं आप?
0: आगे तो सर जो मेरा पेंटिंग है वो तो कभी मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा पैशन है और मेरा मेरे से जुड़ी हर महिला का रोजगार है, तो वो तो मैं बंद नहीं करूंगी। लेकिन आगे का जितना भी सरकार से सहयोग होगा वो जरूर लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे, यही मेरा सोच।
1: सपना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की, और आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बढ़े। मैं एक आखिरी सवाल इसमें ऐड कर देता हूँ।

0: चाहता हूँ कि आज कितना एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप घर भी संभाल रही हैं, आप बाहर भी देख रही हैं। महिलाओं से क्या कहना चाहती हैं, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, घर तो सर हम लोग का घर तो हम लोग आप शादी करिए या नहीं करिए, घर तो आप ही को संभालना है। लेकिन अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी करने का है और करते भी है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो जरूर आप हिम्मत दिखा के आप आगे बढ़ने का कोशिश करिए। और जहाँ तक है सारे सपोर्ट के लिए, आप बस एक कदम बाहर निकालिए तो पूरी दुनिया आपके साथ में है। ये मैंने लास्ट टाइम सीखा है, क्योंकि
0: क्या बात है,
1: मैं कभी रांची घूमी नहीं हूँ, जबकि रांची की ही पैदाइश हूँ। रांची भी नहीं घूमी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद गई थी, बहुत लड़ झगड़ के गई थी
0: क्यों
1: वहाँ
0: गई थी आप
1: बाहर।
0: हैदराबाद?
1: हैदराबाद सर कंपटीशन था वहाँ पे, इंटरनेशनल कंपटीशन था, जो कि हम रांची से झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जितनी भी सारी महिला वेंडर आई हुई थी, तो इस चीज को देख के और भी मन में उत्साह आया कि मतलब कोई भी महिला, आपका छोटी 15 साल से लेके आपका 85 ईयर्स की महिला लोग वहाँ पे आई हुई थी कॉम्पिटिटर बन के। तो ये चीज बहुत ही हिम्मत लगा कि मतलब कभी भी काम किसी के लिए रुकता नहीं है, बस हम लोग कदम एक कदम बाहर निकालने की जरूरत है।
0: तो यानी आज सपना बाहर भी निकली और आज बाहर के दुनिया में कदम से कदम भी मिला रही हैं। चलिए सपना, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और जिस तरह से आप खुद भी बढ़ी और आज आपके साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, वो भी आगे बढ़ रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान है। जिस तरीके से सपना से हमने बात की, देखिए जरूरी क्या होता है कि जब हम सरकार के योजनाओं की बात करते हैं तो हम और आप कितने जागरूक हैं। आप जागरूक रहेंगे, योजना का लाभ आपको मिलेगा। और आज जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, टेक्निक का जमाना आ रहा है, ऐसे में आपको भी खुद को तैयार करना है। आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप मेहनत के लिए तैयार होने चाहिए और बस एक शुरुआत कीजिए, सरकार का आपको साथ मिलेगा। आज एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से एक नए झारखंड का निर्माण हो रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं, आज बहुत सारे बेकरी सेंटर्स, बहुत सारे टेक्सटाइल पे काम हो रहा है और रोजगार सृजन भी हो रहा है। अभी हमारे साथ एक महिला है, नीतू सिंह नाम इनका है, बेकरी का काम करती है और इन्होंने भी एमएसएमई के माध्यम से लोन लिया और अपने बेकरी को एक नया आयाम पहुंचाया। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक सपना है तो आप सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका।
2: नमस्कार, मेरा नाम नीतू है और मैंने एमएसएमई के माध्यम से अपना बेकरी का शॉप खोला और काफी अच्छा काम चल रहा है।
0: सो नीतू जी, शुरुआत इसके साथ करेंगे कि कितना एक जरूरी है आप लोगों को जागरूक होना आज की तारीख में।
2: सरकारी विभाग अपने आप में संपूर्ण है, वो सभी को मदद करने के लिए बहुत सारे व्यवसाय से संबंधित या बहुत सारी योजनाओं को लागू किए हुए हैं, लेकिन बिना जागरूकता के आप ये सब सुविधाएं को हासिल नहीं कर सकते। तो जागरूकता सबसे पहला पूंजी है आपके आगे बढ़ने के लिए। तो जागरूक होकर ही आप किसी भी व्यवसाय से जुड़ने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: आपकी अगर हम बात करें, आपने भी एमएसएमई से सहयोग लिया, आपने लोन लिया, कितना एक मददगार हुआ, क्या चीजें थी जो पहले रुक जा रही थी और जब आपने लोन लिया तो वो क्या क्या सुविधाएं आपको मिल गई, किस तरीके से फिर आप आगे बढ़ी?
2: देखिए, शुरुआत में तो मेरा का मन था कि किस तरह से मैं बेकरी उद्योग में जाऊं, तो शुरुआती दौर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए ओवन, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, बेकिंग टूल्स आदि की व्यवस्था मैं कैसे करूं, क्योंकि इन सब में काफी पैसा लगने वाला था। तो एमएसएमई आपको 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख तक का लोन देती है, तो मैंने 10 लाख तक का लोन लिया जिसमें मुझे स्किल ट्रेनिंग भी मिला, बिजनेस लोन भी मिल गया और उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करने के लिए किस तरीके से होता है तो वो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है पूरे तरीके से। और मार्केटिंग इसकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दुकान भी खोल के बैठ सकते हैं, बहुत सारे फेयर और मेला वगैरह भी लगते हैं, सरकार की तरफ से लगते हैं, प्राइवेट भी लगते हैं, उन सब में भी हम लोग इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेकरी उद्योग अगर आप प्रॉपर

0: तरीके से शुरुआत करते हैं, एक प्लानिंग के तहत शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो सकते हैं।
1: यानी आज हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं, क्योंकि हमने कार्यक्रम में बताया कि हम एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से बढ़ सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट हो।
0: हाँ,
1: एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, पेपर वर्क आपको करना पड़ता है।
0: किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बताना है कि आप कहाँ पे शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, आपके पास कौन कौन लोग होंगे, आपके पास कैसे स्किल वाले लोग होंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका सामान कहाँ से लाएंगे, ये इन सब सारे चीजों का आपको पहले एक खाका तैयार करना है, एक पूरा बिल्डिंग तैयार करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
1: सो ये कनेक्ट करना पड़ता है कि आप पहले प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फिर बैंक से आपका टाई अप होता है, और अगर आपने एक सही प्रोजेक्ट दिया है और जिसका फ्यूचर है, तो इसके बाद एमएसएमई के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड भी होता है, आपको सहयोग भी मिलता है। सो आपको ट्रेनिंग भी मिला, जब बेकरी की बात हुई तो आपको ट्रेनिंग स्किल्स भी दिया गया, ट्रेनिंग में क्या क्या आपको बताया गया?
0: ट्रेनिंग मिला, उसमें यही बताया गया कि केक कैसे बनाया जाता है, केक में क्या टूल्स की व्यवस्था होती है, कैसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, और बेकिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें, केक में पड़ने वाले सामान क्या क्या चीज होते हैं, उसका मटेरियल और कितना मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि केक बनाने में सबसे चीज जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो होता है केक का मात्रा, उसमें पड़ने वाले सामानों की मात्रा। अगर वो चीज अगर आपका सही नहीं रहेगा तो इस बेकरी उद्योग में आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं।
1: यानी एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप किसी व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं और सरकार आपको एक तो मॉनेटरी टर्म्स से भी हेल्प कर रही है, दूसरा जैसे सपना ने बताया कि उसको टूल्स के माध्यम से हेल्प किया गया कि वो तो पेंटिंग करती थी लेकिन फ्रेमिंग बाहर से करवाती थी, फ्रेमिंग के बारे में उसको ट्रेनिंग भी मिली, यानी स्किल भी किया गया, फिर सारे टूल्स भी दिए गए, वैसे ही नीतू जी को भी ट्रेनिंग भी दी गई और लोन भी दिया गया, यानी हर कुछ है आपके लिए, बट ये है कि आप इसके प्रति जागरूक है या नहीं, आप इसके प्रति सचेत है या नहीं, कितना एक बदलाव आ जाता है जिंदगी में जब आप एक उद्योग की शुरुआत करते हैं।
0: देखिए, आत्मविश्वास आ जाता है कि आप कोई काम कर सकते हैं। बेकरी उद्योग को करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, क्योंकि जब तक आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते नहीं है, आपका खुद का एक टेस्ट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचने का माध्यम भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो हमको डिजिटल के जरिए से भी लोगों तक पहुंच बनानी होती है। तो अगर आप इन सब चीजों में सक्सेस हैं, तो डेफिनेटली आप अपने किसी भी उद्योग में, बेकरी ही नहीं, किसी भी उद्योग में आप सक्सेस हो जाएंगे, वो आपका ये 100% है कि आप सक्सेस हो जाएंगे।
1: एक चीज आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक नए झारखंड की बात करते हैं कि आज अब झारखंड का एक नया दौर चल रहा है, ये जो उद्योग आ रहे हैं या फिर जो हम स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं या फिर हम एमएसएमई के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये आज रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। जो खुद तो शुरुआत कर रहा है और कम से कम अपने साथ कोई 20 लोग, कोई 50 लोग, कोई 100 लोगों को भी रोजगार दे रहा है।
0: एमएसएमई सरकार के द्वारा शुरू किया गया वह योजना है जिसमें छोटे छोटे स्तर पर कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर सारी सुविधाएं देकर के स्टेबल किया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से, देखिए एमएसएमई क्या है, एमएसएमई वो है जहां पर हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकता, तो सरकार का कहना है कि जब हर लोगों को नौकरी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, तो छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करके आप अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। ये एम्पावरमेंट की बात है और एमएसएमई एम्पावरमेंट करता है लोगों को, एम्पावर्ड करता है लोगों को, तो ये एमएसएमई में बहुत अच्छी बात है कि लोग छोटे छोटे व्यवसाय को बड़ा बड़ा आकार दे रहे हैं।
1: यानी एक तो सबसे पहली बात कि आपको स्किल्ड करता है। आज की तारीख में ये जरूरी नहीं कि आप एक पक्की नौकरी ही कर रहे हैं, आज की तारीख में आप अगर स्वावलंबी हैं, आप खुद को स्वावलंबी बनाएं, आपके पास बहुत सारा जरिया है। सरकार आपको स्किल्ड कर रही है, आपको ट्रेनिंग्स दे रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आप उस आइडिया के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सभी को?
0: जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो लोग आत्मविश्वास के साथ एमएसएमई से जुड़ सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: आज ये कह सकते हैं कि पहले और अब में बहुत एक बदलाव आपकी जिंदगी में भी आ गया?
0: हाँ, बहुत बदलाव आ गया। पहले मैं पूंजी के अभाव से जूझ रही थी, थोड़े स्किल की भी कमी थी, थोड़े मार्केटिंग की भी कमी थी, और ये सब इंटीग्रेटेडली मुझे एमएसएमई के माध्यम से प्राप्त हुआ और मैं अब अपने बिजनेस को

0: पहले से अपेक्षा अब ज्यादा मजबूत स्थिति में पा रही हूँ।
1: क्या आप एक लक्ष्य रखती हैं? जब आपने एक नई चीज की शुरुआत की, अब आपने क्या देखा है, भविष्य में कहाँ तक आपको जाना है, क्या सोच रही हैं?
0: इस उद्योग को शुरू करने से पहले मैं एक दो लोगों के साथ ही अपना ये काम को आगे बढ़ाई थी, लेकिन अब चूंकि ये मेरा काम बहुत बढ़ गया है तो मैं और लोगों को भी रोजगार दे पाई हूँ। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों को मैंने रोजगार दिया है, उससे उनका घर परिवार सभी आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। तो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि और महिलाएं और परिवार मुझसे जुड़ सके, ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके, वो भी समाज में एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि नौकरी नहीं है उद्योग, मतलब ये नौकरी चाहे उद्योग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो मेरा यही है कि मैं और लोगों को भी इसमें जोड़ूंगी और अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करूंगी, ताकि और लोग जुड़े और मेरा भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद कमलेश जी, मेरा भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में स्थान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमने एमएसएमई की बात की, हमने उन सपनों की बात की जो कभी अधूरे रह जाते थे, क्योंकि कभी मॉनेटरी टर्म्स प्रॉब्लम होता था, कभी आइडिया नहीं होता था, कभी सपोर्ट नहीं होता था, कभी स्किल नहीं होता था। आज सब कुछ है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो है हमारी झारखंड सरकार, सरकार के सारा। और दूसरी बात कि केंद्र के साथ मिलकर झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाओं को चला रही है। जब एमएसएमई की बात करते हैं तो केंद्र के सहयोग से झारखंड में उसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है रैंप प्रोग्राम के माध्यम से, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में एक पोर्टल की शुरुआत हुई है। उस पोर्टल में आप जाकर, मैंने पहले भी बताया कि आपको एक ही जगह पर एमएसएमई से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। सिर्फ जानकारियां ही नहीं, बल्कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग मिलेगा, आपको किसी भी योजना की जानकारी चाहिए वो भी मिलेगा, आपको एलएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यानी एक जगह पे तमाम वो चीज जो आपके लिए है। बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ एक नई सोच, नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ लेंगे, खुद भी लाभ लेंगे और जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें भी जानकारी देंगे, उन्हें भी जागरूक बनाएंगे। आपके एक प्रयास से आपकी जिंदगी बदल सकती है। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुत कर रहे थे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जोहर रांची में आज एक और इस नए अंक के साथ मैं ऋतुश्री। नमस्कार जोहर साथियों, और मीता आपको भी हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार ऋतु, और हमारे श्रोताओं को भी मीता का प्यार भरा नमस्कार जोहर।

0: और मिता जोहर रांची में अब वक्त है सुविचार का।
1: बिल्कुल
0: तो
1: रितु, ऐसा है कि कई बार देखती होगी कि हम लोग ट्रैफिक पे कहीं रुके होते हैं
0: हाँ
1: तो बहुत से लोग चिड़चिड़ करते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कुछ हॉर्न बजाने लगते
0: आज मैं
1: हैं।
0: जब आ रही थी तो मैंने यही देखा कि एक जो हमारे पीछे जो गाड़ी थी उसमें वो मोबाइल चला रहे थे और पीछे उनकी वजह से काफी वो स्लो चला रहे थे और बहुत जाम लग रहा था। लेकिन जब लोगों ने उनको हॉर्न देना शुरू किया तो वो इतना इरिटेट होकर सबको घूर घूर के देखने लगे, जैसे लगा कि
1: कि गलती
0: एकदम
1: दूसरों की
0: दूसरों की
1: है।
0: है।
1: वही वही बात है
0: तो
1: कि
0: इसे
1: हम
0: कहते हैं कि क्रोध करना बहुत आसान होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी गलती को अगर देख लें तो शायद आप क्रोध की जगह विनम्र हो जाएं।
0: बिल्कुल
1: वैसे क्रोध करना अच्छी बात नहीं, मैं वही बात कह रही थी कि ट्रैफिक पर अगर रुकना भी पड़ जाता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ
1: अगर थोड़ी देर को दुकानदार ने सामान देने में देरी कर दी तो लोग गुस्सा हो जाते
0: हाँ
1: हैं। तो छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, अगर वो एक बार ये जान लें तो शायद गुस्सा कभी ना करें।
0: बिल्कुल। और ऐसे भी कहते हैं ना कि आवेश में जो भी प्रतिक्रिया हम देते हैं ना वो गलत ही
1: गलत ही
0: होता
1: होती
0: है
1: है
0: और
1: क्योंकि
0: वो दूसरों को
1: आप
0: तकलीफ
1: सोच
0: देती
1: नहीं
0: है।
1: सकते उस समय, उस समय आप बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, उसका परिणाम आप सोच लें तो शायद वैसी प्रतिक्रिया भी ना
0: नहीं
1: दें।
0: दे हाँ तो उसके लिए हमें करना ये चाहिए मीता कि हमें अगर ऐसी परिस्थिति में हम आ गए तो हमें एक क्षण सोचना
1: सोचना
0: चाहिए।
1: चाहिए, ये पुरानी बात है कि आप
0: हाँ
1: 10 तक गिने, जब भी आपको
0: गिनती कर
1: गुस्सा
0: लें।
1: आए तो आप 10 तक गिने, तब तक शायद आप कारण को समझ जाए और शायद आपका गुस्सा छुमंतर हो जाए।
0: हाँ और कहते हैं ना कि जो गुस्सा करता है उसकी अग्नि में सबसे पहले वही जलता है।
1: पहले वही जलता है। और
0: तो
1: गुस्से में कई बार हम ऐसी कड़वी बातें लोगों को कह देते हैं जो उनके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। कई बार उनकी
0: और
1: मन स्थिति खराब हो जाती है, कई बार आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं।
0: हाँ और उनकी वो इतने आहत होते हैं ना कि कई दिनों तक या कई समय बहुत लंबे
1: वही
0: समय
1: वही
0: तक
1: बोले कि
0: ये
1: उनकी
0: बातें
1: मन
0: उनके
1: स्थिति
0: मन
1: खराब
0: में
1: हो
0: रह
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: है। हाँ
1: और जब आप
0: तो
1: किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उधर से जो वाइब्स आएगी वो अच्छी नहीं होगी और
0: हाँ
1: आपको नुकसान देगी।
0: हाँ
1: यानी कि आप क्रोध करके अपना नुकसान खुद तो किए, आपके शरीर पर उसका असर पड़ा, सामने वाले को दुख पहुंचाए तो उसकी बद्दुआएं भी आपने ले ली।
0: बिल्कुल। तो ये हम सबको समझना होगा मित्र कि क्रोध का समाधान केवल दमन नहीं बल्कि ठहराव के साथ सोचना और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया
1: बिल्कुल,
0: देना है।
1: हमारी प्रतिक्रिया ये होगी कि हम अपने श्रोताओं को कुछ हल्का फुल्का गीत सुना दें।
0: बिल्कुल।

0: रितु, मौसम का मिजाज जो है कैसा लग रहा है आपको?
1: देखिए, मौसम का मिजाज तो कभी धूप कभी बारिश मिलजुल कर,
0: इधर तो 3-4 दिन से घनघोर बारिश हो रही थी और अब कुछ दौर थमा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज राज्य में और 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य इलाकों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और
1: ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में रामगढ़ में सबसे अधिक 96.3 और रांची में 45 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इधर

0: ठंड में बारिश का दौर थमा, कल से चढ़ेगा पारा, 11 से फिर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है।
1: मॉनसून सक्रिय रहेगा हाँ। लेकिन हर जिले में बारिश नहीं होगी ऐसा मौसम विज्ञान हाँ। ने कहा है।
0: और अमिता ये भी बता दें कि एक राहत भरी बात यह है कि राज्य में 8 दिनों में 101 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो हम सोच रहे थे कि बारिश
1: की स्थिति
0: आ रही है, तो उससे उस पे हम कुछ अब कह सकते हैं कि सूखे की स्थिति तो नहीं आएगी। और जो खेत धान के लिए तैयार होते हैं उसमें कुछ अब तैयारी शुरू की जाएगी किसानों की तरफ से।
1: किसानों को थोड़ी खुशी मिल सकती है राहत की बात है कि बारिश ने अपना काम कर दिया है और भी ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। लेकिन कम से कम इतना है कि सूखे की
0: संभावना अब कम हो गई है। और वैसे बता दें कि राजधानी समेत झारखंड में पिछले 8 दिनों में 101.4 मिलीमीटर बारिश हुई। ये इस दौरान होने वाली बारिश से करीब 1.5 गुना अधिक है। इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी राज्य में अभी भी तकरीबन आधे से अधिक जिलों में 50% से कम बारिश हुई है। तो अभी बारिश का और इंतजार तो है ही।
1: हाँ, ये तो हमारे राज्य की बात हुई ऋतु। वैसे अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत से जगह हैं जहाँ पर बाढ़ का रूप ले चुका है बारिश
0: हाँ।
1: और जो वायनाड में है वहाँ भूस्खलन भी हुआ है। झारखंड में भी के भी कुछ लोग वहाँ थे जिन्हें क्षति हुई है
0: हाँ।
1: और जो सूरत है वो आधा अभी डूब चुका है। मानसून मतलब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। महाराष्ट्र में तो कहर बरपा रहा है और दक्षिण गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। सूरत में मंगलवार को बहुत बारिश हुई, 36 घंटे में 18 इंच पानी बरसा। और मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी यानी आज भी गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। इस बीच केरल की बात तो हम कर ही चुके हैं कि 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है और वहां भी बाढ़ की स्थिति है। सुरंग के प्रवेश द्वार पर भी कुछ मिट्टी के ढेर जमा हो गए, इस वजह से अस्त व्यस्तता तो बनी हुई है।
0: मतलब हमारे यहाँ जो हमने भवन निर्माण अस्त व्यस्त तरीकों से कर दिया है ना, उसकी वजह से जल जमाव की जो स्थिति बनती है वो बहुत नुकसान पहुंचा
1: नुकसान हो जाता है। और बाढ़ की स्थिति हल्की बारिश में भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है हाँ, तो ये हाँ, नहीं कह सकते हाँ, कि हाँ, बारिश बहुत ज्यादा हुई तभी ये जल जमाव ये सब तो।
0: और आने जाने वालों को बहुत मुश्किल होती है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को उस जल जमाव में जाना ये काफी परेशानी की बात है। लेकिन ऐसा अमिता की बारिश के बीच निगम ने अलर्ट हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर आप इस तरह के जल जमाव की सूचना दे सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप इनका जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800501235 पर आप ये सूचना दे सकते हैं। आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुन लें
1: 1800501235 पर आप सूचना दे सकते हैं।
0: हर
1: एक नागरिक की जिम्मेवारी बढ़ जाती हाँ, है वो हाँ, सरकार तभी अच्छा काम कर सकती है जब हम भी जागरूक रहे
0: हाँ, बिल्कुल। और अगर आप इन नंबर पे सूचना देंगे तो क्विक रिस्पांस टीम पहुंचकर वो जल जमाव की स्थिति को खत्म करेगी
1: निकासी कराएगी
0: हाँ।
1: और अभी मानसून जो है वो कल भी देश भर में छाने की संभावना है ऋतु
0: हाँ।
1: और इससे उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में बारिश का एक नया ही सीजन शुरू हो जाएगा
0: हाँ।
1: तो संभल के रहे हमारे पूरे देशवासी जो भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं
0: हाँ।
1: वो खुद से तो अलर्ट रहेंगे ही, लेकिन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बारिश के इस मौसम में अपनी और अपनों का ख्याल रखें। आप बारिश से भी बचें, बारिश से होने वाले नुकसान से बचें
0: और जब हम इन नुकसानों से बचेंगे तो हम फिर बारिश का आनंद
1: ले सकेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत
0: बहुत सुहाना
1: मौसम
0: बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल हाँ।
1: इसमें अगर आप थोड़ी बेफिक्री रखें और परिस्थितियां अनुकूल हो तो हाँ, आप काफी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम एक गीत तो सुन ही सकते हैं,
0: क्यों नहीं।

0: मेघा रे मेघा, सचमुच हमारे श्रोताओं को यह गीत पसंद आया होगा ऋतु, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। और हम अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पलटते हैं पन्ने इतिहास की, क्या कहते हैं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तो हर रोज की तरह आज के इतिहास में क्या कुछ खास है इसकी जानकारी अब हम अपने दोस्तों को देंगे, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए 8 जुलाई की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1497 में वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी।
0: और ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 8 जुलाई वर्ष का 179वां यानी 90वां दिन है, साल में अभी 176 दिन शेष है।
1: हाँ, और 1858 में ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी।
0: 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
1: और 1954 में सतलज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना देश को समर्पित की गई थी।
0: 1975 में म्यांमार के बगा में आए भूकंप में हजारों मंदिर ध्वस्त हो गए और भारी जान माल की क्षति हुई थी।
1: 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
0: 1999 में पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री बिल स्कोट का इस्तीफा हुआ था।
1: और ये भी बता दें कि 2002 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई थी।
0: 2003 में सूडान में हुए विमान हादसे में 115 लोग मारे गए।
1: 2005 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी थी।
0: 2008 में पेरिस की सरकार ने बांग्लादेश की विवादाग्रस्त लेखिका तस्लिमा नसरीन को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव किया था।
1: और 2012 में असम में भयावह बाढ़ ने विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों समेत 500 से अधिक वन्य प्राणियों को ले लिया था।
0: अब हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि आज के दिन 1972 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली का जन्म हुआ था।
1: और 1991 में अनिता कुंडू जो भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
0: 1949 में गेगोंग अपांग जो अरुणाचल प्रदेश से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था।
1: 1980 में चेतन आनंद भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था। और ये भी बता दें कि 1946 में गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था।
0: 1937 में 8 जुलाई को गिरिराज किशोर जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार सशक्त कथाकार नाटक और आलोचक है, उनका जन्म हुआ था।
1: और 1914 में ज्योति बसु भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
0: 1912 में आज ही के दिन बनारसी दास जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जन्म हुआ था।
1: और 1909 में विष्णु डे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 में इन्हें मिला था, इससे सम्मानित ये बंगला साहित्यकार थे। 1898 में पीएस कुमारस्वामी राजा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, इनका जन्म आज के दिन हुआ था। और ये भी बता दें मीता कि 1958 में नीतू सिंह जो हिंदी चलचित्र अभिनेत्री हैं, ये काफी फेमस अभिनेत्री हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, काफी हिट फिल्में इन्होंने दी है।
1: इनका जन्म भी,
0: इनकी सबसे सफल जोड़ी ऋषि कपूर के साथ रही जो उनके जीवन साथी भी बने आगे चलकर।
1: हाँ,
0: तो क्यों ना
1: इन, हाँ बिल्कुल गाना सुनेंगे। और ये काफी भावपूर्ण भूमिकाएं भी की और चुलबुली
0: बिल्कुल
1: नायिका भी रही है।
0: काफी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं वो, मतलब उनके अभिनय में एक सहजता थी।
1: हाँ,
0: बाल अभिनेत्री के रूप में भी उनकी कई फिल्में हिट हुई, वारिस, पवित्र, पापी और रिक्शा वाला के साथ, मतलब इस फिल्म के साथ एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की। 1973 से 1983 तक मुख्य नायिका की भूमिका में लगभग 50 में वो दिखाई दी।
1: हाँ, और इन्होंने फिल्म 2 कलियां जो काफी हिट फिल्म थी उसे डेब्यू किया था एक बाल कलाकार के रूप में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलिए मीता सुनते हैं एक चुलबुला सा गाना जो इन पे फिल्माया गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: ऋतु, जीवन में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ दुखदाई भी होती हैं, मानती हैं ना?
1: बिल्कुल। तो इतिहास में अब उनकी बातें जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बता दें कि 2021 में वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन आज के दिन ही हुआ था। और 2018 में M.M. जैकब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, इनका निधन आज के दिन ही हुआ था। 2007 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का निधन आज के दिन ही हुआ था। और ये भी बता दें कि 2003 में सुभाष मुखोपाध्याय, भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक थे, इनका निधन आज के दिन ही हुआ था।
0: और ऋतु, जगदीप जिनका जन्म 29 मार्च 1939 को सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी के रूप में हुआ था, वो एक महान भारतीय हास्य अभिनेता थे। उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। उन्हें फिल्म शो में सुरमा भोपाली के अपने किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 400 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले अपने करियर में उन्होंने अंदाज अपना अपना और ब्रह्मचारी जैसी क्लासिक फिल्मों में भी अपने हास्य से चार चांद लगा दिए थे। तो आइए सुनते हैं, इन पर फिल्माया गया फिल्म भाभी का ये गीत।

0: और जोहरा जी में अब हम बातें करेंगे स्वास्थ्य की।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है रितुश्री।
0: हाँ, और
1: और
0: देखिए आजकल क्या है ना कि हमारी जो बदलती जीवन शैली है ना मिता,
1: बिल्कुल
0: वो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है।
1: और अगर बीमारियों पर नियंत्रण रखना है, बेहतर स्वास्थ्य पाना है, तो आपको जीवन शैली को संतुलित रखना ही होगा। कुछ
0: और
1: आदतें हैं जो बीमारियों को जन्म देती हैं ऋतु।
0: हाँ, जैसे हमारी कई गलत आदतें कई बीमारियों की वजह बनती हैं या उन्हें फिर गंभीर बना देती है। और अच्छी बात यह है कि समय रहते अगर हम अपने आदतों में बदलाव कर लेना तो जीवन की राह अच्छी जीवन
1: अच्छे
0: की
1: हो
0: राह
1: जाएगी।
0: अपनाई जा सकती है।
1: और स्वास्थ्य में जो है सकारात्मक सुधार हो सकता है अगर आप अपनी आदतों को सुधार लें। कुछ
0: हाँ
1: आम बीमारियां और उनसे जो जुड़ी आदतें हैं वो हम कुछ इस पर चर्चा कर सकते हैं ऋतु। जैसे
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: मधुमेह है।
0: हाँ
1: अब रात को देर से भोजन करने से रक्त शर्करा का स्तर असंतुलित हो जाता है,
0: हाँ
1: जिससे शरीर में इंसुलिन का प्रभाव घटता है। इससे शुगर का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। बेहतर होगा कि रात का खाना 8-9 बजे तक खा लें, हल्का खाना ही खाएं, खाने के बाद कुछ देर तक जरूर टहलें।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है मिता। और एक जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है वो माइग्रेन, जो भोजन छोड़ने माइग्रेन के लक्षणों को बढ़ा सकता है। समय पर पोषण न मिलने से ब्लड शुगर का स्तर गिरता है और सरदर्द बढ़ सकता है। नियमित और संतुलित भोजन माइग्रेन को काबू रखने में सहायक होता है। और माइग्रेन के दर्द से, माइग्रेन के पेन से आजकल आम लोग ग्रसित होते जा
1: बहुत
0: रहे हैं।
1: बहुत अरे बच्चे भी शिकायत करने
0: बच्चे भी
1: लगे हैं।
0: शिकायत करते
1: बच्चे
0: हैं।
1: अक्सर कहेंगे इधर दर्द हो रहा, उधर दर्द हो रहा।
0: हाँ
1: कारण तो बहुत कुछ होता है। उनका मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय देना भी एक वजह हो सकता है।
0: हाँ हाँ
1: और अगर हम हृदय रोग की बात करें ऋतु, तो शारीरिक निष्क्रियता दिल की बीमारियों का बड़ा कारण है।
0: हाँ
1: नियमित व्यायाम ना करने से मोटापा, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट का हल्का या मध्यम व्यायाम आप जरूर करें। आप सैर भी कर सकते हैं अपने
0: हाँ
1: मुताबिक, कुछ
0: अपने
1: भी
0: हाँ
1: जो भी समझ में आए।
0: जो
1: लेकिन
0: अच्छी
1: हाँ,
0: बातें हैं उसको अपनी दिनचर्या में आप अपने मुताबिक ढाल लें और उस पे
1: शारीरिक रूप से बस गतिशील रहें।
0: हाँ। और एक बात ये भी बताते हैं मीता कि ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो बीमारी है ना, ये आजकल बहुत आम होती जा रही है। इससे ये होता क्या है कि
1: क्योंकि ये
0: धूप,
1: धूप से होने,
0: हाँ,
1: मतलब
0: ये
1: बचने की
0: विटामिन डी
1: वजह
0: की
1: से,
0: कमी से,
1: कमी से
0: हड्डियों में
1: होता
0: आने
1: है।
0: वाली कमजोरी की वजह से होती है। तो धूप से जो पूरी तरह जो बचना शरीर में विटामिन डी की कमी को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। रोज सुबह की शुरुआती धूप में 15 मिनट समय बिताएं और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। होता यह है
1: आजकल
0: कि
1: लोग
0: आजकल
1: सुंदरता की वजह से भी सोचते हैं कि नहीं, धूप में निकलेंगे, रंग कम हो जाएगा,
0: हाँ,
1: लेकिन शारीरिक जो नुकसान हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे
0: नहीं
1: पाते।
0: दे पाते। और हर समय हम घर के अंदर रहते हैं, एसी चला के रहते हैं,
1: और
0: तो
1: घर
0: ये
1: से
0: सब
1: बाहर निकले तो छाता
0: छाता
1: गाड़ी,
0: हाँ
1: तो फिर आपको धूप लगी कहाँ।
0: हाँ तो
1: और देर से उठना भी एक वजह हो
0: बहुत
1: जाती है,
0: बहुत बड़ी
1: क्योंकि अगर
0: वजह
1: आप
0: है देर से
1: सुबह
0: उठना।
1: उठेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टहलेंगे, प्रकृति का नजारा लेंगे, तो धूप का थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर आएगा
0: आएगा
1: ही।
0: ही बिल्कुल।
1: लेकिन
0: हाँ
1: आप
0: हाँ
1: देर तक सोए रहेंगे तो तेज धूप तो वैसे भी नुकसानदेह होता है।
0: हाँ
1: धूप तो फायदेमंद सुबह की ही होती है ऋतु। आप अगर देर से उठेंगे और तीखी धूप में चले जाएंगे तो आपको सनबर्न होगी। तब तो फायदे की जगह नुकसान होगा।
0: हाँ और ऐसे बोलते हैं मिता कि पेट की समस्याएं भी आजकल आम होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल, और अभी तो बारिश का मौसम है।
0: हाँ, जैसे कि हम, होता क्या है कि हम पानी पर्याप्त नहीं पीते हैं, उससे कब्ज,
1: कब्ज और एसिडिटी।
0: एसिडिटी, हाँ,
1: हाँ
0: ऐसी समस्याएं होती हैं। तो दिन भर में हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक बनी रहेगी और उत्सर्जन जो शरीर का

0: होता है वो आसानी से हो पाएगा।
1: आजकल लीवर रोग भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऋतु, और इसका कारण तो आप भी जान रही हैं, बाहर के खाने, अत्यधिक तेल मसाले और प्रोसेस्ड फूड लीवर पर अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। इनसे परहेज करें, ताजा फल सब्जियों को प्राथमिकता दें। वैसे हम तो कहते हैं श्रोताओं कि अगर आप फलों को अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें, अपने खान पान में ज्यादा अगर उपयोग में लाएं फल, तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आप तेल तो कम खाएंगे ही, और फलों का जो अपना ये शुगर जो है वो फायदेमंद भी होता है, और कई ऐसे फल हैं जो आप शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं।
0: तो और देखिए, आजकल शारीरिक के साथ साथ हम मानसिक बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं।
1: डिमेंशिया भी एक बहुत देखने को मिल रहा है आजकल। मतलब पहले तो बूढ़ों की बीमारी इसे कहा जाता था, लेकिन अब यंग भी चपेट में आ रहे हैं।
0: हम हमेशा हर चीज रख के इधर उधर भूल जाना और छोटी छोटी बातों का भूल जाना, ये डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण है।
1: मानसिक निष्क्रियता
0: और लंबे समय तक टीवी देखना
1: आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है।
0: और अब तो स्क्रीन टाइम, हम इतना स्क्रीन टाइम बिताते हैं कि ये ऐसा होना लाजमी है भाई।
1: लाजमी है। स्क्रीन टाइम की वजह से अनिद्रा भी हो रही है और कम सोने की वजह से जो नींद को प्रभावित कर रही है, और मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसके बाद एक एक्साइटमेंट होता है, एक ऐसा रासायनिक बदलाव आता है हमारे कि नींद को सुदूर चली जाती है, फिर आप रातों को जागने लगते हैं, और फिर वो
0: आपके शरीर का पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख देता है। तो अनिद्रा का शिकार भी आजकल हम होते जा रहे हैं,
1: ये चिंता भी हो रही है,
0: चिंता भी हो रही है,
1: ये भी मोबाइल।
0: जब आप रात को जगेंगे तो आपको तरह तरह की नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। तो ये ऐसा ही होता है मिता, कि ये भी हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बनता जा रहा है।
1: तो आप श्रोताओं, अपने आपको एक बार ध्यान से देखें कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी आदतें बिगड़ रही हैं, कहाँ आपकी आदतों में सुधार की जरूरत है। और कहते हैं ना कि आप अपना सुधार स्वयं कर सकते हैं, आप दूसरे को नहीं सुधार सकते। तो आप अपने में अगर सुधार लाएंगे तो आप अपना भला करेंगे, और जब आपको लोग देखेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, तो उनका भी भला हो जाएगा। आप अपना एग्जाम्पल खुद बनिए, आप लोगों के सामने अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में रखिए कि देखिए भैया, हमने ये किया तो इसके ये फायदे नजर आए। और जब अच्छे फायदे सबको दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी दिनचर्या सुधरेगी, उनके भी आदतें सुधरेगी, उनकी भी लाइफ स्टाइल बदलेगी।
0: हाँ, बस छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है, और अगर जो है
1: तो हंसते काटना है तो बस सुधर जाइए आप। और ऋतु हमें एक प्यारा सा गीत सुनवाएंगी।

0: और देखिए मीता, हंसते हंसते रास्ते तभी कटेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें घूमने का मन तो करेगा।
1: बिल्कुल, हम मैं वहीं पर आ रही थी अभी ऋतु, कि हंसते हंसते रास्ते कटने के लिए घर से निकलना होता है।
0: हाँ,
1: तो जब आप किसी रास्ते पे चलिएगा तभी तो किसी मंजिल तक पहुंचिएगा।
0: हाँ हाँ, तो आज हम अपने श्रोताओं को कहाँ लिए चल रहे हैं घुमाने के लिए?
1: वैसे तो जगह बहुत सारी है ऋतु, हमारे अपने झारखंड में हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, नदियों झीलों तालाबों से भरपूर है। लेकिन कहते हैं ना कि अपना
0: यहाँ घूमने के बाद हमें कहीं बाहर भी निकलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसा ही एक जगह महाराष्ट्र में है जिसे हम कोलाड के नाम से जानते हैं,
1: और महाराष्ट्र के ये ऋषिकेश के रूप में मशहूर है।
0: हाँ, क्योंकि यहाँ पानी का रोमांच है,
1: मानसून के समय और भी खूबसूरत हो जाती है ये जगह। राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है कोलाड, अपने झरने हरी घास के मैदानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप रैपलिंग, कैपिंग, कायकिंग जैसी गतिविधियां कर सकते हैं, और ये कुंडलिका नदी है वो भी लोगों के लिए बड़ा आकर्षण है।
0: हाँ, और यहाँ राफ्टिंग करने का अपना ही मजा है, और यहाँ साथ ही साथ मिता कुछ किले और बांध भी हैं। कुल मिलाकर कोलाड परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श जगह है।
1: तो कब और कैसे जाएं ये हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे।
0: हाँ,
1: तो अगर आप वाटर राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए यहाँ

0: आना चाहते हैं तो जून से अक्टूबर तक मानसून के दौरान आप जाएं, यानी कि ये महीना तो बिल्कुल आपके फेवर में है।
1: हाँ।
0: इन महीनों में नदी में पानी का स्तर ऊंचा होता है जिससे राफ्टिंग आनंददायक हो जाती है। और जहां तक यहां पहुंचने की बात है तो ऋतु कैसे जाएं बताएंगे आप?
1: तो जैसे आप ट्रेन से मुंबई पहुंचिए और यहां से पैसेंजर ट्रेन से रोहा पहुंचिए। यहां से कोलाड जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर यहां से कोलाड बोटिंग पॉइंट के लिए ऑटो ले लें। और मिता, यहाँ ठहरने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लग्जरी होटल है, जो रिसोर्ट भी है यहाँ पे।
1: हाँ।
0: जो आपको प्राकृतिक वातावरण भी देंगे और टेंट और कोंकणी शैली में बने कॉटेज भी मिल जाएंगे।
1: हाँ, जहाँ आप बहुत आनंद पूर्वक रहेंगे
0: प्रकृति के बीच में मिलेगा।
1: हाँ।
0: तो आप जा किस ले रहे हैं प्रकृति के बीच रहने के लिए?
1: हाँ।
0: तो और जो ऋतु, खास बात यह है कि इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी यहाँ कुछ किले हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे
1: हाँ।
0: कि सुधागढ़ किला, वचित गढ़ किला, रायगढ़ किला, मुरुद जंजीरा किला आदि। इसके अलावा तमहिनी घाट का फांसड वन्य जीव अभ्यारण भी आप जा सकते हैं।
1: हाँ, और कोलाड जैसे दूर दराज गांव में सूरज ढलने के बाद चीजें बेहद शांत हो जाती हैं। और ऐसे में अगर आप नाव से यात्रा करेंगे ना तो इसका एक अलग ही रोमांच होता है।
0: आपने तो बिल्कुल अरमान जगा दिए हैं ऋतु।
1: हाँ।
0: अब तो लग रहा है कि कब हम भी अपने परिवार के साथ यहाँ का ट्रिप प्लान करें।
1: हाँ, तो यहाँ जाइएगा तो आपको कोंकणी अंदाज की खाने की शैली आपको मिलेगी,
0: अगर आप मांसाहारी हैं तब।
1: तब हाँ, और ऐसे भी खाने का यहाँ दिक्कत नहीं है, कई जगह आपको अच्छी अच्छी थालियाँ मिलती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आप यहाँ एक बार घुमाइए। और
0: वैसे अगर आप कहीं और घूमने जाना चाहते हैं तो आप हमें भी जरूर बताइए। वैसे ये गाना भी सुन लीजिए आप।

0: और रितु, आज ये फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो का सफर आंसुओं के साथ खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 41 वर्षीय रोनाल्डो का यह छठा वर्ल्ड कप था। हार के बाद रोनाल्डो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं दुखी हूं, पर मैंने अपना सब कुछ दिया है और मैं साफ जमीर के साथ विदा ले रहा हूं। हालांकि रोनाल्डो ने साफ किया है कि नेशनल टीम में खेलने के लिए वो तैयार हैं।
1: बिल्कुल, तो इस वर्ल्ड कप में 17 शॉट्स लिए और एक भी गोल का मौका नहीं बना पाए। 60 वर्षों के वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कोई खिलाड़ी 17 शॉट्स लेने के बाद भी गोल का मौका नहीं बना पाया हो।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए रोनाल्डो को हम भी विदाई देते हैं और इनके आगे के जीवन के लिए इन्हें शुभकामनाएं देते हैं
0: और अपने श्रोताओं से भी हम यहीं पर विदा लेना चाहेंगे।
1: हाँ, तो जोहर रांची से अपने श्रोताओं को हम कहते हैं जोहर,
0: नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आइए अब सुनते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद की ये पहली फरमाइश औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर राही, श्रीमती सरिता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाणकर, प्रणीता ग्वाणकर, अर्जुन ग्वाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाणकर, सुमित ग्वाणकर और कुमारी ध्वनि ग्वाणकर परी। आप सबों ने सुना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कल आज और कल का ये गाना।

और अब इन श्रोताओं की फरमाइश आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, चैतिक विरक और मिका विरक, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार राय और हैप्पी रॉय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। आप सबों ने सुना चाहे है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म तेरी कसम का ये गाना।

श्रोता सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए सुनिए इनकी फरमाइश। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म प्यार का मौसम का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और फिरोज आलम और चांदी नाज, बड़ा बॉम्बे सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, श्याम देव नायक और ललिता प्रधान, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली बेसरा और सिद्ध कुमारी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, सिरासपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म दो रास्ते का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, जहां हम बात करते हैं आपके घर, आपके जीवन और आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों की, जो आपके जीवन को और भी सुंदर, सुरक्षित और खुशहाल बनाती है। और कार्यक्रम के आज के सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं रानी
1: और मैं वंदना। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ इस रिमझिम बारिश के खूबसूरत मौसम का आनंद भी उठा रही होंगी।
0: बिल्कुल सही कहा वंदना, बारिश की रिमझिम फुहारें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ धरती ही नहीं महकती, महक उठती है यादें, रिश्ते और घर आंगन की रौनक भी।
1: हाँ, बरसता पानी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और चारों ओर फैली हुई हरियाली और मन में ताजगी का एक अनोखा एहसास। बारिश का मौसम तो सचमुच अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है।
0: लेकिन बहनों, इसी खूबसूरत मौसम के साथ कुछ जरूरी जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं कि हम अपने घर की देखभाल कैसे करें और अपने परिवार को इस मौसम में सुरक्षित कैसे रखें।
1: हाँ बहनों, बारिश का मौसम जितना मन को सुकून देता है उतना ही ये घर के लिए चुनौतियां भी लेकर आता है। कहीं दीवारों पर नमी, कहीं फर्श पर फिसलन तो कहीं रसोई और सामान में सीलन की समस्या, साथ ही गंदगी और मच्छरों की समस्या।
0: हाँ बिल्कुल, और अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये छोटी छोटी समस्याएं ही बड़ी परेशानी का रूप ले सकती हैं और हमारी बहनें अनावश्यक रूप से परेशान हो सकती हैं। वंदना,
1: हाँ लेकिन बहनों ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, यह हमारी सुरक्षा है और हमारी मेहनत का परिणाम है।
0: हमारे अपनों के प्यार से बुना हुआ हमारे सपनों का सुंदर संसार है। और जब मौसम बदलता है तो घर की देखभाल का तरीका भी बदलना चाहिए।
1: जरूर,
0: थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सावधानी और सही उपायों के साथ बारिश में भी आप अपने घर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बनाए रख सकती हैं बहनों।
1: जरूर, और इसके लिए सबसे जरूरी बात है बहनों कि अपने घर की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखना, खासकर इस मौसम में जब नमी और सीलन की समस्या बढ़ जाती है, तब थोड़ी अतिरिक्त देखभाल भी जरूरी हो जाती है।
0: हाँ, अक्सर हम सोचते हैं बहनों कि वीकेंड पर एक साथ सफाई कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सफाई करने से काम आसान भी हो जाता है और घर भी हमेशा साफ रहता है। क्यों वंदना?
1: एकदम सही कहा रानी तुमने। चलिए अब बात करते हैं कि घर की छत और दीवारों की यदि कहीं से पानी के रिसने की आशंका हो तो समय रहते उसकी मरम्मत हमें करनी चाहिए, और छोटी सी लापरवाही जो है वो आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है।
0: बिल्कुल, घर में नमी और सीलन से बचने के लिए खिड़कियां समय समय पर खोलें ताकि ताजी हवा के साथ साथ रोशनी का आवागमन भी बना रहे। पता है वंदना, इससे न केवल घर का माहौल हल्का और सुखद बनता है बल्कि बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाव होता है।
1: एकदम सही कहा रानी कि जब भी अच्छी धूप निकले तो कपड़ों के साथ साथ गद्दों और तकियों को भी हमें धूप में देना चाहिए, इससे उनमें जो नमी होती है या बदबू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
0: हाँ, और बरसात में मच्छरों और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो इनसे बचने के लिए घर के आसपास या फिर गमलों में भी पानी जमा ना होने दें, पानी की टंकियों को ढक कर रखें और घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ रानी, तो चलिए अब बात करते हैं कि घर के उस हिस्से की जहाँ से पूरे परिवार की सेहत जुड़ी होती है, यानी कि हमारी रसोई। बारिश के मौसम में रसोई की साफ सफाई पर थोड़ा अधिक हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि नमी के कारण खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए अनाज, दालें और मसालों को हमेशा साफ, सूखे और अच्छी तरह बंद एयर टाइट डिब्बों में ही रखें बहनों, ताकि उनमें नमी ना पहुंचे और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
1: हाँ, और इसके साथ खाने पीने की चीजों को हमें ढक कर रखना चाहिए और कोशिश करें कि परिवार को ताजा और गर्म भोजन ही परोसे। रसोई के सिंक, किचन स्लैब और डस्टबिन की भी रोज हमें अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए ताकि नमी के कारण वहाँ बैक्टीरिया और दुर्गंध न पनपे।
0: बिल्कुल सही कहा वंदना, बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है बहनों। इस समय हाथ सूखे रखें, गीले हाथों से कभी भी स्विच या प्लग को ना छुएं, किसी भी बिजली के तार या उपकरण में खराबी हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। याद रखिए बहनों, हमारी थोड़ी सी सावधानी ही हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।
1: घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दे, बरसात में अक्सर फर्श गीला और फिसलन भरा हो जाता है जो बच्चों, बुजुर्गों और आपके लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए फर्श की नियमित सफाई कर उसे सूखा रखें और मुख्य दरवाजे पर बेकिंग डोरमेट बिछाएं जो रबड़ का आता है,
0: हाँ हाँ,
1: ताकि फिसलन ना हो।
0: बिल्कुल, इससे बाहर का पानी और गंदगी घर के अंदर कम आएगी बहनों, और फिसलने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। और वहीं पता है वंदना, लकड़ी के फर्नीचर मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ने से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए फर्नीचर को भी नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछे ताकि उस पर नमी जम ना पाए।
1: एकदम सही कहा रानी। और इन सब के अलावे हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर की व्यक्तिगत स्वच्छता का।
0: हाँ, बिल्कुल
1: बहनों, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो पूरे घर की देखभाल हम अच्छे तरह से कर पाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, याद रखिए बहनों, एक स्वच्छ घर, स्वस्थ परिवार और एक मुस्कुराती हुई गृहिणी, यही खुशहाल जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। और इसी सुंदर सोच और मुस्कान के साथ वंदना, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: तो चलिए बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
2: और बहनों, घर की देखभाल जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी होता है अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही कई समस्याओं को न्योता दे सकती है। और इन्हीं बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए भेंट वार्ता, बदलते मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं पुष्पांजलि जगाती और इनसे बातचीत कर रही हैं आपकी रेडियो सखी वंदना राय।
3: बदलता हुआ मौसम वह समय होता है जब एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे कि गर्मी से बारिश या बारिश से सर्दी। इस दौरान तापमान, नमी और वातावरण में बदलाव के कारण हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानकारी करेंगे कि बदलते हुए मौसम में हमें अपने सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए, और इसके बारे में हमें बताएंगी पुष्पांजलि जगाती। तो पुष्पांजलि जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पुष्पांजलि जी, सबसे पहले आप हम बहनों को बताएं कि बदलते हुए मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
4: बदलते मौसम के कारण तापमान और नमी में अचानक उतार चढ़ाव होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। इससे वायरल संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी और अस्थमा के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव का भी अनुभव होता है। श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती हैं।

0: मौसम के बदलने से हवा में नमी और प्रदूषण का स्तर बदलता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी बीमारियां ट्रिगर हो सकती हैं। वायरल संक्रमण की वजह से फ्लू भी होता है। तापमान के तेजी से बदलने पर शरीर जल्दी ढल नहीं पाता, जिससे गले में खराश, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती है। त्वचा में एलर्जी, अचानक गर्मी या नमी बढ़ने से त्वचा पर रैशेज, खुजली और एक्जिमा की समस्या बढ़ जाती है। हृदय और रक्तचाप, अत्यधिक ठंड या गर्मी से ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव आ सकता है, जिससे हृदय रोगियों पर दबाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य, मौसम परिवर्तन विशेषकर धूप की कमी से मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित होता है, जिससे कुछ लोग अवसाद या मौसमी भावात्मक विकार का शिकार हो जाते हैं।
1: मौसम बदलने पर सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है और मौसम बदलने पर हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए?
0: बदलते मौसम के कारण शरीर को नए तापमान के अनुसार ढलने में समय लगता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू, मौसमी एलर्जी और पेट के संक्रमण जैसे डायरिया और फूड पॉइजनिंग होते हैं। अचानक तापमान बदलने के कारण राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस आसानी से फैलते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, हल्का बुखार और थकान शामिल है। मौसम बदलने पर हवा में परागकण, धूल के कण और फफूंद बढ़ जाते हैं। इसके प्रभाव से आंखों में जलन, छींक आना और अस्थमा के मरीजों की सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। बदलते मौसम में तापमान और नमी के उतार चढ़ाव से वायरल फीवर आम हो जाता है। इसके साथ ही यदि मौसम में बारिश शामिल हो तो मच्छरों के पनपने से डेंगू और मलेरिया के प्रकोप भी बढ़ जाते हैं। मौसम के संक्रमण के दौरान भोजन जल्दी दूषित होता है और इसके कारण डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बदलते मौसम में विशेषकर गर्मी से बरसात शरीर को नए तापमान के अनुसार ढलने में समय लगता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू, मौसमी एलर्जी और पेट के संक्रमण जैसे डायरिया और फूड पॉइजनिंग होते हैं। अचानक तापमान बदलने के कारण राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस आसानी से फैलते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, हल्का बुखार और थकान शामिल है। मौसम बदलने पर हवा में परागकण, धूल के कण और फफूंद बढ़ जाते हैं। इसके प्रभाव से आंखों में जलन, छींक आना और अस्थमा के मरीजों की सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। बदलते मौसम में तापमान और नमी के उतार चढ़ाव से वायरल फीवर आम हो जाता है। इसके साथ ही यदि मौसम में बारिश शामिल हो तो मच्छरों के पनपने से डेंगू और मलेरिया के प्रकोप भी बढ़ जाते हैं। मौसम के संक्रमण के दौरान भोजन जल्दी दूषित होता है और इसके कारण डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
1: बदलते हुए मौसम में हमें बच्चों और बुजुर्गों को कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए और क्या हमें इस मौसम पर नियमित व्यायाम करना आवश्यक है और क्यों?
0: बदलते मौसम में विशेषकर गर्मी से बरसात या ठंड में बदलाव में बुजुर्गों और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए खान पान में शुद्धता, नियमित हाइड्रेशन और तापमान के अनुसार सही कपड़ों का चुनाव जैसा विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। खान पान और हाइड्रेशन में भरपूर पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। बच्चों और बुजुर्गों को सादे पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और ORS देते रहें। बाहर के खाना खाने से बचें। बदलते मौसम में

0: नुकसान जैसे कि जोड़ों में अकड़न या सुस्ती से बचाता है। रोग प्रतिरक्षक क्षमता का विकास होता है। बदलते मौसम में लोग अक्सर सर्दी, खांसी या वायरल संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने में शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मैक्सिमम हेल्थ केयर के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। व्यायाम करने से ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मौसमी बदलाव से कई बार आलस, थकान या मनोदशा प्रभावित होती है। द वेलनेस कॉर्नर के अनुसार व्यायाम करने में शरीर में एंडोर्फिन खुशी देने वाला हार्मोन का स्तर बढ़ता है।
1: इस मौसम में नींद का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या घरेलू उपाय से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं?
0: बदलते मौसम में तापमान, दिन की लंबाई और प्राकृतिक रोशनी में बदलाव होता है, जो शरीर की आंतरिक घड़ी सर्कैडियन रिदम और मेलाटोनिन नींद का हार्मोन को प्रभावित करते हैं। इससे नींद की अवधि, गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। विभिन्न मौसमों के अनुसार नींद और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव जो होते हैं वो इस तरह है, जैसे कि गर्मी का मौसम, अत्यधिक गर्मी और उमस से शरीर का तापमान कम नहीं होता, जिससे नींद में बार बार खलल पड़ता है और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। देर तक धूप रहने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है। बारिश और नमी में इस मौसम में धूप की कमी के कारण शरीर में सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। इन सबसे बचने के उपाय में जो है, सोने के लिए कमरे का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। मौसमी अनिद्रा को समझने के लिए स्लीप वेलनेस पर लेख पढ़ें। सर्दियों में कम धूप से निपटने और नींद के पैटर्न में सुधार के लिए प्रीमियर मेडिकल से सलाह लें। गर्मियों में सोने में होने वाली दिक्कत और स्लीपिंग डिसऑर्डर को दूर करने के तरीकों के लिए आर्लिंगटन के हृदय रोग क्लिनिक की जानकारी देखें। यदि बदलाव के कारण लगातार नींद में दिक्कत हो रही है तो विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। सर्दी या खांसी और भी वायरल संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन पानी से 20 सेकंड तक बार बार धोएं। चेहरे या मुंह को छूने से बचें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक आहार व पर्याप्त नींद लें। बीमारी और संक्रमण से बचाव व राहत के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता करनी भी जरूरी है, जैसे कि घर आने के बाद और भोजन करने से पहले हाथों को अच्छे से साफ करें। यदि साबुन पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बदलते मौसम में हमारे पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करें। अपनी डाइट में अदरक, जीरा, हल्दी जैसे मसालों के साथ मौसमी फल और सूप शामिल करें। ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पिएं और बाहर के तले भुने खाने से बचें। बरसात और नमी के मौसम में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, इसलिए मूंग की दाल, खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां जैसे लौकी, तोरई और पपीता जैसे आसानी से पचने वाले फल खाएं। सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखने के लिए बाजरा, मक्का, मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, तिल और नट्स जैसे बादाम, अखरोट को अपने आहार में शामिल करें। इसके अलावा अदरक और तुलसी वाली चाय या काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाता है।
1: और आखिरी में एक सवाल कि हमें इस मौसम में डॉक्टर से सलाह कब लेना चाहिए?
0: लेकिन अगर आपको 2 से 3 दिन से ज्यादा तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह दें। डॉक्टर से परामर्श करना तब और भी जरूरी हो जाता है जब खांसी, गले में खराश या बलगम लगातार बढ़ता जाए और घर के बने नुस्खों जैसे कि काढ़ा, भाप आदि से भी राहत ना मिले।
1: तो पुष्पांजलि जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहनों अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता। बदलते मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल, इस विषय पर और भेंटवार्ताकार थी पुष्पांजलि जगाती और जिनसे बातचीत कर रही थी आपकी रेडियो सखी वंदना राय। और वंदना अब आगे क्या इरादा है,
2: चलिए सुनते हैं, जानकारी करते हैं कि हर मौसम की अपनी एक खास खुशबू होती है, स्वाद होता है। गर्मियों में आम की मिठास, सर्दियों में गाजर के हलवे की महक और बारिश के मौसम में आती है अदरक वाली चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े की याद।
1: बात तो बिल्कुल पते की है वंदना, क्योंकि जब आसमान से बूंदे बरसती हैं तो खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना, वो भी हाथों में अदरक इलायची वाली चाय और गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़ों के साथ, तो फिर मौसम का आनंद तो भाई कई गुना बढ़ जाता है।
2: एकदम सही कहा, बारिश का मौसम और पकौड़ों का रिश्ता तो काफ़ी पुराना होता है। इस मौसम में पकौड़े सिर्फ एक व्यंजन नहीं होते बल्कि एक प्यारी सी परंपरा बन जाती है, और इसी स्वाद भरी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज हम बहनों के लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकौड़ों की जानकारी, जो बारिश के इस मौसम को भी और ख़ास बना देंगे। लेकिन इसकी जानकारी हम करेंगे इस सुंदर से गाने के बाद में
1: जी।

0: हाँ तो बहनों, इस सुंदर गीत से पहले हम जानकारी कर रहे थे कि इस बारिश के मौसम और पकौड़ों के बारे में। तो चलिए जानते हैं तरह तरह के पकौड़े बनाने की विधि के बारे में। तो पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है बेसन का, और अच्छा और स्वादिष्ट घोल उसका बनाना चाहिए, क्योंकि अगर घोल सही तैयार हो जाए तो पकौड़े भी बनते हैं स्वादिष्ट और एकदम कुरकुरे।
1: बिल्कुल। और इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में बेसन लें, उसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया मिला ले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऐसा घोल तैयार करें जो न बहुत पतला हो और न बहुत गाढ़ा।
0: हाँ, अब इस घोल को हम कुछ मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। जब तैयार है पकौड़ों का स्वादिष्ट घोल, अब इस एक ही घोल से हम बना सकते हैं कई तरह के स्वादिष्ट पकौड़े, जैसे कि प्याज के पकौड़े। बारिश की पहली पसंद है प्याज के पकौड़े। प्याज के पतले पतले स्लाइस में हम उसे काट लेंगे और इस घोल में मिला देंगे और गर्म तेल में तलेंगे, वो भी एकदम धीमी धीमी आँच पर, सुनहरे और कुरकुरे होने तक।
1: हाँ, और इसी तरह आप आलू के पकौड़े भी तैयार कर सकती हैं बहनों, जिसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। अगर आप स्वाद के साथ सेहत चाहती हैं तो पालक पकौड़े, पनीर के पकौड़े भी एक बेहतरीन विकल्प हैं।
0: फूलगोभी के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, ये भी हम बना सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो मसालेदार मिर्च के पकोड़े भी बारिश की शाम को और मजेदार बना देते हैं।
1: हाँ, और जब बात हो झटपट बनने वाले नाश्ते की, तो ब्रेड पकोड़े सबसे आसान विकल्प हैं और स्वादिष्ट भी। मसालेदार आलू की फिलिंग के साथ आप इसे तैयार कर सकती हैं बहनों।
0: हाँ, और वही मूंग दाल के पकोड़े स्वाद के साथ पौष्टिकता भी देते हैं बहनों। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को कुछ देर हम भिगो कर रखेंगे और फिर इसे अदरक और हरी मिर्च के साथ दरदरा पीस लेंगे।
1: हाँ, अब इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया मिलाकर गर्म तेल में मध्यम आंच पर छोटे छोटे पकौड़े डालकर सुनहरे और कुरकुरे होने तक तल लें। क्यों वंदना?
0: एकदम सही बात है। तो इतने सुंदर सुंदर पकौड़े आप घर में बना सकती हैं, खा सकती हैं और अपने घर वालों को खिला सकती हैं और बारिश का मजा भी ले सकती हैं। तो रानी, अब तो हमारे जाने का समय हो गया है।
1: हाँ हाँ,
0: तो अगले कार्यक्रम में फिर हम बहनों के साथ भेंट करेंगे,
1: बातें करेंगे। और जाने से पहले बहनों, आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अब अपनी सखियों रानी
0: और वंदना को दे विदा।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

0: मैंने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के पहले सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

और आइए अब सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और इन बोलों को सुर में पिरोया है राहुल देव परमन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को एक बार फिर सुनते हैं फिल्म दो चोर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसे संगीत से सवारा है रोशन ने, बोलो को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म आरती से।

आप आए बाहर आई। इस फिल्म का गीत अब हम सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: फिल्म संगीत संपन्न
1: हुआ। समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक मुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को डीवीसी के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे आज मधुकम में 1,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी नाली और सड़क कालीकरण का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा हातमा में 34,00,000 रुपए की लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नई दिल्ली में आज से आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन को राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल से देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
3: हम लोगों ने तो देखा है हाथी उड़ाने वाली सरकार भी, हम लोगों ने देखा है नौकरियों देने के नाम पर करोड़ों करोड़ों की लूट हुई और नौकरियां मिलती थी एटीएम में गार्ड। तो पहली बार एक ईमानदार सरकार पिछले 6-6.5 वर्षों में और जिस सोच के साथ माननीय हेमंत जी आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह झारखंड राज्य अग्रणी राज्य, जो अगुआ राज्य है, विकसित राज्य है, उस श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में होंगे।
1: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बीच सरकार दिल्ली में सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है।
4: यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी इससे पहले डावोस, स्वीडन, स्पेन और इंग्लैंड की यात्रा कर आए थे, करोड़ रुपए फूके गए थे उस यात्रा में, 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी को इस समिट के पहले, जो इनकी पहले की यात्रा है जिसमें करीब 20 करोड़ रुपया फूका गया है, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट आया।
1: रांची जिले की 3,66,000 से अधिक महिला लाभुकों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि एक मुश्त भेज दी गई है। आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को 7,500 रुपए मिले हैं। इस मद में कुल 274 करोड़ रुपए से अधिक का पारदर्शी भुगतान किया गया है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में MRMR 2.0 अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने तसर उत्पादन की नवीन तकनीकों, डिजिटल मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुधार पर विचार विमर्श किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi

0: और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के केंदुआडीह में भू धसान और गैस रिसाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक की है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बंद पड़ी धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को खोलने से पहले BCCL, IIT और सिम्फर की निगरानी में वैज्ञानिक जांच कराएगा।
1: घटना है ये भू धसान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है, 1980 से बता रहे हैं, लगातार हो रही है, तो डेंजर जोन तो है, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, DGMS है, ITISM है, सिम्फर है, उनके भी एक्सपर्ट थे, तो उन लोगों ने सबने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक SOP देंगे, जिस SOP के तहत BCCL और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा।
0: जमशेदपुर के चर्चित DD बार हत्याकांड में पुलिस ने मैनेजर समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। SSP एहतिशाम वकारिब ने बताया कि इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, चापड़ और गुप्ती जैसे घातक हथियार बरामद किए गए हैं। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
2: पूर्व में 5 अभियुक्त को भेजा गया है और आज 4 अभियुक्त को भेजा जा रहा है। जो हमारी SIT बनी थी वो लगातार इस पे काम कर रही है पिछले 1 वीक से, और इसमें हमें लगातार सफलता मिली है, जिसमें अब तक जो भी नामजद अभियुक्त थे गिरफ्तार किए गए हैं, 2 बच गए हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 465 अंक फिसल कर 77,716 पर, जबकि निफ्टी 141 अंक गिरकर 24,258 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,38,000 रुपये प्रति किलो है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. PK मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
3: डॉक्टर PK मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20,00,000 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एकमुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को DVC के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित DD बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

आइए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम सुनेंगे शोभा गुट्टू को। सबसे पहले सुनते हैं राग मिश्र खमाज में ये ठुमरी, बोल है अब कैसे थरूं धीर।

0: शोभा गुट्टू की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये दादरा।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर मां की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हम सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुने सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में हम सुनेंगे गजल मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में।

0: मिताली सिंह की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये गजल, और अब इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार।
1: I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in

0: की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग

0: 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: Cena.
1: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम जय भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का ये गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाज में। बोलो को लिखा है समीर ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह के बोल हैं, संगीत है सचिन देव बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म मिली का ये गाना, योगेश के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। आइए सुनिए फिल्म पत्थर के सनम में मोहम्मद रफी को।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दुमका के सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। अब तक 34,000 से अधिक अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। 11 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। दुमका जिले में इस वर्ष कम वर्षा और अल नीनो के प्रभाव की आशंका को देखते हुए विशेष मिलेट जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जानी है। यह राशि अधिकतम 5 एकड़ और न्यूनतम 10 डिसमिल जमीन में खेती के लिए दी जाएगी। अभियान की शुरूआत दुमका सदर प्रखंड की बेहरा आप पंचायत से की गई है। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नव निर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पैसा ठगने का काम करते थे।
2: साइबर क्राइम से संबंधित प्रतिबिंब ऐप द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर टीम और मेरे तकनीकी शाखा डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में छापेमारी किया गया है। छापेमारी के क्रम में 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद साइबर क्राइम से संबंधित कई सारे डॉक्यूमेंट और मोबाइल बरामद किया गया है।
0: रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित जेट के टोला गांव में एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पर अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। और हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदीव्य कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
1: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
1: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
1: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
1: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
1: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
1: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
1: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
3: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
3: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
3: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहाँ लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही

0: नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहाँ आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्केर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: एनसीईआरटी द्वारा।

आयोजित कार्यक्रम उमंग भी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म मेरे हमसफर का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आइए सुनिए मन्ना डे की आवाज में फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे साहिर की रचना को। इस गाने को सुरों में पिरोया था रोशन ने, धुन तैयार की थी रोशन ने और फिल्म का नाम था बहू बेगम। आइए सुने फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। बुलू को लिखा है मजरू ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ ही अब आज का हमारा रांची मेलोडीज फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम करकेट्टा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले के पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले दो गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पैसा ठगने का काम करते थे। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। 11 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आइए सुने कार्यक्रम बढ़ते कदम। आज हम सुनेंगे झारखंड में एमएसएमई के माध्यम से नए उद्योगों की हो रही शुरुआत और हो रहा है रोजगार सृजन। भेंटवार्ता होगी एमएसएमई का लाभ ले रहे लाभार्थियों से। भेंटवार्ताकार हैं आशुतोष कुमार और वीरेंद्र रावत, भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्रा। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। उम्मीद करता हूं कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत ही ये खूबसूरत जिंदगी है। बस जरूरी ये है कि हम किस तरीके से, अपने किन कामों से, अपने किस सोच से, कैसी शुरुआत से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। कार्यक्रम बढ़ते कदम भी वही काम करता है। सरकार के उन सकारात्मक सोच को शामिल करता है, सरकार के उन योजनाओं को शामिल करता है जिनसे हम और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपने जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आज के कार्यक्रम में हम एमएसएमई की बात करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम एमएसएमई के साथ आज किस तरीके से झारखंड में बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं, आज किस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आज किस तरीके से छोटे सपने बड़े बन रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके सपनों की, हम बात करेंगे आपकी एक नई शुरुआत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सपना खलको से, और नाम भी इनका सपना है और आज ये अपने सपने को पूरा कर रही है एमएसएमई के माध्यम से। सपना ने अपने मेहनत से हैंडीक्राफ्ट्स की शुरुआत की है और अपने शौक को पैशन में बदला और इस पैशन को पूरा करने में एमएसएमई ने साथ दिया। इन्हें बहुत सारे टूल्स दिए, इन्हें बहुत सारे मशीन्स दिए और आज सपना खुद का अपना काम कर रही हैं। बाहर से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं और लोग इनके बारे में पूछते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सपना, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं सपना आप?
2: ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। सपना ये बताएं, कितना अच्छा लगता है जब आज आप जिस चीज के लिए सोची, जिसके लिए मेहनत की, आज उसे आपने एक मुकाम दिया है?
2: बहुत ही अच्छा लगता है सर, सबको ये सम्मान देते हैं, मुझे बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
1: सपना हम ये बात करें कि कैसे आप एमएसएमई से जुड़ी, कहाँ पे आप गई, विभाग में कैसे मिली, क्या फॉर्म भरी, उससे पहले थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सपना,
2: इसकी शुरुआत सर हम लोग के शौक से, हम लोग जो घड़ा में पेंटिंग करके, ऐसे टूटा फूटा घड़ा रहता था उसमें हमने पेंटिंग करके शुरुआत की, जिसके द्वारा हमें बेनिलम नगर निगम के द्वारा बुलाया गया, फिर हमारा काम देखा गया, फिर हमें भी एक समूह ग्रुप बनाने के लिए बोला गया, जिसमें हमारे घर आके उन्होंने खुद ही ग्रुप बना के रजिस्टर किया। उनके बाद ऐसे धीरे धीरे उन्होंने हमें स्टॉल देना शुरू किया, जैसे कि वेंडर स्टॉल होता है टाइप से उन्होंने हमें स्टॉल लगाने का मौका दिया, जिससे हम अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा सके।
1: अच्छा, जो मेला वगैरह लगता है उस मेला में आपको स्टॉल्स भी दिए जाने लगे?
2: हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि आपका खादी मेला हो गया, सरस मेला हो गया, ये वेंडर मार्केट देख रहे हैं, वहाँ भी थर्ड फ्लोर में आपका स्टॉल लगता है, वो सिर्फ आपका नगर निगम के द्वारा ही, नगर निगम की लेडीज लोग के लिए ही रहता है, वो जो आपका महिला समूह बनाती है उन्हीं के लिए वो स्पेशल वेंडर स्टॉल लगाया जाता है, ताकि वो अपना प्रोडक्ट, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, वो सब वहाँ पे वो बेच सके।
1: तो आप क्या क्या आर्ट बनाती हैं हैंडीक्राफ्ट्स में सपना?
2: सर हम डोकरा, सोहरई, फिर अभी भेल पेंटिंग है, वो भी थोड़ा सीख रहे हैं। तो इसी तरह जितना भी कल्चर से जुड़ा हुआ पेंटिंग हो गया, फिर हैंडीक्राफ्ट मटेरियल अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका पुरखों से चलता आ रहा है, उस टाइप का हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं।
1: तो सपना आप ये बताएं कि वो सपना जो आप बता रही हैं कि चार बहन ऐसे ही घर पे एक छोटी सी शुरुआत आप लोग किए, तो वो सपना कैसे वो अपने काम को बढ़ा पाई, कैसे वो एमएसएमई से जुड़ी?
2: सर एमएसएमई से तो एक मैम थी, वो हम पहले तो हमें ट्राइब इंडिया से जोड़ा उन्होंने काम देकर कि आप लोग पेंटिंग करते हैं, तो इसी तरह जोड़ा गया। तो फिर उन्होंने बताया कि एमएसएमई के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, तो उन्होंने हमें फॉर्म भराया, लेकिन वो पेंटिंग का नहीं था, वो फ्रेमिंग का था, क्योंकि पेंटिंग हम लोग ऑलरेडी करते थे, तो इसलिए उन्होंने फ्रेमिंग का हमें 25 दिन का कोर्स होता है उसमें हम लोग से फॉर्म भरा के 25 दिन का कोर्स कराया, उसमें उन्होंने स्टेपन भी दिया। उसी तरह हम लोग ने अच्छा से काम किया तो लास्ट में हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, फिर टूल किट भी प्रोवाइड कराया।
1: यानी आपको ट्रेनिंग भी दी गई, आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया और उसके बाद टूल्स भी दिए गए।
2: हाँ, टूल्स भी दिए गए सारे, तो जितना भी मेंबर थे सारे को।
1: अब आप पहले तो बताएं कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हुई और किस तरह, कितना कितना अच्छा अनुभव रहा आपका ट्रेनिंग का?
2: ट्रेनिंग हमारे ही एरिया हीनो में ही हुआ। जैसे कि आपका कुछ एरिया वाइज या एनजीओ के माध्यम से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी तरह एनजीओ हमारा हीनो में एक है, उन्हीं का संतोष बीएड कॉलेज करके उन्हीं का एक एनजीओ है यहाँ हीनो में। तो वो 25 दिन का हमें रूम अपना शेयर दिए, वहाँ से हमने ट्रेनिंग किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जिसमें हम लोग सीखे तो थोड़ा हिम्मत आया और भी आगे बढ़ने का कि हम लोग फ्रेमिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर सर सर सब आए, मैम आई, धन्यवाद देंगे सबसे ज्यादा एतन मैम को।
1: तो ट्रेनिंग हुआ आपका, उसके बाद सर्टिफिकेट मिला, आपको टूल्स में क्या क्या दिया गया सपना?
2: टूल्स में सर जितना भी हम लोग ट्रेनिंग किए, हैम्पर हो गया, आपका कटर हो गया, कैंची हो गया, जितना भी फ्रेमिंग का सामान आता है वो सारा पूरा एक बॉक्स करके हमें दिया गया।
1: यानी एक तो एक हैंड आपका खुद का पेंटिंग का था जो आप शुरुआत से कर रही थी, और आपको एमएसएमई से ये सहयोग मिला कि अब आप पेंटिंग तो कर ले रही हैं लेकिन फ्रेमिंग महंगा आता है, चीजें महंगी आती, तो आपको वो एमएसएमई के माध्यम से सारे टूल किट्स मिल गए। कितना एक बदलाव आया सपना आपके काम में जब आप एमएसएमई से कनेक्ट हुई, फ्रेमिंग सीखी, ट्रेनिंग ली, फिर ये टूल आपको मिले, ये सारे किट आपको मिले, क्या क्या बदलाव आया इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बदलाव तो सबसे पहले से हमारा जो हम दूसरे के यहाँ से फ्रेमिंग करा के देते थे वो कॉस्टिंग बच गया, फिर प्रेस टाइमिंग बच गया कि हम लोग जाके दूसरे के यहाँ जाने में एक टाइम निकाल के वहाँ फ्रेमिंग कराने जाओ, फिर उसको दूसरे दिन लेने जाओ, तो ये हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग प्लस जो हमारा ट्रैवल है वो भी बचा, से एक कॉस्टिंग हम लोग का क्रिएट हुआ कि हम दूसरे को सस्ते दाम में भी दे सके और महंगे दाम में भी दे सके, इस तरह हमें अनुभव हुआ और बहुत कुछ सीखे हम लोग मार्केट में कि किस तरह से फ्रेमिंग करना चाहिए, कैसे देना, कहाँ पे कौन सा फ्रेमिंग चलता है, ये सब का थोड़ा अनुभव मिला।
1: कितना एक बदलाव आपकी जिंदगी में है, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है पहले आप दूसरी जगह जाके करती थी या छोटे से रूम में करती थी, और अब आपने अलग जगह ही ले लिया जहां पे अब आप काम कर रही हैं।
2: बहुत ही बड़ा एहसास है, ये तो बयां भी नहीं कर सकते सर।
1: नहीं, ये एक बदलाव आ गया आपका कि पहले बहुत छोटे से जगह पे कर रही थी, अब आपने स्पेशली एक जगह किराए पे लिया काम करने के लिए।
2: किराए पे भी लिया सर और लोगों को काम भी दिया। मैं खुद अकेले 4 बहन करती थी, लेकिन धीरे धीरे लास्ट 2014 में 2024 में वो लोग सारे अपने अपने सर्कल पे वो लोग चली गई, क्योंकि सारा लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया। वो लोग जिस जिस पे काम करती थी वो लोग फिर रिटर्न अपना अपना व्यवसाय शुरू कर ली, तो अकेले खुद हम करते थे, प्लस और एक मेरा सहयोग में एक स्टूडेंट थी वो कॉलेज जाती है, लेकिन कभी भी उनको बुलाते हैं वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती है। तो हमने 2 मेंबर से स्टार्ट किया, फिर काम अच्छा, ऑर्डर भी बढ़ने लगा, तो फिर एक बात रखे महिला लोग से कि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, एमएसएमई के साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ऑर्डर मिलता है, तो आप लोग सीखना चाहते हैं। किन्हीं से भी मैंने कॉस्टिंग का बात नहीं किया, उनको बोला फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे सीख सकते हैं, तो सब जब भी टाइम मिले आप लोग मेरे यहाँ आइए, बिल्कुल सुबह मॉर्निंग 11 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है ऑफिस, आप लोग कभी भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते, प्लस काम करने का आपको चार्ज भी दिया जाएगा।
1: तो आज कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं?
2: मेरे अंडर में 20 महिला है जो कि रेगुलर है, और बाकी सब है स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट जो अपना पार्ट टाइम सब टाइम निकाल के काम करती है।
1: 20 महिलाएं आज आपके अंदर में काम कर रही हैं?
2: बिल्कुल।
1: वाह, तो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को बताएं कि हम सपना से बात कर रहे हैं और देखिए कैसे जब आप कुछ सोचते हैं और सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सरकार का सपोर्ट मिलता है तो आप कैसे अपने लक्ष्य को पाते हैं। आज सपना ने शुरुआत की और आज 20 महिलाएं सपना के साथ जुड़ी है। सपना, क्या आप लोगों से कहेंगी, क्योंकि झारखंड में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपने नए उद्योग की शुरुआत कर रहे हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, एमएसएमई का सहयोग ले रहे हैं, क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगी, क्या कहना चाहती हैं?
2: मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, सरकारी योजनाओं सबके बारे में जानिए, कहाँ से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, कैसे आप एमएसएमई से जुड़ेंगे, कहाँ आपको सरकार इतना मदद कर रही है, तो आप लोग भी बाहर निकलिए ताकि रोजगार तो ऐसे है ही, लेकिन आप खुद का एक बिल्डअप तैयार करने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना होगा जो कि एमएसएमई आपको फ्री में सिखाती है, प्लस उसका स्कॉलरशिप भी देती है, लंच भी खिलाती है जो कि आपको खाली पेट रहने बिना खाली पेट आपको रहना नहीं पड़े, इसलिए
1: यानी आपको एक मेंटल सपोर्ट देती है कि आपको कहीं भी रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है।
2: हाँ, आपको थकना नहीं है, एनी टाइम आपके सपोर्ट में रहेगा, प्लस आपको सारा सामान भी प्रोवाइड करवाती है, आप जिस चीज का भी ट्रेनिंग लीजिएगा उसका आपको पूरी तरह, जब तक आपका सेटअप तैयार नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ भी रहेगी, सेटअप होने के बाद भी आपके सपोर्ट में रहेगी, आप बिना झिझक के आप एमएसएमई ऑफिस जा सकते हैं।
1: क्या बात है, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिडको उद्योग विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल की भी शुरुआत हो रही है। ये जो उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं, जो एमएसएमई से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पे सारी जानकारियां एक जगह पे होंगी। आप जब उस पोर्टल पे जाके आप विजिट करेंगे तो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड होगी, आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उससे आप जुड़ सकते हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको झारखंड एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से कुछ ही दिनों में अब आपको ये इसकी जानकारी एक ही जगह पे मिलेगी। तो सरकार की, झारखंड सरकार की अपनी कोशिश है कि कैसे झारखंड में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे एक नए झारखंड का निर्माण किया जाए। सो सपना, क्या आगे सोच रही हैं, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं आप?
2: आगे तो सर जो मेरा पेंटिंग है वो तो कभी मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा पैशन है और मेरा, मेरे से जुड़ी हर महिला का रोजगार है, तो वो तो मैं बंद नहीं करूंगी, लेकिन आगे का जितना भी सरकार से सहयोग होगा वो जरूर लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे, यही मेरा सोच।
1: सपना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की और आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बढ़े। मैं एक आखिरी सवाल इसमें ऐड कर देता हूं, करना चाहता हूं कि आज कितना एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप भी एक महिला है, आप घर भी संभाल रही है, आप बाहर भी देख रही है, महिलाओं से क्या कहना चाहती है, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती है?
2: देखिए घर तो सर हम लोग का घर तो हम लोग, आप शादी करिए या नहीं करिए घर तो आप ही को संभालना है, लेकिन अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी करने का है और करते भी है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो जरूर आप हिम्मत दिखा के आप आगे बढ़ने का कोशिश करिए, और जहाँ तक है सारे सपोर्ट के लिए आप बस एक कदम बाहर निकालिए तो पूरी दुनिया आपके साथ में है, ये मैंने लास्ट टाइम सीखा है।
1: क्या बात है,
2: मैं कभी रांची घूमी नहीं हूँ जबकि रांची की ही पैदाइश हूँ, रांची भी नहीं घूमी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद गई थी, बहुत लड़ झगड़ के गई थी।
1: क्यों गई थी आप हैदराबाद?
2: हैदराबाद सर कंपटीशन था, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन था जो कि हम रांची से झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे जितनी भी सारी महिला वेंडर आई हुई थी, तो इस चीज को देख के और भी मन में उत्साह आया।

0: कि मतलब कोई भी महिला, आपका छोटी 15 साल से लेके आपका 85 ईयर्स की महिला लोग वहां पे आई हुई थी कॉम्पिटिटर बन के। तो ये चीज बहुत ही हिम्मत लगा कि मतलब कभी भी काम किसी के लिए रुकता नहीं है, बस हम लोग कदम एक कदम बाहर निकालने की जरूरत है।
1: तो यानी आज सपना बाहर भी निकली और आज बाहर के दुनिया में कदम से कदम भी मिला रही हैं। चलिए सपना, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और जिस तरह से आप खुद भी बढ़ी और आज आपके साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, वो भी आगे बढ़ रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान है। जिस तरीके से सपना से हमने बात की, देखिए जरूरी क्या होता है कि जब हम सरकार के योजनाओं की बात करते हैं तो हम और आप कितने जागरूक हैं। आप जागरूक रहेंगे, योजना का लाभ आपको मिलेगा। और आज जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, टेक्निक का जमाना आ रहा है, ऐसे में आपको भी खुद को तैयार करना है। आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप मेहनत के लिए तैयार होने चाहिए और बस एक शुरुआत कीजिए, सरकार का आपको साथ मिलेगा। आज एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से एक नई झारखंड का निर्माण हो रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं, आज बहुत सारे बेकरी सेंटर्स, बहुत सारे टेक्सटाइल पे काम हो रहा है और रोजगार सृजन भी हो रहा है। अभी हमारे साथ एक महिला है, नीतू सिंह नाम इनका है, बेकरी का काम करती है और इन्होंने भी एमएसएमई के माध्यम से लोन लिया और अपने बेकरी को एक नया आयाम पहुंचाया। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक सपना है तो आप सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका।
3: नमस्कार, मेरा नाम नीतू है और मैंने एमएसएमई के माध्यम से अपना बेकरी का शॉप खोला और काफी अच्छा काम चल रहा है।
2: नीतू जी, शुरुआत इसके साथ करेंगे कि कितना एक जरूरी है आप लोगों को जागरूक होना आज की तारीख में।
3: सरकारी विभाग अपने आप में संपूर्ण है, वो सभी को मदद करने के लिए बहुत सारे व्यवसाय से संबंधित या बहुत सारी योजनाओं को लागू किए हुए हैं, लेकिन बिना जागरूकता के आप ये सब सुविधाएं को हासिल नहीं कर सकते। तो जागरूकता सबसे पहला पूंजी है आपके आगे बढ़ने के लिए। तो जागरूक होकर ही आप किसी भी व्यवसाय से जुड़ने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है।
2: आपकी अगर हम बात करें, आपने भी एमएसएमई से सहयोग लिया, आपने लोन लिया, कितना एक मददगार हुआ, क्या चीजें थी जो पहले रुक जा रही थी और जब आपने लोन लिया तो वो क्या क्या सुविधाएं आपको मिल गई, किस तरीके से फिर आप आगे बढ़ी।
3: देखिए शुरुआत में तो मेरा मन था कि किस तरह से मैं बेकरी उद्योग में जाऊं, तो शुरुआती दौर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए ओवन, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, बेकिंग टूल्स आदि की व्यवस्था मैं कैसे करूं, क्योंकि इन सब में काफी पैसा लगने वाला था। तो एमएसएमई आपको 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख तक का लोन देती है, तो मैंने 10 लाख तक का लोन लिया जिसमें मुझे स्किल ट्रेनिंग भी मिला, बिजनेस लोन भी मिल गया और उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करने के लिए किस तरीके से होता है तो वो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है पूरे तरीके से। और मार्केटिंग इसकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दुकान भी खोल के बैठ सकते हैं, बहुत सारे फेयर और मेला वगैरह भी लगते हैं, सरकार की तरफ से लगते हैं, प्राइवेट भी लगते हैं, उन सब में भी हम लोग इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेकरी उद्योग अगर आप प्रॉपर तरीके से शुरुआत करते हैं, एक प्लानिंग के तहत शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो सकते हैं।
2: यानी आज हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं, क्योंकि हमने कार्यक्रम में बताया कि हम एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से बढ़ सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट हो।
3: हाँ,
2: एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, पेपर वर्क आपको करना पड़ता है।
3: किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बताना कि आप कहाँ पे शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, आपके पास कौन कौन लोग होंगे, आपके पास कैसे स्किल वाले लोग होंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका सामान कहाँ से लाएंगे, ये इन सब सारे चीजों का आपको पहले एक खाका तैयार करना है, एक पूरा बिल्डिंग तैयार करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
2: सो ये कनेक्ट करना पड़ता है कि आप पहले प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फिर बैंक से आपका टाई अप होता है, और अगर आपने एक सही प्रोजेक्ट दिया है और जिसका फ्यूचर है तो इसके बाद एमएसएमई के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड भी होता है, आपको सहयोग भी मिलता है। सो आपको ट्रेनिंग भी मिला, जब बेकरी की बात हुई तो आपको ट्रेनिंग स्किल्स भी दिया गया, ट्रेनिंग में क्या क्या आपको बताया गया।
3: ट्रेनिंग मिला, उसमें यही बताया गया कि केक कैसे बनाया जाता है, केक में क्या टूल्स की व्यवस्था होती है, कैसे

0: को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है और बेकिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें, केक में पड़ने वाले सामान क्या क्या चीज होते हैं, उसका मटेरियल और कितना मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि केक बनाने में सबसे चीज जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो होता है केक का मात्रा, उसमें पड़ने वाले सामानों की मात्रा। अगर वो चीज अगर आपका सही नहीं रहेगा तो इस बेकरी उद्योग में आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं।
1: यानी एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप किसी व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं और सरकार आपको एक तो मॉनेटरी टर्म्स में भी हेल्प कर रही है, दूसरा जैसे सपना ने बताया कि उसको टूल्स के माध्यम से हेल्प किया गया कि वो तो पेंटिंग करती थी लेकिन फ्रेमिंग बाहर से करवाती थी, फ्रेमिंग के बारे में उसको ट्रेनिंग भी मिली यानी स्किल भी किया गया, फिर सारे टूल्स भी दिए गए, वैसे ही नीतू जी को भी ट्रेनिंग भी दी गई और लोन भी दिया गया, यानी हर कुछ है आपके लिए। बट ये है कि आप इसके प्रति जागरूक है या नहीं, आप इसके प्रति सचेत है या नहीं, कितना एक बदलाव आ जाता है जिंदगी में जब आप एक उद्योग की शुरुआत करते हैं।
0: देखिए, आत्मविश्वास आ जाता है कि आप कोई काम कर सकते हैं। बेकरी उद्योग को करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है क्योंकि जब तक आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते नहीं है, आपका खुद का एक टेस्ट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचने का माध्यम भी होना चाहिए क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है तो हमको डिजिटल के जरिए से भी लोगों तक पहुंच बनानी होती है। तो अगर आप इन सब चीजों में सक्सेस हैं तो डेफिनेटली आप अपने किसी भी उद्योग में, बेकरी ही नहीं किसी भी उद्योग में आप सक्सेस हो जाएंगे, वो आपका ये 100% है कि आप सक्सेस हो जाएंगे।
1: एक चीज आप देख रहे हैं क्योंकि हम लोग हमेशा एक नए झारखंड की बात करते हैं कि आज अब झारखंड का एक नया दौर चल रहा है, ये जो उद्योग आ रहे हैं या फिर जो हम स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं या फिर हम एमएसएमई के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये आज रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। जो खुद तो शुरुआत कर रहा है और वो कम से कम अपने साथ कोई 20 लोग, कोई 50 लोग, कोई 100 लोगों को भी रोजगार दे रहा है।
0: एमएसएमई सरकार के द्वारा शुरू किया गया वह योजना है जिसमें छोटे छोटे स्तर पर कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर सारी सुविधाएं देकर के स्टेबल किया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से, देखिए एमएसएमई क्या है, एमएसएमई वो है जहां पर हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकता, तो सरकार का कहना है कि जब हर लोगों को नौकरी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है तो छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करके आप अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। ये एम्पावरमेंट की बात है और एमएसएमई एम्पावरमेंट करता है लोगों को, एम्पावर्ड करता है लोगों को, तो ये एमएसएमई में बहुत अच्छी बात है कि लोग छोटे छोटे व्यवसाय को बड़ा बड़ा आकार दे रहे हैं।
1: यानी एक तो सबसे पहली बात कि आपको स्किल्ड करता है। आज की तारीख में ये जरूरी नहीं कि आप एक पक्की नौकरी ही कर रहे हैं, आज की तारीख में आप अगर स्वावलंबी हैं, आप खुद को स्वावलंबी बनाए, आपके पास बहुत सारा जरिया है। सरकार आपको स्किल्ड कर रही है, आपको ट्रेनिंग्स दे रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आप उस आइडिया के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सभी को?
0: जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो लोग आत्मविश्वास के साथ एमएसएमई से जुड़ सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: आज ये कह सकते हैं कि पहले और अब में बहुत एक बदलाव आपकी जिंदगी में भी आ गया?
0: हाँ, बहुत बदलाव आ गया। पहले मैं पूंजी के अभाव से जूझ रही थी, थोड़े स्किल की भी कमी थी, थोड़े मार्केटिंग की भी कमी थी और ये सब इंटीग्रेटेडली मुझे एमएसएमई के माध्यम से प्राप्त हुआ और मैं अब अपने बिजनेस को पहले से अपेक्षा अब ज्यादा मजबूत स्थिति में पा रही हूँ।
1: क्या आप एक लक्ष्य रखती हैं जब आपने एक नई चीज की शुरुआत की? अब आपने क्या देखा है, भविष्य में कहाँ तक आपको जाना है, क्या सोच रही हैं आप?
0: इस उद्योग को शुरू करने से पहले मैं एक दो लोगों के साथ ही अपना ये काम को आगे बढ़ाई थी, लेकिन अब चूंकि ये मेरा काम बहुत बढ़ गया है तो मैं और लोगों को भी रोजगार दे पाई हूँ। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों को मैंने रोजगार दिया है, उससे उनका घर परिवार सभी आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। तो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ ताकि और महिलाएं और परिवार मुझसे जुड़ सके, ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके, वो भी समाज में एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि नौकरी नहीं है उद्योग, मतलब ये नौकरी चाहे उद्योग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो मेरा यही है कि मैं और लोगों को भी इसमें जोड़ूंगी और अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करूंगी ताकि और लोग जुड़े और मेरा भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद कमलेश जी, मेरा भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में स्थान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमने एमएसएमई की बात की, हमने उन सपनों की बात की जो कभी अधूरे रह जाते थे क्योंकि कभी मॉनेटरी टर्म्स प्रॉब्लम होता था, कभी आइडिया नहीं होता था, कभी सपोर्ट नहीं होता था, कभी स्किल नहीं होता था। आज सब कुछ है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो है हमारी झारखंड सरकार, सरकार के सारा। और दूसरी बात कि केंद्र के साथ मिलकर झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाओं को चला रही है। जब एमएसएमई की बात करते हैं तो केंद्र के सहयोग से झारखंड में उसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है रैंप प्रोग्राम के माध्यम से, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में एक पोर्टल की शुरुआत हुई है। उस पोर्टल में आप जाकर, मैंने पहले भी बताया कि आपको एक ही जगह पर एमएसएमई से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। सिर्फ जानकारियां ही नहीं बल्कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग मिलेगा, आपको किसी भी योजना की जानकारी चाहिए वो भी मिलेगा, आपको एलएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यानी एक जगह पे तमाम वो चीज जो आपके लिए है। बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ एक नई सोच, नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ लेंगे, खुद भी लाभ लेंगे और जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें भी जानकारी देंगे, उन्हें भी जागरूक बनाएंगे। आपके एक प्रयास से आपकी जिंदगी बदल सकती है। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको शेष बचे कार्यक्रमों की कुछ जानकारी दे दें।

अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 का समय होगा युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज आप चर्चा सुनेंगे युवाओं में कौशल विकास, समय प्रबंधन, कुछ इतिहास के बारे में, कुछ रोचक तथ्य और साथ ही कुछ फिल्मी गीत संगीत आप सुनेंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव पांडे। 5:30 का समय होगा हमारे औद्योगिक प्रसारण का श्रमिक लोक, जिसमें आज चर्चा होगी आज की बचत कल की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए जरूरी है वित्तीय प्रबंधन, अल्प बचत योजनाएं। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

6:02 पर आप सुनेंगे खेती बारी, जिसमें आज चर्चा होगी मिट्टी जांच की उपयोगिता के विषय में। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:32 का समय होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। आप एक हिंदी वार्ता भी सुनेंगे, राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली और आंतरिक शांति। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। शाम के 7 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:15 का समय होगा आदिवासी अखड़ा का, जिसमें आज आप सुनेंगे आदिवासी अखड़ा को आज आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में। आज चर्चा होगी जल संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन के बारे में। साथ ही चर्चा आप सुनेंगे वन है तो जीवन है, वनों का संरक्षण है जरूरी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8 बजे का समय होगा फिल्मी गीत संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। सुर्खियों में इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:30 पर। 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे समाचार।

रात के 10 बजे आप सुनेंगे नाटक और 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें हमारे आज के कलाकार होंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। इनसे आप बांसुरी पर राग धानी में आलाप और जोर सुन पाएंगे। रात्रि 11 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न हो जाएगी।

श्रोताओं, ये थी शेष बचे कार्यक्रमों की कुछ मुख्य मुख्य जानकारी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम सांझ सरगम बस कुछ ही देर में।

कार्यक्रम साज सरगम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रजनी। साज सरगम के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म सुर से ये पहला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुर से ही मालक्ष्मी अय्यर की आवाज में ये प्यारी सी पेशकश। शाम का समय दिन भर की भाग दौड़ के बाद शांति सुकून और विचारों का पल होता है। ये वो पल होता है जो हम अपनों के साथ अपने परिवार के साथ बिताते हैं और कोशिश करते हैं कि दिन भर की हमारी थकान जो है वो दूर हो जाए। अपनों का साथ, बच्चों की खिलखिलाहट, साथ में हो अगर चाय पकौड़ों का साथ तो मज़ा तो दुगना ही हो जाता है। शाम का समय सच में हमें बहुत ही पसंद आता है। आसमान में लाल और नारंगी रंग का यह मिश्रण कुदरत की सबसे खूबसूरत कलाकारी में से एक माना जाता है। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सांझ सरगम कार्यक्रम का ये अगला गाना। और ये अगला गाना हमने लिया है मुकेश की आवाज में, धुन तैयार की है योगेश ने और संगीत है सलील चौधरी का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: राख के ढेर में चलते हुए शोनू को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
2: दिल जले, दिल जले।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल जले से उदित नारायण और पूर्णिमा श्रेष्ठा की आवाजों में ये प्यारा सा गाना। संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने और धुन थी जावेद अख्तर की। श्रोताओं, साँच सरगम आप सुन रहे हैं कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपकी शाम भी बहुत ही अच्छे से बीत रही होगी, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ। सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं हम उन परेशानियों से लड़ने का हमें जज्बा भी रहता है जब हमारे पास अपनों का साथ रहता है। तो उम्मीद मत हारिए, अपनों के साथ रहिए, हमारे कार्यक्रम का लुत्फ लेते रहिए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबकी ज़िंदगी में खुशियों का पल ज़रूर आएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम, और इसी गाने के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलको के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित चीरी पंचायत में कल देर शाम हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया और वहां रखा अनाज भी खा गए। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पंचायत भवन के पीछे एक घर में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एम के 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 5:02 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ तनिष्का।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, आज का विषय हर युवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने भविष्य, पढ़ाई, नौकरी और करियर को लेकर सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच एक चीज़ ऐसी है जो हर क्षेत्र में आपकी पहचान बना सकती है?
0: जी हाँ दोस्तों, और वो है कौशल, यानी कि स्किल। इसलिए आज हम बात करेंगे युवाओं में कौशल विकास की।
1: अंकिता, आज के समय में सिर्फ डिग्री होना ही काफ़ी नहीं माना जाता। कंपनियां और संस्थान ऐसे लोगों को भी तलाशते हैं जो समस्याओं का समाधान कर सके, नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सके और टीम के साथ मिलकर काम कर सके।
0: हाँ तनिष्का, और यही तो कौशल विकास का मतलब है, यानी अपनी रुचि, क्षमता और ज्ञान को लगातार बेहतर बनाना। ये सिर्फ तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं है। अच्छी बातचीत करना, समय का सही उपयोग करना, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना, नई तकनीक सीखना, नेतृत्व करना, ये सभी महत्वपूर्ण कौशल है।
1: कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों की शैक्षणिक योग्यता लगभग एक जैसी होती है, लेकिन अवसर उसी को मिलता है जिसके पास बेहतर कौशल होता है। इसलिए सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए।
0: और तनिष्का, सीखने के लिए हमेशा बड़े संस्थान ही जरूरी नहीं होते। आज इंटरनेट पर ऐसे कई मुफ्त और कम शुल्क वाले कोर्स उपलब्ध हैं, जहाँ से नई नई चीजें सीखी जा सकती है।
1: चाहे कंप्यूटर हो, भाषा सीखनी हो, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, लेखन, सार्वजनिक भाषण या फिर डिजिटल कौशल, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध है।
0: सही कहा, और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी रुचि को पहचानना चाहिए, क्योंकि जिस काम को करने में आनंद आता है उसमें आगे बढ़ना भी आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल अंकिता, अगर किसी को चित्र बनाना पसंद हो तो वह ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट हो तो एंकरिंग, रेडियो, पॉडकास्ट या कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ सकते हैं।
0: असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है। अगर पहली बार में कोई काम वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम के लिए बने ही नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अभी और अभ्यास की ज़रूरत है।
1: मुझे एक बात हमेशा प्रेरित करती है, जब भी हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो सिर्फ हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़ता बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। धीरे धीरे हम नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
0: और यही आत्मविश्वास आगे चलकर इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमारी मदद करता है।
1: दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे वह एक नया शब्द हो, कोई नया कंप्यूटर स्किल हो, कोई नई भाषा, कोई कला या फिर अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की आदत। छोटी छोटी सीख ही भविष्य को बड़ी उपलब्धियां बनाती हैं।
0: और तनिष्का, अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि सच ये है कि समय सभी को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसका सही उपयोग करता है और कोई उसे यूं ही गवा देता है।
1: समय सबसे कीमती संसाधन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वह अपने जीवन में अधिक सफल होता है।
0: लेकिन आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया और लेजीनेस के कारण बहुत से लोग अपना कीमती समय व्यर्थ गवा देते हैं।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय का सही उपयोग करना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कई बार हम मोबाइल, सोशल मीडिया के बावजूद बातों में इतना समय बिता देते हैं कि ज़रूरी काम अधूरे रह जाते हैं।
0: समय प्रबंधन केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और समय का सही उपयोग हमें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाता है, और अगर यह आदत बचपन से ही विकसित की जाए तो आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलता है।
1: और कई बार लोग एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। इसलिए एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इससे काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और समय की भी बचत होती है। खासकर विद्यार्थियों के लिए समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई, खेल, आराम और परिवार, इन सभी के लिए संतुलित समय निकालना चाहिए।
0: और तनिष्का, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही समझदारी है।
1: दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, आइए सुनते हैं एक गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमारा दिमाग नई चीज़ें सीखते समय नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, यानी हर बार जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, आपका दिमाग खुद को और मजबूत बना रहा होता है।
2: और दोस्तों, सिर्फ 20 मिनट की वॉक हमारे मूड को बेहतर बना सकती है और तनाव कम करने में मदद करती है, इसलिए कभी कभी छोटी सी सैर भी बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: हमारी मेमोरी तब बेहतर होती है जब हम किसी जानकारी को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसे किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं।
2: पानी की कमी केवल शरीर ही नहीं बल्कि एकाग्रता और सोचने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।
1: दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट इतिहास में आज का दिन। आइए जानते हैं कि 8 जुलाई के दिन इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है।
2: सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1497 की। आज ही के दिन पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को द गामा भारत के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर लिस्बॉन से रवाना हुए थे। उनकी इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार का नया रास्ता खोला।
1: वहीं 1776 में आज ही के दिन अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का पहली बार सार्वजनिक रूप से वाचन किया गया था। यह विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
2: और साथ ही व्यापार और पत्रकारिता की दुनिया में भी 8 जुलाई का अपना महत्व है। 1889 में आज ही के दिन प्रसिद्ध अमेरिकी आर्थिक समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए हम लेते एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता।
1: आईसीएमआर माइंस ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2026 में गोल्ड जीता।
0: ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने न्यू दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरुआती करियर वाले 15 रिसर्चर्स को ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियनशिप फेलो के बैच के तौर पर शामिल किया।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग में हिस्सा ले रहा है।
0: और साथ ही NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है। यह एक खास प्लेटफॉर्म है जो मुश्किल में फंसी महिलाओं को तुरंत मदद, शिकायत दर्ज करने की सुविधा और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए हम लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन का हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। जो व्यक्ति सीखने की इच्छा बनाए रखता है, वह हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाता रहता है। इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
1: और तनिष्का, आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक, नए विचार और नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में अगर हम नई चीजें सीखना बंद कर देंगे तो समय के साथ पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए।
0: अक्सर लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित होता है, लेकिन वास्तव में सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। हर नया अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है।
1: सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है, हम अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: तो दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी, पर समय हो गया है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त अनिष्का
1: और अपनी दोस्त अंकिता
0: को इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी, और इसे आज लेकर हमारे बीच थी तनिष्का और अंकिता। प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। वक्त है हमारे औद्योगिक प्रसारण का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम श्रमिक लोक में, जिसे लेकर हाजिर है हम, मैं आरती और मेरे साथ है आशीष। तो आशीष आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, मेरा भी अभिनंदन स्वीकार करें श्रमिक साथियों। आरती, मौसम तो बारिश का है और जाहिर सी बात है कि इस मौसम में हमें अपना विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है।
0: भाई ये तो बात तुमने बहुत पते की, इधर उधर की बातें ना करके बिल्कुल एकदम मुद्दे की बात पे चले आए हो। भाई क्या बात है, बहुत सीरियस दिख रहे हो। और ये तुमने सही कहा आशीष, क्योंकि प्रयास साथियों प्रयास करें कि इस मौसम में अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। बाहर के तली हुई और खुले में रखे आहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें डायरिया होने का खतरा ज्यादा होता है। और आशीष हमने देखा है ना कि बहुत बार होता है कि जो फुटपाथ ठेले पे वो जो लगाते हैं खाने का आटा, वो मक्खियां भी नकरी होती हैं और तरह तरह के उसमें कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। और हमारे जब श्रमिक साथी काम से लौटते हैं, उन्हें भूख लगी होती तो वो लेकर खा लेते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक है विशेषकर इस मौसम में। तो साथियों आप अपने साथ लंच बॉक्स लेकर जाएं और ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि खाना बिल्कुल घर का ही अच्छा भोजन, साफ सुथरा भोजन हो, है ना।
1: और साथियों इस मौसम में हमें चाहिए कि थोड़ा, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो हमें गर्म खाने का ही सेवन करना चाहिए और बासी खाने से हमें बचना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बताएं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं का जो संक्रमण होता है इस मौसम में काफी बढ़ जाता है, तो आपको जल्दी बीमार कर देता है, आपको आंख की समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, पेट खराब हो सकता है। तो ये बिना वजह सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसा हो गया। तो आप बरसात में उबाल कर पानी पिए, गर्म खाना खाएं, इन सबों का ध्यान रखना चाहिए।
0: और देखो अक्सर देखा भी जाता है कि जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो इस मौसम में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और सारे जो जितनी बीमारियां ना इसी मौसम में ज्यादा सक्रिय हो जाती है।
1: बिल्कुल सही बोला आपने। और ये बारिश का मौसम है आरती, और हो सकता है संभवतः अगर हमारे श्रमिक काम से लौट रहे हों और वो भीग सकते हैं, तो इस दौरान सावधानी क्या करनी चाहिए कि आप भीगे कपड़े तुरंत उतार दें, ठीक है, और अपने शरीर को सूखे कपड़े से पोंछ लें। हो सके तो गर्म चाय या गर्म पानी, गर्म दूध, किसी भी चीज का आप सेवन गर्म गर्म कर लें, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए काफी
0: बिल्कुल
1: अच्छा होगा।
0: और कोशिश करें कि सूती कपड़े ही पहने और साफ सुथरे कपड़े पहने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी घर से निकले ना तो छाता, रेनकोट ये लेना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि भाई बारिश के मौसम में घर में अभी तो निकलते वक्त लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, और जब बारिश में हम भींगते हैं ना तो वो भी बहुत सारी परेशानियों का कारण बन जाता है। तो और बच्चों को ये भी ध्यान देना होगा कि जब बच्चे बाहर खेलने जाएं तो घर आए तो उनके कपड़े बदल लें, उनके हाथ पैर अच्छे से धुलवा लें। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा आरती, ये बारिश के समय में काफी बार देखा गया है कि गाड़ियां स्किड करती हैं, स्लिपरी आपको सरफेस होते हैं, फिसलन होता है। इस दौरान इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोपेड चला रहे हैं, लूना चला रहे हैं, तो अत्यधिक गति तो कभी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस मौसम में तो आपको ये बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि हमारी गाड़ी, हमारे पांव फिसले ना।
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट बात तुमने बताया है, तो हमारे श्रमिक साथी इसका जरूर ध्यान रखेंगे आशीष। और अब ये बताओ कि हमारे जो श्रमिक साथी इतनी मेहनत कर पैसा कमाते हैं, है ना, लेकिन बहुत बार यह देखा जाता है कि वे अपने पैसों का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाते और पैसे बिना खर्च किए बेवजह खर्च भी हो जाते हैं, जिससे आड़े वक्त पर जब पैसे की जरूरत होती है तो उस वक्त पैसे नहीं रहते, तमाम तरह की परेशानियां आने लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए अगर बात कहा जाए कि वित्तीय प्रबंधन, तो ये सीधा सा इसका असर होगा कि आप अपने आय और खर्च का संतुलन कैसे करते हैं। आप एक बचत योजना बनाना चाहिए आपको, ठीक है, आप अपने आय और खर्च का ब्यौरा आपको लिखना चाहिए, और ये संकट के समय में आपका बड़ा ही काम कर देता है। और समझदारी भी इसी में है आरती, कि आप अपनी आय का एक हिस्सा, कम से कम छोटा हिस्सा, ऐसा तो 10% लोग बोलते हैं कि 10% बचा लें, तो ये आपके आड़े वक्त में, आपके गंभीर समय में, या आपके जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसमें आपका काफी काम ये करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम अपने अंदर बचत की आदत नहीं डालेंगे तो हमें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा, जैसा तुमने कहा। और इसलिए समझदारी इसी में है कि आप जितना भी कमाते हैं उसमें से जो मूल खर्च है ना, उसके बाद जो पैसे बचते हैं किसी पॉलिसी में डालकर जमा करें। और जाहिर सी बात है कि इससे कि आपका पैसा भी, क्योंकि आपके ऊपर ये मैंडेटरी होगा कि ये पैसा आपको निकाल के उस पॉलिसी में डालना है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को वित्तीय रूप से, यानी कि आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं।
1: हाँ, ये आपने सही कहा कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाजार जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि सेल देखकर बेवजह बहुत सी चीजों को खरीद लेते हैं जो हमारे अलमारी में ही रखा रह जाता है और हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी सावधानियां बरत कर भी हम कुछ पैसे बचा सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में जो वो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे तो सामने चीजें रहती हैं और वो हमें बहुत लालच आता है और हम निकाल निकाल के उसे अपने उसमें इसमें ट्रॉली में डालते चले जाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो लगता है कि इसकी तो जरूरत थी नहीं। ये मैं ना अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता हुआ, क्या तुम्हारे साथ भी होता है?
1: बिल्कुल, मैंने कई बार, जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी के समय में हर दुकान पर आपको सेल्स दिख जाएगी और ऐसा होता क्या है कि 50%, 40%, अब आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लगा कि ये तो अभी मिल जा रहा है फिर नहीं मिलेगा, पर क्या आपने, मैंने अपने आप को रोका? मैंने अपने आप को नहीं रोका और मैं जाकर उसको खरीद लिया। तो ये आदत मुझे डालना चाहिए या सभी लोगों को डालनी चाहिए कि हाँ, क्या इसकी जरूरत है कि नहीं।
0: यस, एकदम सही कहा तुमने। तो भाई सावधानी से हमें चलना है और अगर प्रबंधन अपना करें, वित्तीय प्रबंधन करके चलेंगे तो हम आर्थिक रूप से भी समझदारी के साथ अपने आप को सबल बना सकते हैं। और आशीष, बातें बहुत सारी करनी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान मनोरंजन का भी रखना होगा।

गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनाया और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रमिक साथी काम करके घर लौटे होंगे ना तो उनकी भी थकान दूर हो गई होगी। अब आशीष हम ये तुम्हें लगता है ना कि बहुत बार होता है कि हम जब अगर कुटीर उद्योग लगाते हैं तो कार्य में क्या होता है कि हम खुद तो स्वावलंबी बनते हैं, लोगों को भी इसमें इस व्यवसाय से जोड़ के हम उन्हें रोजगार दे सकते हैं। तो और उद्योग भी बहुत, कुटीर उद्योग की बात अगर

0: कहें तो बहुत सारे उद्योग हैं जिससे कि हम का आसानी से लगा सकते हैं, और इसके लिए ना सरकार की तरफ से भी बैंक भी 0% लोन पे ये देती है, सब्सिडी के साथ हमें लोन देती है, पैसा
1: बिल्कुल
0: देती है। और इसके अलावा ये भी है कि आप अपने ही जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में भी रह के आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको अपने घर को छोड़ने की जरूरत
1: अब
0: बिल्कुल
1: तो
0: भी नहीं है।
1: ये जैसे स्वयं सहायता समूह, उसमें प्रशिक्षण मिल रहा है, आप कौन कौन से कार्य जो हैं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप देखिएगा कि झारखंड में बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, जैसे आप डोकरा आर्ट देखते हैं, या आप देखेंगे बांस से बना
0: सोहराय
1: हुआ
0: पेंटिंग हो गई।
1: सोहराय पेंटिंग हो गई, उन सबको वो उस चित्रण को उतारना उस कला में, ये बड़ा ही अच्छा है और इसमें इनके दाम भी अच्छे मिलते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और अभी तो जैसे मशरूम उत्पादन करके मशरूम के अचार बन रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, मड़ुआ हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत ज्यादा बहुत आयात मिलता है, और ये पता है बाहर विदेशों में ना इसकी मांग बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा
0: क्योंकि ये
1: है।
0: रिच है, आयरन इसमें बहुत ज्यादा है, और ये मोटे अनाज में भी अगर देखा जाए तो इसमें मोटे अनाज में भी ये शामिल है।
1: बिल्कुल, मैं तो आपसे
0: हाँ
1: उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साड़ियाँ की बात करेंगी कि हाँ कुटीर उद्योग में ये जो है
0: हाँ
1: हमारा तसर सिल्क जो है
0: साड़ी बिल्कुल
1: काफी,
0: बिल्कुल, और
1: और
0: मेरा
1: अभी
0: बहुत ही
1: GI टैग
0: पसंदीदा
1: जो
0: है,
1: है मिला है हमारे।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो आशीष, हम वार्ता सुनते हैं, लघु कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भरता, और वार्ताकार है हमारी माधुरी कुमारी।
2: लुहार की ठक ठक पर मत जाओ, वहां वीणा के तार तैयार हो रहे हैं, जिससे एक दिन तालबद्ध मधुर स्वर लहरियां गूंजेंगी। श्रमिक के उद्यम की महत्ता को हम कैसे नकार सकते हैं, भले ही उसकी कार्य प्रक्रिया अस्त व्यस्त जान पड़ती हो। उद्योग शब्द की उत्पत्ति उद्यम से हुई है, उद्यम का संबंध श्रम से है, अर्थात श्रम करने वाला श्रमिक। श्रमिक के बिना उद्यम नहीं हो सकता, और उद्यम के बिना उद्योग भी नहीं होंगे। कहा भी गया है, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न सिद्ध्यन्ति मनोरथे, अर्थात इच्छा मात्र से कार्य संपन्न नहीं हो सकते, उद्यम करना होता है। उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है, और देश के आर्थिक विकास की धुरी भी। कुटीर उद्योगों को हम मातृ उद्योगों की श्रेणी में रख सकते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रामीण गृह उद्योग और कुटीर उद्योग, अथवा शहरी गृह उद्योग और कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों की परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि ये स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार जैसे स्वतंत्र निकायों द्वारा सुचारू रूप से चलायमान थे। इसमें पूंजी की लागत बहुत ही कम होती है, और मशीनों की आवश्यकता कम होने के कारण ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होती है, अर्थात पूर्णतः हस्तकला और श्रम आधारित। दूसरी विशेषता है कि इससे होने वाले मुनाफे पर पूरी तरह से श्रमिक तथा उसके परिवार वालों का हक होता है। यह आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण और अंशकालिक तथा पूर्णकालिक उद्योगों के रूप में स्थापित होते हैं। निश्चित तौर पर यह आत्मनिर्भरता का स्तंभ है, और अत्यंत विकसित दक्षता के साथ आज भी हमारे बीच स्थापित है। इनसे देश की उभरती अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। समय के साथ परिस्थितियों के बदलने से इनमें तकनीकी बदलाव जो आने चाहिए थे या अपेक्षित थे, वो अब तक नहीं आ पाए हैं, यह विडंबना है। आज भी पारंपरिक तरीके से ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इससे इनके विपणन के लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहे, साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति भी कई बार आड़े आती है। इस कारण उन्हें बिचौलियों के माध्यम से उच्च दाम चुकाकर खरीद करनी पड़ती है। इसके बावजूद केवल कुटीर उद्योगों का कुल निर्यात का लगभग 29% योगदान है। इस श्रेणी में आने वाले उत्पादों में रस्सी, टोकरियां बनाना, चटाई, दोने, पत्तल, मोमबत्ती, हस्तशिल्प, हाथी दांत पर कलाकारी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे अचार, जैम और जेली बनाना आदि शामिल हैं। इनके अलावे मौसमी जरूरतों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले सामान जैसे पटाखे, रंग, मूर्तियां, झंडे, झाड़ू आदि भी शामिल हैं। शहरी कुटीर उद्योगों की श्रेणी में कलात्मक वस्तुएं आती हैं, जैसे हस्तशिल्प, कशीदाकारी, खादी वस्त्र, हस्तकरघा, कलात्मक गृह सज्जा के सामान, खिलौने आदि। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें कारखाना व्यय 3 करोड़ रुपए तक और पूंजी निवेश लगभग 5 करोड़ रुपए तक की होती है। इसमें श्रमिकों की संख्या 10 से 25 तक हो सकती है। राष्ट्रीय उत्पादन में इनका कुल योगदान लगभग 10% तथा 32% लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। निर्यात में

0: की भागीदारी 35% अनुमानित है। लघु उद्योगों को गैर कारखाना निर्माण इकाई में रखा जाता है। इसके अंतर्गत लाह उद्योग, बीड़ी उद्योग, कागज के थैले बनाना, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुएं, संगमरमर, दिया सलाई, परफ्यूम और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अन्य उद्योग भी शामिल हैं, जो एक बहुत बड़ी आबादी की दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साथ ही निर्यात के लिए वस्तुएं भी उपलब्ध कराता है। ऊर्जा संसाधनों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये उद्योग पनप नहीं पाए, किंतु विगत वर्षों में समस्याओं और इनसे जुड़े क्षेत्र से आने वाले स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसरों की महत्ता को देखते हुए कई ऐसे विकासोन्मुख योजनाएं लाई गईं जिनसे इनका निदान हो सके। जैसे झारखंड में लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनके द्वारा लाह, बांस शिल्प, हस्तशिल्प, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी कार्यशाला आदि के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गोंद, महुआ, मधु, इमली, चिरौंजी, कुसुम फूल आधारित उत्पाद प्रसंस्करण के लिए मार्गदर्शन दिए जाते हैं। सन 2019 में झारखंड की राजधानी रांची में श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत कई रोजगारोन्मुख एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जैसे छात्रवृत्ति योजना, चिकित्सा सहायता योजना, क्षतिपूर्ति योजना, ई पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण योजना, इसके अलावा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी नामक योजना के तहत बेहद छोटे उद्यमी भी 50,000 से 1,00,000 तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनकी दक्षता और क्षमता हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया है। उन्हें अपेक्षित धनापूर्ति के लिए क्रेडिट सहायता योजना तथा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु खादी ग्रामोद्योग संस्थान अहम भूमिका निभा रही है। नई तकनीक विकसित करने हेतु और उनकी उनसे अवगत कराने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाण योजना भी काफी सहायक होगी। श्रमिकों के उत्पादों के लिए उचित समय पर उचित दूरी पर बाजार की सुनिश्चितता तय करने के लिए विपणन संवर्धन योजना भी मददगार साबित हो रही है। श्रमिकों के कौशल और क्षमता के विकास हेतु कई क्षेत्रों में उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ स्थानीय तौर पर और ऑनलाइन मोड से भी लोगों को मिला है। इस प्रकार हम पाते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों से परंपरागत कला और कलात्मक प्रतिभा का संरक्षण होता है। एक क्षेत्र विशेष को उसके कारण पहचान मिलती है और नियोजित तरीके से चरणबद्ध विकास के लिए प्रयास किए जाएं तो यह ऊंचाइयों को छुएगा। यहाँ मैं बिहार के मधुबनी जिले में मधुबनी पेंटिंग कला का उदाहरण रखना चाहूँगी, जो आज विकास की धारा में अपने लिए एक नई पहचान बना रखी है और आज इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2012 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 में 311.52 लाख इकाइयां मिलकर 10,95,758 करोड़ का उत्पादन तथा 732.17 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने में सफल हुई है। कुटीर उद्योगों को गांवों की आत्मा कहा गया है, इससे उनकी पहचान जुड़ी है, इसलिए देश को आत्मनिर्भर बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही इनसे जुड़े श्रमिकों के विकास और कल्याण के लिए सही प्रयास और इस दिशा में सशक्त कदम उठाए जाने की संभावना है, तभी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकेगा। इस दिशा में सभी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर एक मंच दिया जाना है, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर, कृषि क्षेत्र, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभी में सम्मिलित प्रयास से इसे विकासोन्मुख बनाया जा सकता है। आज वैश्वीकरण तथा सामाजिक मीडिया के युग में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जो हमारी अमूल्य निधियां हैं, कौशल और कला के रूप में हमारे बीच हैं, उन्हें ऐसे रूप में समाज के समक्ष लाया जाए जिससे उनकी पहचान भी बनी रहे और बदलते परिवेश में उन्हें समायोजित और अनुकूलित भी किया जा सके। कोल्ड प्रेस ऑयल के उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं कि जिन तकनीकों से प्राकृतिक वनस्पतिक बीजों से तेल निकाले जाते थे उससे उनके मौलिक गुण बरकरार रहते थे और गुणवत्ता भी बनी रहती थी। आज के समय में पशु चालित कोल्हू तो हर जगह संभव नहीं है, किंतु उनका स्थान कोल्ड प्रेस मशीनों ने ले लिया है जो विशेष तकनीक द्वारा बनाए गए हैं और जिससे उनकी शुद्धता भी बरकरार रहती है और उन्हें निपुणता से निकाला और परिरक्षित किया जा सकता है। यह न केवल आत्मनिर्भरता का स्तंभ है बल्कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी मददगार है। आज सचमुच यह प्रासंगिक है। जय श्रम, जय उद्यम, जय उद्यमी।
1: तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी आशीष कि हमें कैसे उस उद्योग जो हमने पहले भी चर्चा की। अब साथियों, मेहनत करके हमने जैसे वित्तीय प्रबंधन की बात की ना, तो मेहनत करके कमाई करना जितना महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि उतना ही ज़रूरी है उस कमाई का सही प्रबंधन करना। तो यदि उस राशि का सही उपयोग किया जाए तो कम आय में भी परिवार की जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरी की जा सकती है और भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
2: तो पहले आवश्यक खर्च जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें और हर महीने अपनी आय का कम से कम 10-20% बचाने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बचत केवल घर में नकद रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बैंक खाते, आवर्ती जमा, सावधि जमा या अन्य सुरक्षित बचत योजनाओं का उपयोग कर और इससे आपके जो पैसे है ना वो सुरक्षित भी रहेंगे और उस पर ब्याज भी अच्छे से मिलेगा।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथियों, वित्तीय प्रबंधन केवल पैसे बचाने का नाम नहीं है बल्कि अपने और अपने परिवार के सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल भविष्य की योजना बनाने का भी माध्यम है। याद रखिए, आज की बचत की सही योजना ही कल की आर्थिक मजबूती है।
1: भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आज मैं भी इसे गांठ बांध देती हूँ आशीष, और हमारे जो श्रमिक साथी वो भी जरूर समझेंगे इस बात को। तो चलो अब हम एक गीत और सुनवा देते हैं अपने साथियों को।

0: भाई गीत का आनंद लेते लेते हम भूल भी गए कि हमें अपने श्रमिक साथियों से विदा भी लेना है और हमारे जाने का वक्त भी हो चला है। तो श्रमिक साथी, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें इस बरसात के मौसम में, और खुश रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। अपनी दोस्त आरती और
1: आशीष को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोक, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। लोहरदगा जिले में पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को बोरे में बंद कर पत्थर खदान में फेंक दिया था। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: खेती बारी सुनवैया सौ भाई बहन के जोहार, और मोहसिन भाई आपने के भी जोहार।
0: जोहार जोहार योगेश भाई, और सुनवैया सब किसान भाई बहन मन के मोहसिन भाई बटले जोहार
1: एकदम। और बताओ, बड़ा दिन बाद भेंट मुलाकात हुआ थे अपने से, तो का हाल समाचार है?
0: नगदे रहे कहली कि भेंट मुलाकात तो तनी बगरे दिन बाद हुआ थे, और हाल चाल भी नगदे है। अखन देखा थे कि चारों बटे पानी पतर आवत है, तो खेतों बाड़ी हरियर दिखत है, और किसान भाई बहन मन भी हरियर दिशत है। जाने तने देखा थे कि एकदम खुशी खुशी उत्साह से बीड़ा के लगा ले हैं, और कहूँ कहूँ तो अखन रोपा रोपे ले खेत का तैयारी भी करे लाई है।
1: एकदम नगद बात की कहली, और किसान भाई सुनत हो तो खेती बाड़ी में एकदम जुड़ल हो। लेकिन मोहसिन भाई, खेती बाड़ी करे से पहले एक ध्यान देवे कर चीज दरकार है किसान भाई मन के, कि जे माटी है उकर भी तो रोग लागेला।
0: एकदम एकदम,
1: जैसे आदमी के रोग लागेला तो कैसे जांच करवाएल जाएला?
0: देखो, बगरा खेती करल बाद या बगरा दिन हो गेल बाद माटी का जो उर्वरा शक्ति होला, उत्पादन कर क्षमता होले, से भी धीरे धीरे कम हो जाए, और मट्टी अम्लीय ज्यादा हो जाए चाहे क्षारीय हो जाए, तो इसमें पैदावार घट जाए, तो इसलिए माटी का जाँच भी बहुत जरूरी है।
1: एकदम। लेकिन किसान भाई दुविधा में रहे ना कि जांच माटी कहाँ करूँ आप, है नहीं, और का कमी बेसी है। बिना जांच करवा ले खेती करल से का होला कि उपज कम हो जाएला, और ज़्यादा उकर में खाद बीज लागेला, जेकर से मिट्टी भी उर्वरा शक्ति खोए लागेला, और पानी कर भी ज़्यादा दरकार, पानी प्रदूषित हो जाएला। तो ई सब से बाँचे के लिए एक हर प्रखंड में एक कृषि विज्ञान केंद्र खुलल है, उकर में किसान भाई मन मिट्टी कर जाँच करवा सके ना, जेकर में शुल्क ज़्यादा नहीं लागेला, 50 से 100 रुपया कर बीच में मिट्टी जांच हो जाएला।
0: ये देव रहे तो नगदे कहले कि प्रखंड प्रखंड में माटी का जांच होला, और किसान भाई बहन उनके पता भी चल जाएला कि हमार कौन खेत कर कौन फसल लजा, मतलब माटी जांच से पता चला कि हमारे कौन फसल उपयोगी है।
1: हाँ,
0: और अगर माटी खराब हो गई तो उसका सुधार कैसे हो सके, तो बहुत बढ़िया जानकारी रहे बता ली।
1: अब इकर में देखो नी, जैसे NPK का है ना, नी नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस जे कमी हो जाएला, तो जैसे माटी कर जांच होएला तो उकर से पता चल जाएला, और उकर अनुसार से खेती खेत में कैसे कौन कौन फसल लगाब सिकर जानकारी हो जाएला, और उकर अनुसार से अगर खेत में कैसे हम फसल लगा थे तो ज़्यादा पैदावार होगी।
0: तो सहले किसान भाई बहन मन के बेरा बेरा में माटी कर जाँच के कराते रह कर चाहिए। और देखो, बहुत बढ़िया जानकारी बता ली, तो तनिक उन्हें ठुरीज रंग भी किसान मन चाहे ना, तो एक ठुरीज रंग कर भी बात कर ले ले। तो आओ एक ठो नागपुरी में लोकगीत सुनील जफर खान और साथी कर गावल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो एखन सुनत रही नागपुरी लोकगीत जफर खान एवं साथी मनकर गावल गीत।
3: और अब रिजरंग के बाद फिर से युगेश भाई हमारे मन जानकारी हासिल कर लिया। तो मोटे अनाज के प्रसंस्करण हेतु उपयोगी मशीनें जे है, तो एक में कौन कौन मशीन काम आवेला, अच्छा सेकर बारे में बताबे डॉक्टर
2: निशा तिवारी। और एक से बात कह रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
4: किसान साथियों नमस्कार। आज पूरा विश्व मोटे अनाज यानी श्री अन्न की ताकत को पहचान रहा है। रागी, बाजरा, कोदो और कुटकी जैसे अनाज न केवल हमारी सेहत के लिए वरदान हैं, बल्कि खेती के लिहाज से भी ये कम पानी और कम लागत में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अक्सर हमारे किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है इनका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। कैसे इन अनाजों को साफ किया जाए, इनका छिलका उतारा जाए और इन्हें बाजार के लायक बनाया जाए, तो इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर निशा तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र गुमला। डॉक्टर निशा आपको नमस्कार है।
5: जी नमस्कार।
4: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मोटे अनाज क्या है।
5: मोटे अनाज सबसे पुराने अनाज हैं सर, जो छोटे बीज वाले घास कुल के पौधों के समूह में से हैं। इनकी खेती
4: किसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर निशा तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र गुमला। डॉक्टर निशा आपको नमस्कार है।
5: जी नमस्कार।
4: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मोटे अनाज क्या है।
5: मोटे अनाज सबसे पुराने अनाज हैं सर, जो छोटे बीज वाले घास कुल के पौधों के समूह में से हैं। इनकी खेती प्रतिकूल मौसम में भी की जा सकती है, जिसमें कम उर्वरक एवं कम कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। मोटे अनाज को उनके आकार के आधार पर प्रमुख मोटे अनाज एवं लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ को प्रमुख मोटे अनाज, जबकि काकुन, चीनी, कोदो, सांवा, कुटकी को लघु मोटे अनाज के रूप वर्गीकृत किया गया है सर।
4: जी, तो भारत में मोटे अनाज की स्थिति क्या है।
5: भारत में मोटे अनाज लगभग 13.80 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 17.30 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ में उगाए जाते हैं, जो एशिया के उत्पादन में 80% और विश्व उत्पादन में 20% और देश के खाद्यान्न उत्पादन में 10% का योगदान देता है।
4: मोटे अनाज के पोषण संबंधी क्या लाभ है।
5: मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ मोटे अनाज में लगभग 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट, 15-20% फाइबर होते हैं।
4: इनमें स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या लाभ है मोटे अनाज।
5: मोटा अनाज लस युक्त मुक्त होता है, मतलब उसमें ग्लूटेन नहीं होता है और नॉन एलर्जिक होता है। इसके खाने से जल्दी से कोई एलर्जी नहीं होती है। इसमें कई पोषण, न्यूट्रासेरिकल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला गुण भी होते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मोटे अनाज हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, मधुमेह से बचाता है, पाचन तंत्र में सुधार करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है, श्वसन स्वास्थ्य में प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र में सुधार करता है और सुरक्षात्मक होता है सर।
4: जी, तो आप ये बताएं कि जैसे वर्तमान समय में मिलेट्स यानी जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, सांवा है, ये सब जो श्री अन्न आते हैं, इनकी पहचान इसी रूप में होती है। तो ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, है ना, तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनके बेहतर उपयोग एवं मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि प्रसंस्करण है क्या?
5: भारत में 9 प्रकार के मिलेट उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, फिंगर मिलेट जैसा कि रागी या फिर उसको मड़ुआ भी कह सकते हैं के अंतर्गत आते हैं। ये नग्न मोटे अनाज होते हैं, जबकि बाकी मिलेट जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड बाजरा है, प्रोसो मिलेट है, कोदो है, ब्राउन टॉप मिलेट भूसी के अंतर्गत आते हैं और इन अनाजों को खपत के लिए छीलने की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद अनाज को साफ करना, छिलका हटाना, पीसना, पैकिंग करना तथा विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाना ही प्रसंस्करण कहलाता है।
4: तो ये लघु मिलेट प्रसंस्करण में चुनौतियां कौन कौन से हैं?
5: मिलेट के दानों में रेत के कण, छोटे पत्थर, मिट्टी के गोले और अन्य अक्रिय अशुद्धियां की उपस्थिति प्रसंस्करण की अवधि को बढ़ाती है, मशीनों के जीवन को कम करती है, घटिया गुणवत्ता वाले मिलेट उत्पाद से बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है, दानों में कीट के प्रकोप से मिलेट की लाइफ कम हो जाती है, अनाज में अधिक

0: नमी की उपस्थिति से उन्हें प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है और मिलेट की रिकवरी नीचे चली जाती है। एक प्राथमिक मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए सफाई, ग्रेडिंग, डीहलिंग और मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। आइए हम प्रत्येक मशीन की एक करके चर्चा करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है मशीनों को। एक तो है प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण, तृतीयक प्रसंस्करण। प्राथमिक प्रसंस्करण में मशीनें कौन कौन सी आती हैं? प्राथमिक प्रसंस्करण में सबसे पहले क्लीनर एवं ग्रेडर मशीन होता है जो प्रारंभिक सफाई की तैयारी करता है मोटे अनाज की। इस मशीन का उपयोग मिट्टी, भूसा, पत्थर एवं अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। इससे अनाज की गुणवत्ता सुधरती है। अलग अलग मिलेट के दानों के लिए अलग अलग आकार की छलनी के सहारे एक ग्रेडर कम एस्पिरेटर का उपयोग करके प्राथमिक सफाई की जाती है। ग्रेडर मिलेट के दानों को रेत के कणों, पत्थरों, डंडियों, मिट्टी के गोलों, डंडों, तिनकों आदि से अलग करता है। दूसरा है सर डिस्क टोनर मशीन है। यह मशीन अनाज में मिले छोटे पत्थर एवं भारी कंकड़ों को अलग करती है। डिस्टोनर निरंतर कंपन और वायु प्रभार के तहत पृथक्करण के लिए विभिन्न अंशों, अशुद्धियों, अनाज और मिलेट और टूटी हुई गुठली जैसे छिलके वाले अंशों के बीच घनत्व में अंतर का उपयोग करता है जिससे कि उसकी सफाई हो जाती है। मिलेट डीहलर या डिकॉर्टिकेटर भी कहते हैं। मिलेट डीहलर जो है कोदो, कुटकी और बाजरा जैसे मिलेट का बाहरी कठोर छिलका हटाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः भूसी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिलेट पॉलिशर है। डीहलिंग के बाद अनाज को चमकदार, आकर्षक बनाने के लिए पॉलिशर मशीन का भी उपयोग किया जाता है। ड्रायर मशीन है। अगर अनाज में नमी पाई जाती है तो उसे ड्रायर मशीन के द्वारा सुखाकर उसका भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। फिर द्वितीय प्रसंस्करण मशीनें क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। द्वितीय प्रसंस्करण में फ्लोर मिल या आटा चक्की होती है जिसको पल्वराइजर के भी नाम देते हैं, जिसमें रागी, बाजरा एवं ज्वार का पौष्टिक आटा इसी से तैयार किया जाता है। मतलब मोटे अनाज का आटा तैयार करने के लिए हम आटा चक्की पल्वराइजर के नाम से मशीन का नाम है उसमें किया जाता है। फिर उस पल्वराइजर मशीन मतलब जो मोटे अनाज है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनका पाउडर तैयार करता है। रोस्टर मशीन है। मिलेट को भूनने के लिए रोस्टर मशीन का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि लार्ज स्केल में अगर मिलेट का कुछ उत्पाद तैयार करना है, लड्डू ही तैयार करना है, तो हाथ से रोस्टिंग करने से मशीन में डाल देंगे तो अच्छे से वो उसकी रोस्टिंग हो जाएगी, मतलब उसकी भुनाई हो जाएगी। फिर है एक्सट्रूडर मशीन। जैसे बाजार में आजकल स्नैक्स, नूडल्स, पास्ता, रेडी टू ईट उत्पाद बनाए जाते हैं तो ये इस मशीन से आसानी से बनाए जा सकते हैं। मिक्सर एवं ब्लेंडर मशीन है। विभिन्न प्रकार के जैसे आटे को मिलाना है, मल्टीग्रेन आटा तैयार करना है तो उसके हेतु हम मिक्सर एवं ब्लेंडर मशीन का उपयोग करते हैं। तृतीयक प्रसंस्करण मशीनें में पैकेजिंग मशीन का नाम आता है। तृतीयक प्रसंस्करण मशीनें जैसे कि पैकेजिंग, संरक्षण, विपणन में इसका उपयोग किया जाता है और इनमें से है पैकेजिंग मशीन। आटा, कुकीज, नमकीन एवं अन्य उत्पादों को आकर्षक पैकिंग बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। फिर सीलिंग मशीन है। पैकेट को एयर टाइट बंद करने के लिए सीलिंग मशीन आवश्यक है। इससे उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सही से सीलिंग और पैकिंग नहीं करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, वो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी।
0: फिर लेबलिंग मशीन है। उत्पाद पर ब्रांड नाम, निर्माण तिथि एवं पोषण जानकारी अंकित करने के लिए लेबलिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है। उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु वैक्यूम पैकिंग की जाती है। बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी आजकल आ गए हैं, जैसे ओवन कई प्रकार के आ गए हैं, डीजल ओवन है, गैस ओवन है। तो आप अगर बेकरी के बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक डीजल ओवन की, अगर बड़ा लार्ज स्केल पे आप यूनिट खोल रहे हैं तो डीजल ओवन की आवश्यकता होती है या फिर गैस ओवन की, जो कि 18 ट्रे का एक ओवन होता है, एक बार में 18 ट्रे बिस्किट आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलेट बिस्किट है, कुकीज है, केक है, रेडी टू कुक उत्पाद बनाने हेतु विभिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है जिसमें से एक बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, आज निशा तिवारी जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि कैसे हम आधुनिक मशीनों का उपयोग करके मोटे अनाज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर हम केवल अनाज न बेचकर उसे प्रोसेसिंग करके आटा, सूजी या अन्य उत्पाद बनाकर बेचें तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी दोगुनी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाज की फूड प्रोसेसिंग मशीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, धन्यवाद सर।
2: तो मोहसिन भाई एखन सुनत रही मोटे अनाज कर प्रसंस्करण हेतु उपयोगी मशीने।
3: देखो मोटे अनाज बहुत फायदेमंद होल हमरे मन जानले कि मड़ुआ रागी बाजरा ज्वार ये सब मोटा अनाज कर अंतर्गत आवेला तो सबके हाले हमरे शरीर के कितना

0: फायदा वैसे अभी हमरे मन जान ली, और इतना बड़ा जानकारी कर बाद हमरे मन एखन फिन से एक ठो रीजनिंग कर बात करिए, तो
1: एकदम
0: आगे
1: एकदम
0: बताओ आज का जुगाड़ करिए।
1: एक जुगाड़ के रही भाई सुनवैया भाई बहन मन ले। खोरठा कृषि लोकगीत है जेके गाहें सुकुमार और उकर संगी मने।

0: एखन सुनत रही खोरठा कृषि लोकगीत जेके गावत रहे सुकुमार एवं साथी मन। तो देखो किसान भाई मन, अब जे है खेती बाड़ी कैसे करे खुवेला और कैसे अनाज के संरक्षित करके रखे पड़ेला, इस सब के बारे में भी हमें बहुत ध्यान देवे है। और खेती बाड़ी जैसे करे लाएगी उकर में नियमित जे खाद बीज है से के जाँच परख के ही प्रयोग करे चाहिए, काले कि साल भर कर फसल है गड़बड़ाए जाल बादे बड़ा दिक्कत होवेला। तो अब देखो हम इनकर बेरा भी अब कहत है खेती बाड़ी कर। तो किसान भाई मन आजकल जब बरखा पानी हुआ थे सिके सिकर में विशेष ध्यान देवे है कि जे बीड़ा कही रही उकर में पानी है कि नखे और खेत बेस से जोता है कि नहीं, से सब के ध्यान देते खेती बाड़ी करते रहे है। और बीज के एकदम अच्छा से एकदम परख के लगाई है। और ज़्यादा बरखा पानी होवेला बिजली तड़केला तो खेत बाड़ी में नखे रहे ऊँचा एकदम सूखल ठाँव में चल जाए है, काल की कर से बड़ा हम इनके डर लागल रहेला बिजली गिर जाएला तो जान माल कर क्षति हो जाएला, इमन से भी बाँचे है लेकिन खेती बाड़ी के छोड़े के नखे करते रहे है। तो चलो हम इनके अब तो लागत है खेती बाड़ी कर बेरा यहाँ सिरात है। तो अपने मन से है कि अखन इन्हें उन्हें नखे जाए, फिर से कार्यक्रम है हमारी दुनिया। तो फिर पुनः अपने मन के कहिला हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनवैया शोभ भाई बहन के एक बार फिर से योगेश भाई बटले जोहार। तो देखो हमीन तो बहुत करीला कि अब रहन सहन घर में बरसा पानी हो जाए तो साफ सुथरा भी रहे है, और इस साफ सुथरा रहे में हमीन के विशेष ध्यान देवे है तो बीमारी से भी बचल जा सकेला। और देखो घर में बहुत से बड़ बुजुर्ग मन व्यक्ति मन रहे ना आदमी मन रहे ना तो उकर भी सम्मान करे हमीन कर कर्तव्य हो जाएला, जिम्मेदारी है कि उनकर देख रेख करी करे है। तो हम इनके बुजुर्ग माए बाप जैसे दादा दादी नाना नानी इमन कर एकदम सम्मान करे खोवेला का मोहसिन भाई।
1: एकदम ठीक कह रहे रावड़ी, चूंकि हमने मन कही ला कि बुजुर्ग जो हैं से बड़ गज कर मानिंद होला हमारे मन के रक्षा करें। और घर में जेकर घर में बड़ बुजुर्ग रहे ना तो सेकर घर के छुआ पुता भी खुशहाल रहे ना, और माए बाप के भी कहल जा सकेला तो माए बाप भी फ्री रहें, चूंकि जेकर घर छुआ पुता रहें दादा दादी मने उनके खेलाए ना, छुआ के भी बूढ़ा मिल जाए ना बूढ़ा के भी छुआ, मने दोनों छुआ मन दोस्त हो जाए ना, और बाल बच्चा कर पालन पोषण ही बढ़िया से होला।
0: तो कहे नानी जे घर में बूढ़ा बुजुर्ग मन कर अगर सेवा सत्कार हो थे इज्जत हो थे उकर घर बरकित भी होला और उकर घर संस्कार भी आवेला। तो इकर सबसे बड़ी बात है कि देखो घर में अगर छुआ पुता है अगर बुजुर्ग मन कर अगर थोड़ा सा अनदेखा करत है तो छुआ मन उकरे से सीखे ना।
1: एकदम रावरे बेस कहती काले कि हमरे मन बड़ बुजुर्ग के साथ जैसा बर्ताव करेला हाँ। तो छुआ मन देखा है ना हाँ। और जब हमरे मन फिर बड़ बुजुर्ग हो जाए तो छुआ मन भी वैसे बर्ताव करे, काले कि परंपरा से आदमी मन सीखे ना हाँ। और दूसर बात है कि बड़ बुजुर्ग के खुश रहे चाहिए, काले कि कहल जाए कि बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके हमरे मन के चले चाहिए, जहाँ बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद मिली तहाँ हमरे मन कामयाब भी हो गए।
0: एकदम नगद बात के कहली और उकरे से सफलता भी मिलेला। और देखो इकर से कहा है कि देखो आशीर्वाद मिल जाल सबसे बड़ बात है, और बूढ़ा बुजुर्ग मन से सलाह भी लेवे के चाहिए, कोनो काम करत ही शुभ काम करत ही या कोनो ऐसा काम करत ही जेकर से बड़ काम होवे जैसा लागत है तो बुजुर्ग मन से सलाह लेवे के चाहिए, काले के नहीं मानत है फिर भी उकर से कहे के चाहिए कि ये हम काम करे जाती कैसन रही।
1: और देखो बुजुर्ग मन के जे अनुभव रहेला हाँ हम आज कतनो पढ़ लिख लेब तो पढ़ल लिखल ज्ञान तो जरूर मिली, आधुनिकता कर ज्ञान जरूर मिली, मुदा जे एक उम्र कर जे तजुर्बा होवेला हमरे मन कहले उम्र कर जे तजुर्बा होल भले अपन पढ़ लिख नहीं होबे चाहे पढ़ल लिखल होबे वो अलग बात है, मुदा जे उम्र कर तजुर्बा है बहुत माने रखेला, और उके ओहे मन बता सकें जे उम्र के गुजार सीखे
0: गुजार
1: हमरे मन नवा कतनो पढ़ लो तो उम्र के हम तजुर्बा के हमरे मन नहीं सीखे पारब, इसलिए बड़ बुजुर्ग कर तजुर्बा के भी लेके हमरे मन के काम के आगे बढ़ाए।
0: एकदम नगद बात के कह लीजिए हम इन किताब में नहीं पढ़ी ला वो ज्ञान हम इनके उमन से मिलेला जे हम इनके घर में बूढ़ा बुजुर्ग हुए। तो मोहसिन भाई तो श्रोता मन ले कोनो और जुगाड़ के ही रही
1: एकदम एकदम श्रोता मन
0: ला करते रहा नहीं
1: रीज रंग कर तो बात हमरे मन जुगाड़ करबे करैला। तो एखन हमरे मन सुनिले नागपुरी में एक तो लोकगीत सरिता देवी और संगीकर गावल के।
2: कोने

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन कर शांति भी बहुत जरूरी है घर परिवार के बेस्तर से चलाए के लिए। तो यह विषय पर एक है भेंटवार्ता, राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली और आंतरिक शांति, जिके बतात हैं बीके सीमा और इकर से बात कही रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: श्रोताओं नमस्कार। अक्सर हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन की शांति को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तनाव, चिंता और बिखराव आज के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में राजयोग क्या है और कैसे हम ध्यान की इस सरल विद्या को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक और आंतरिक शांति का संचार कर सकते हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके सीमा बहन जी। सीमा बहन जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: जी, ओम शांति।
2: ओम शांति। सीमा बहन जी, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति मानसिक तनाव या एंजाइटी का सामना कर रहा है।
3: जी।
2: एक आध्यात्मिक

0: मान को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देता है, तब उसके जीवन में भय, असुरक्षा, अपेक्षाएं और चिंताएं जन्म लेती है। मन बार बार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ती है। इससे खुद को सेफ करने के लिए अपने अंतर आत्मा में एक सुंदर विचार भरें। सबसे पहले, मैं एक शांत, शक्तिशाली और आनंदमय आत्मा हूँ। शांति वास्तव में बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि मेरा मूल स्वभाव है, इसे जाने।
1: जी, तो कहा जाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम दिन भर में आने वाले नकारात्मक या व्यर्थ के विचारों को कैसे नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक दिशा कैसे दें?
0: बिल्कुल, हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं।
1: जी,
0: नकारात्मक या व्यर्थ विचारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने मन को सही ज्ञान, सकारात्मक चिंतन और आत्म जागरूकता से भरना। जब हम स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि एक शांत, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा समझते हैं, तो हमारे विचार स्वतः सकारात्मक होने लगते हैं। इस पर एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगी।
1: जी।
0: हमारा मन एक मोबाइल की तरह है। जिस तरह मोबाइल में दिन भर कई नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसी तरह हमारे मन में भी लगातार विचार आते ही रहते हैं। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता और हर विचार भी सत्य या उपयोगी नहीं होता। यदि हम हर नोटिफिकेशन को खोलकर देखने लगें, तो मोबाइल की बैटरी और समय दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम हर नकारात्मक या व्यर्थ विचार पर ध्यान देने लग जाते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है।
1: जी,
0: इसलिए हमें अपने मन के नोटिफिकेशन मैनेजर बनना होगा। जैसे मोबाइल में आवश्यक नोटिफिकेशन को म्यूट या ब्लॉक करते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार आते ही उन्हें रोककर सकारात्मक और शक्तिशाली विचार चुनने चाहिए। राजयोग मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, ना कि गुलाम।
1: जी, तो जब हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करते हैं, तो आम लोगों को लगता है कि यह बहुत कठिन प्रक्रिया है या इसके लिए आंखें बंद करके घंटों बैठना पड़ेगा। एक आम इंसान के लिए ध्यान का सबसे सरल रूप क्या हो सकता है?
0: जी, बिल्कुल सही। दुनिया में लोग समझते हैं ध्यान या मेडिटेशन एक कठिन प्रक्रिया है।
1: जी,
0: जिसमें लोग से कुछ समय निकालकर या आंखें बंद करके बैठना पड़ता है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन अत्यंत सरल है, ध्यान का सबसे सरल सहज रूप है। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक चैतन्य प्रकाश बिंदु अनुभव करना, इसके बाद अपने मन और बुद्धि के कनेक्शन को परम धाम में निवास परम पिता परमात्मा शिव से जोड़कर उनसे शांति शक्ति लेना, यह कोई हठ योग नहीं है, बल्कि एक ये राज योग है, वो भी सरल विधि है। और ये एक जैसे बच्चे के साथ एक पिता का संवाद होता है, उसी तरह परम पिता परमात्मा के साथ हमारा संवाद होता है। ये आप चलते फिरते आंखें खोलकर भी सहज रीति से कर सकते हैं।
1: जी, तो बहन जी, सुबह उठने के बाद के पहले आधे घंटे को पूरे दिन की ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह की शुरुआत किस तरह के विचारों या आदतों के साथ हमें करनी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, सुबह की शुरुआत सबसे पहले परमात्मा को दिल से गुड मॉर्निंग और जीवन के लिए शुक्रिया कहकर करनी चाहिए। इसके तुरंत बाद मन में दुनिया की कोई भी नकारात्मक या खराब सोशल मीडिया की बातें डालने के बजाय शांत होकर आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ना या सुनना चाहिए। जब हम सुबह सुबह पवित्र और शक्तिशाली विचारों का मंथन करते हैं, तो आत्मा में एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। यही सुबह की सकारात्मक ऊर्जा हमें पूरे दिन भर हर प्रकार की परिस्थिति में शांत, स्थिर और ऊर्जावान बनाए रखती है।

0: जी, कैरियर और कार्य स्थल पर अक्सर प्रतियोगिता और दबाव का माहौल होता है। काम के बीच में खुद को शांत और केंद्रित रखने के लिए क्या कोई छोटी मोटी मानसिक एक्सरसाइज की जा सकती है?
1: जी बिल्कुल, कार्यस्थल या अपने कैरियर में अक्सर प्रतिस्पर्धा और दबाव का माहौल रहता है
0: जी,
1: जिससे निपटने के लिए कर्म योग और मन का एक छोटा सा 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। इसके अंतर्गत आपको काम छोड़ना नहीं है बल्कि काम करते हर 1-2 घंटे में केवल 1 मिनट के लिए मेंटल पाउज लेना है, अर्थात मानसिक ठहराव। इस 1 मिनट के मौन में आपको दुनिया और काम के विचारों को कुछ क्षणों के लिए रोककर मन को परमात्मा की शांति और शक्ति की तरंगों से जोड़ना है। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन की बैटरी को तुरंत रिचार्ज कर देता है, जिससे मानसिक थकान दूर होती है। इसके प्रभाव से कार्यस्थल में आपकी निर्णय क्षमता, एकाग्रता और कार्य कुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगती है।
0: जी, आजकल परिवारों में सहनशीलता कम हो रही है, जिसे रिश्तों में बिखराव दिख रहा है। आध्यात्मिक जीवन शैली हमें दूसरों को स्वीकार करना और रिश्तों को निभाना कैसे सिखाती है?
1: जी बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी। आजकल परिवारों में सहनशीलता कम होने के कारण रिश्तों में बिखराव और दूरियां बढ़ती जा रही है
0: जी,
1: जिसका सीधा समाधान आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करती है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि हम मनुष्य एक आत्मा है और उनके संस्कार, आदतें और जीवन यात्रा अलग अलग है। रिश्तों में मधुरता लाने का सबसे पहला नियम दूसरों को बदलने की जिद छोड़ना और उन्हें उनके संस्कारों के साथ वे जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करना। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद करते हैं तो टकराव समाप्त हो जाता है। हमें हर आत्मा के प्रति अपने मन से सदा शुभ भावना, करुणा और दुआ भाव रखना चाहिए, क्योंकि बदलने की भावना से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम से ही रिश्तों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
0: जी, हमारी परंपराओं में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। क्या हमारे खान पान का और उस खान पान को बनाते समय हमारे विचारों का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है क्या?
1: जी हाँ बिल्कुल, हमारी प्राचीन परंपराओं में बिल्कुल सत्य ही कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन
0: जी,
1: क्योंकि भोजन से शरीर ही नहीं मन भी प्रभावित होता है। जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय हमारे मन में चल रहे विचारों के वाइब्रेशन उस अन्न में समा जाते हैं। यदि भोजन क्रोध या तनाव या अशुद्ध विचारों से बनाया जाए तो उसे खाने वाले का मन भी वैसा ही अशांत और तामसिक बनने लगता है। इसलिए सदा सात्विक और पवित्र भोजन खाने की सलाह दी जाती है। भोजन बनाते समय और उसे ग्रहण करते समय मन में परमात्मा की याद और पवित्र विचार होने चाहिए, जिससे वह भोजन प्रसाद बन जाता है और हमारे मन को शक्तिशाली व शांत बनाता है।
0: जी, तो जीवन में उतार चढ़ाव, नुकसान या विपरीत परिस्थितियां आना तय है। ऐसी स्थिति में खुद को अंदर से टूटने से कैसे बचाएं और मानसिक रूप से मजबूत कैसे रहें?
1: जी, जीवन में उतार चढ़ाव, नुकसान या विपरीत परिस्थितियां आना पूरी तरह से स्वाभाविक है और तय है, लेकिन इनसे बचने के लिए हमें अध्यात्म समझ की आवश्यकता होती है। इस पूरे संसार को एक बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा समझना चाहिए, जिसमें हर आत्मा अपना अपना निर्धारित पार्ट बजा रही है। इस ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है, भले ही वर्तमान में वह हमें वैसा न दिखाई दे जब हम इस ऊंचे ज्ञान को अपना लेते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे अंदर से क्यों, क्या, कैसे के अनेक प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हम दुखी होने या टूटने के बजाय एक साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हैं, जिससे हर चुनौती को पार करने की आंतरिक शक्ति स्वतः मिल जाती है।
0: जी, तो श्रोताओं, आज हमने बीके सीमा बहन जी से जाना कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है उसे पहचानने और राजयोग के माध्यम से जागृत करने की। आशा है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में सकारात्मक की एक नई रोशनी लेकर आएगा। मुस्कुराते रहिए और अपने भीतर की शांति को बनाए रखिए। तो सीमा बहन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम शांति।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम शांति।
2: एखन बहुत अच्छा जानकारी देवत रहे बीके सीमा, राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली और आंतरिक शांति, इकर से बात करत रहे कृष्ण जीवन पौराणिक कि का लिखे आत्मा के शांत करे है, घर में लड़ाई झगड़ा से कैसे बाँचे है और प्रेम भाव कैसे बनल रही, सेकर बारे में बड़ा सटीक तरीका से बतात रहे और इके हमें अपन जीवन में अपनाइक चाहिए, तबे जाए के हमें कर सर्वांगीण विकास हुई। छुआ वन से छुआ, बूढ़ा जवान, सब कर मन कर शांति कर दरकार आहे, जेकर से उमन कर प्रगति कर राह खुल जाएला और उमन शांत चित हुई के कोयो काम के निपटारा कर लवेना। बहुत से बहुत बड़ जबर जबर समस्या के भी बड़ा आसानी तरीका से हल कर लवेना। तो राजयोग बहुत जरूरी है और अपन जीवन में अपनाइक चाहिए। तो चलो, बात तो होते रहे, रिज रंग भी होवे के चाहिए। तो एक नागपुरी लोकगीत है, यशोदा देवी और साथी मनकर गावल गीत।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण प्रसारण खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव के 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ देर में 7 बजेंगे, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। उससे पहले सुनिए यह संदेश।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक, पलामू चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का शुभारंभ किया और विकसित झारखंड का विजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड को केवल खनन आधारित राज्य नहीं बल्कि तकनीक अनुसंधान नवाचार और औद्योगिक विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ यहां के युवाओं की प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता और कुशल मानव संसाधन से बनेगी तथा झारखंड की वैश्विक मंचों पर भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने निवेशकों से दीर्घकालिक साझेदारी का आह्वान करते हुए स्थानीय संसाधनों और परिस्थितियों के अनुरूप विकास मॉडल अपनाने तथा शोध एवं आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर दिया।
1: झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं है। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदाने दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं।
0: झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का दौरा किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने बताया कि यह समिति विभिन्न विभागों के वित्तीय संबंधित चीजों की जांच कर इसकी रिपोर्ट विधानसभा को भेजेगी।
2: कमेटी का नाम है इंटरनल रिसोर्सेस एंड सेंट्रल एड। हमारा काम इतने है कि इंटरनल रिसोर्सेस कितने यहाँ से हैं, किस किस विभाग से कितना राजस्व मिलता है यहाँ से जो राज्य सरकार को जाता है, और सेंट्रल सरकार का जो सहायता मिलती है किस मद में मिला, किस हेतु मिला, वो खर्च बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ।
0: राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे का कायाकल्प शामिल है। इसके तहत सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़कर 15 मीटर की जाएगी। इस पर कुल 221 करोड़ रूपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। गढ़वा जिला प्रशासन एसआईआर अभियान को लेकर काफी गंभीर है और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त पशुपतनाथ मिश्र ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिले में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्यों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 61% गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है और 10 जुलाई तक 100% गणना प्रपत्रों का वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक की, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न कमियों में सुधार करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा रांची विश्वविद्यालय का समीक्षा बैठक रखा गया था कि बैठक में जनजाति समुदाय से संबंधित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के विद्यार्थी तक की बात हम सबने किया है कि अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर हम बात करें विशेष रूप से तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है।
0: जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की आज हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न रेलवे मुद्दों को उठाया। इस बैठक में नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेरे बढ़ाने, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
4: धनबाद के इस जोन से ही सबसे ज्यादा राजस्व देता है और धनबाद का जोन दूसरे प्रदेश में है, वहाँ रहे हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर धनबाद में भी रेलवे जोन बनना चाहिए क्योंकि पूरे भारतवर्ष में धनबाद एक कोयला का नगरी है और यहाँ पे हर तरह का ट्रेन मालगाड़ी का सबसे ज्यादा आवागमन है। यहाँ से ज्यादा माल ढुलाई भी होता है, यहाँ सवारी भी बहुत ज्यादा है।
0: बैठक में पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी अपने सुझाव दिए। हजारीबाग नगर निगम की बोर्ड बैठक में पदेन सदस्य के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। बैठक में उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और स्पष्ट कहा कि शहर के विकास की पहली प्राथमिकता मजबूत सड़कें, बेहतर नालियां और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित सलगी पंचायत के रोचो महुआ टोली में संचालित संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल के आवासीय परिसर में कल रात कमरे में सो रही चार छात्राओं को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। साथ ही दो का इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत डोरंडा थाना परिसर में लोगों की शिकायतें सुनी गईं। थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया। मौसम। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक, पलामू, चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान और गैस रिसाव की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने कल बैठक की। इस दौरान पिछले 6-7 महीनों से बंद धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को दोबारा खोलने से पहले अब उसके नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए BCCL 10 जुलाई तक SOP तैयार करेगा। खुदाई के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं उपायुक्त ने भविष्य में सरकारी संपत्ति के पास NOC खनन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
2: विस्तृत रूप से चर्चा हुई, किंतु जो वहाँ घटना है ये भूदशान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है। 1980 से बता रहे हैं लगातार हो रही है। 2005 में भी एक बड़ी घटना हुई थी, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, DGMS है, ITISM है, सिम्फर है, एक प्राइवेट संस्था भी है जो अच्छा काम करती है इसमें, उनके भी एक्सपर्ट थे, तो उन लोगों ने सबने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक SOP देंगे, जिस SOP के तहत BCCL और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा और वो प्रॉपर डिगिंग, बोरवेल जैसे बनता है, हम लोग बोरिंग करते हैं, वैसे बोरिंग करके पूरा चेक किया जाएगा उस पूरे पैच को। और अगर कोई मेजर हताहत की अगर सूचना नहीं रहेगी, अगर आशंका नहीं रहेगी, तो हम लोग रुक चालू करेंगे।
1: धनबाद शहर की रिंग रोड परियोजना से अग्नि प्रभावित झरिया क्षेत्र के विकास की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोयला मंत्रालय की सहमति से झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र को चारों ओर से जोड़ने वाली रिंग रोड परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है।
2: एक बड़ा प्रोजेक्ट रिंग रोड जैसा पूरे झरिया को सर्कल करते हुए 4 लेन 2 लेन मिक्स लेन करके बनने का प्लान है और भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा भी उसके लिए सहमति दी गई है और साथ साथ NH द्वारा उसका सर्वे भी किया जा रहा है। तो अगर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर हम लोग पूरे जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उसके चारों तरफ अगर हम लोग एक चौड़ी सड़क बना सकते, तो पूरा नया शहर उधर बसेगा और ये जो लगातार बार बार ये घटना वर्षों से नहीं दशकों से चलती आ रही है वो।
1: धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग तेज है। लगातार दोनों जनप्रतिनिधि प्रेस वार्ता कर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निरसा विधायक पर इस फरार अपराधी से संबंध रखने का आरोप लगाया है।
3: इसमें हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सिवा सावे, उसका प्रमाण मेरे पास देखा भी, अब वो बतावे कि मोइज खान और प्रिंस खान कौन है, उसका रिश्ता क्या है। और जब इतना सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, प्रशासन करे, तो क्यों नहीं जांच करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर, अरूप चटर्जी जी का, रिजवान का, मोइज खान का, दूध का दूध पानी के पानी, मेन संरक्षक प्रिंस खान का यही है अरूप चटर्जी जी, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले, ईमानदार कहने वाले, पर इसको कोर्ट जाएंगे, हम जानते हैं कि वो फिर मैनेज कर लेगा, उसका तो मैनेज करने का धंधा है ना, दो मर्डर किया और दोनों में मैनेज कर लिया, ताकि पीआईएल करेंगे और इसका जांच करवाएंगे।
1: गौरतलब है कि इससे पहले निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो पर रंगदारी वसूलने और अपराधी प्रिंस खान को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आदिवासी अखड़ा। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में।

0: जनाबूद हुलंग लेके गे मुंडारी भाषा ते आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आयुम तन माइनन इंगा पू हागामेसी आर दुलाड़ संगे को आन सिमाइला कुमारी ओड़ो
1: आन क्रिस्टीना दयाने मुंडू साते
0: जोआर
1: जना बुध हुलंग लिखा कि तिसिंग रे आ आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम रे गुनगान जगर को बु अयुमिया आर पिंगलाकन दुरंग हरियकवा दुरंग कोलो ते डुरकी डुलकी नगरा रूतन रुत्तु बनम साड़ितन लो दुरंग को बु अयुमिया
0: तबे कृष्णा निमिर्दो जारगिद असाते बाजना लोयंग गुड़ा को सीउलिका बाईजिना हाथु टोला करन होड़ो को सीउ कामी एटे किदा निमिर्गापा हाथु टोला करन होड़ो को इसुगे कामी करे को साल बाल गिड़ी कना ताइना मांडे जम के आते रुड़ुन रे अमोका को काको नाम धाड़िया हे जारगित सादा दो निका गे कामी उदम को ताइना ने कामी उदम कोरा दो इसुलंग चर्चा किदा आयारते तिसिंग रिया पाइतिरेलंग चर्चाया इना दो सिदातर जल संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन ओड़ो इटगना दो वन है तो जीवन है वनों का संरक्षण है जरूरी नेलिकन जगर कबू जपगरा आर नुए जपगर ची जल संरक्षण ओड़ो वर्षा जल प्रबंधन निमिर दारा इसु संकट हो बताना नेलिकते दा संरक्षण इसु पुराते पुरा जरूर मिना
1: हे सी माइला दई ना अदो जारगी सा सेटरकना गोटा जारखंड रे जारगी एट एजना निया लोते बाबा रोवाओ एट एजना गोटा हाथु रे बाबा रोवा रे आ रासिका लेल दड़ियोआ कोड़ा को सिता सिता नायल उरी

ओड़ा दुआर के ओड़ो भाषा संस्कृति के उबर दड़ियतना सेना इतु के आते जहाँ होड़ो जहाँ असुलेन हो रहा सेन दड़ियतना ने जोगुरे सेना होड़ो गे माजा चासा दड़ियतना माजा व्यापारी होड़ो बाई दड़ियतना ओड़ो लाइक की सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी आर मंत्री बाई दड़ियतना सेना होड़ो आया हाथु ही संभड़ाओ दड़ियतना रायजी आर दिशु में चलाओ दड़ियतना नियमित सरकार हाथु हाथु रे टोला टोला रे स्कूले बाई तदा अरे बाई जदा सोबेन को सेनाओ का मेनते सोबेन को उबरो का मेनते हाथु हाथु रा स्कूल को रे सरकार साथे पढ़ाओ तन होन को के मांडी न मोतना जहाँ लेका तेची होन को पढ़ाओ को जुलूम का आर को सेनाओ का उबरो का मेनते पढ़ाओ तन होन को के तुस्सिंगेल नतेन सोनो पेंटे न मोतना इनको के स्कॉलरशिप टाका पैसा नाम होता ना झारखंड राज्य रे मूल लेकाते मुंडा समाज चा आदिवासी समाज रे होड़ो को अंधविश्वास को भी विश्वास था ना जारगी दा आसारे दा आर सिक्किनी कोते ओड़ो रोको एमन कोते रकामरा रोगो को अंचार था ना ने रोगो को के अबू ना जो हम विषय या बगड़ा अबू पाती था ना रोगो कोते हार्दून में ते देवड़ा को जो ओ इरिंतना जहाँ कुड़ी के नाजम सब के आते इन्हीं के मागो ए दल गो इतना निकान जो तो होनोबा को सेना बनो रा कारंते हो बतना सेना नोड़ को निकान एत का कामी को काको कामी तना इनको रोगो कारण बूंगा चोंगा चा नाजो मा बगड़ाओ का को मना तिंग तना सेना नोड़ को रोगो तन होड़ो के डॉक्टर ते को रानु रिकाई तना भूगिन रानु जीना ते को भूगियो तना आर अकोआ जीवदन के को उबरे तना नया जोग इलेक्ट्रॉनिक रा जोग तना दुनिया रे रेडियो कंप्यूटर मोबाइल ओड़ो इंटरनेट रा दावा दाबी में ना आबू के नया सोबेन इतुन जारडू में ना ने नवा जोग रे नया नवा सेना को इतुन आबू के नया सोबेन इतुन जारडू में ना ने नवा जोग रे नया नवा सेना को का इतुन रे जीवदन के उग्र रे चिमिन तेनकत को ही जुगा निमिर गपा कंप्यूटर मोबाइल और नेट एमान कोते होड़ो को ओड़ा रे दूब के आते कामी धड़ियतना पड़ाव धड़ियतना बेपारी धड़ियतना एना मेंते काजिये कना ने जोगुरे होड़ो दुनिया के आया चिपुद रे दुआ कद आदिवासी समाज रे सीधा जोगु आते होड़ो को और कूड़ी होड़ो को वा अपना गोट रे मोद लेका टायत मेना खाली इनकी ना कामी को बिनगा बिनगा मेना कोड़ा ओते सी तना दो कुड़ी इनी नतेन सी तन ता मांडी इदी जदा कुड़ी सी तिया कन ओते रह तासात को एतु संग तना कोड़ा सारनारे बोंगा मेंते सेनो तना दो कुड़ी ओड़ा एलुंडा तना कोड़ा साड़ीमाए दाप तना दो कुड़ी लाता रते किचो एमान को एवं तना आकड़ा रे दांगड़ा को रू दूरंग तना दो दांगड़ी को कातीन तना आर सुसुन दूरंग तेला तना ने लेका गे मुंडा समाज रे कोड़ा होन आर कुड़ी होन को नापम जगर रा मोल लेका स्वतंत्र मेना ने कोड़ा होन कुड़ी होन को तला रे जेतायो जेता रा कम रा का सुकु कामी को रिकाय रा जेतन चाइल बनो आर का ताई के ना ने लेकन कारण ते जहाँ एटा दिसुम रेन दलालिया काजी पतिया जानते नेरें धांगड़ा धांगड़ी को कामी नला को सेंतना इनकुआ पढ़ाओ आर ओड़ा रा कामी बागेतना मेंदो एमन हातुरा रायन गायन नते जुदा ताइंतना जीवदन सोतो ए बदली रे बगड़ा होतना दलाल जहाँ कंपनी तारे जानवर को लेका है आकरिंग जा कुआ एना ते कंपनी किसान बेगर टका ते कामी रिका कोतना कुड़ी होन को दो कुआ दो इजाइती को रे जात कुआ निया को अबू आ समाज नतेन कलंक तना बुदनाम तना निया को के दबाए नतेन सरकार निया को दबाए नतेन सरकार बोलो को कोरते हाथुरे चीमुंग कामी को ओम जादा निया में ते ची हाथुरेन होड़ो को आको हाथुरे गे को कामी का इनकु एटाते आलो को सेन कामेंते अबू हाथुरेन को गे ग्राम

0: विश्वास न जो विषय लेकिन एक का को आदोगा समाज रे मेना हुड़िंग मारंग रा छिलन मेटाओगा आर ने लेकते अबुआ समाज सेनाते उबरोगा।
1: माइनन सोमा मुंडा तकिन के ने काजी कामी साहते माइनसम जोआर रुवाड़ा माइनन सोमा मुंडा शिक्षा से समृद्धि विषय रे बेसे मजा लेकते जानकारी उमद बुआ जरूरुगे अबू सोबेन ने जगर को बु उड़ुया आर अपना जीदन रे बु लागुया अलिंग बोरसा तना लिंग ची सोबेन आयुमतन को ने जापगरते फायदा को नाम के दा
2: दुलड़ संगे तलिंग को ना अदो ने काजी कामी के आयरते ओड़ोमयद मुंडारी आयुमन दुरंग कबु आयुमिया आपेनातिन उदुबोतना दुरंग हे भगवान दुरंग हरिया बाल गोविंद तिरकी ओड़ो संगे को आ दुरंग।

0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा मुंडारी भाषा में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बहू है जिसका नाम शशि है। शशि एक गरीब परिवार की है। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। शशि अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। शशि अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है। हर छोटे बड़े काम वो बहुत लगन से करती है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी सास शशि को सम्मान नहीं देती है जो एक बहू को मिलना चाहिए। बस अपनी बड़ी बहू को उसकी गरीबी के ताने सुनाती रहती है। सास और ननद की सोच उस वक्त ज्यादा गिर गई जब शांति देवी अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर परिवार में कर देते हैं। उनका छोटा बेटा एक सरकारी नौकरी पर काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए शांति जी और उनकी बेटी अंजलि अपने छोटे बेटे विजय और छोटी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती थी। घर का सारा काम शशि यानी बड़ी बहू करती थी। छोटी बहू तो बस सारा दिन फोन और किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती, क्योंकि वह एक अमीर घर से थी तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और विजय ने भी बोल दिया था कि मेरी बीवी को काम करने की आदत नहीं है और ज्यादा परेशानी होती है तो एक नौकरानी रख लो। तब शांति जी ने कहा, नौकरानी की क्या जरूरत है, घर में काम ही कितना है, जो काम वाली रखे, पहले भी तो घर के काम होते थे, अब भी हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटी बहू ही तो ज्यादा हुई है घर में, एक के आ जाने से काम ही कितना होता है, जो अलग से काम वाली रखे। सास और पति के शय पाकर तनुजा अब और भी बेफिक्र हो गई थी और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर काम के लिए दो टुक जवाब दे देती थी। पहले की तरह शशि काम करती रही, किसी से कोई शिकायत ना करती। श्रोताओं, आपको अमीर और गरीब के भेदभाव को दर्शाने वाली कहानी को सुनाने के लिए पेश करते हैं एक नाटक।

0: हेलो दीदी, कैसे हो आप?
1: हेलो भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। दीदी, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है, आप आ सको तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: पर भाभी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आपके जिया जी को कुछ जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी।
0: ठीक है दीदी, लेकिन कोशिश करना आने की।
1: देखती हूँ। अच्छा भाभी, बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है।
2: थोड़ी देर में अंजलि अपनी माँ को फोन करती है वहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि घर में कल का क्या प्रोग्राम है।
1: हेलो माँ, कैसी हो आप? घर में सब ठीक है ना?
3: हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना?
1: माँ, बड़ी भाभी का फोन आया था, बोल रही थी चीकू का जन्मदिन है, जरूर आना। माँ, क्या कोई बड़ी पार्टी रखी है?
3: अरे नहीं बेटा, ये कहाँ बड़ी पार्टी रखेंगे, बस घर में ही केक काटेंगे। तू रहने दे, फालतू में आने जाने का खर्चा ही होगा।
1: हाँ माँ, इसलिए मैंने भी बहाना बना दिया कि आपके जिया जी को जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी।
3: ठीक किया बेटा तूने।
1: हाँ माँ, मेरा भी बिल्कुल भी आने का मन नहीं है, कुछ लेते देते तो है नहीं, बस एक शगुन का लिफाफा पकड़ा देती है और बस खाना खिला देती है। पिछली बार जो साड़ी दी थी वो आउट ऑफ फैशन थी, इससे अच्छा तो वो ना ही देती।
3: तुम ठीक कहती हो बेटी, है भी तो गरीब घर की, उसके घर से तो कुछ आता नहीं, तो क्या पता होगा लेन देन क्या होता है, तू रहने ही दे आने को।
2: और दोनों फोन रखते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन बुआ के इंतजार में चला गया, परंतु बुआ नहीं आई। शशि सारा दिन काम में लगी रहती है पर कभी किसी से शिकायत नहीं करती। और एक दिन शशि की माँ की तबीयत खराब हो गई, शशि अपने मायके चली गई और शांति जी ने अपनी छोटी बहू को काम करने के लिए कहा तो तनुजा ने साफ साफ मना कर दिया।
3: बेटा तनुजा, एक कप चाय बना लो और हाँ, नाश्ता भी बना देना।
0: क्या मैं और नाश्ता बनाऊंगी? ये सब मेरे से नहीं होगा।
3: अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा?
0: वो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं बनाऊंगी, बस कह दिया।
4: अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है?
3: अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बस तनुजा को इतना ही बोला कि नाश्ता बना लो, पर ये तो मुझे ही धमकाने लगी।
0: देखो विजय, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये काम वाम मैं नहीं करने वाली।
4: अरे माँ, आप इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? माँ, तनुजा नाश्ता नहीं बनाना चाहती तो क्या हुआ, आप भी तो बना सकती हो ना।
3: क्या मैं इस उम्र में काम करूं?
4: तो क्या हुआ माँ? और माँ, अगर तुम नहीं बना सकती तो एक काम वाले रख लो, पर ये चिक चिक बंद करो प्लीज।
3: ठीक है बेटा।
2: कुछ दिन बाद जब शशि अपने मायके से घर वापस आती है तो सास को काम करते हुए देखती है। जल्दी से अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करके अपनी सास शांति देवी को मना करती है और खुद सारा काम करने लगती है। सास ये सब देखकर और अपने द्वारा किए गए बर्ताव जो उसने आज तक शशि के साथ किया था उसके लिए शर्मिंदा होती है। अगले महीने शांति जी के छोटे बेटे विजय और बहू तनुजा की शादी की पहली सालगिरह थी। ननद अंजलि बहुत उत्साहित थी कि उसके छोटे भाई और भाभी जरूर कोई बड़ी पार्टी देंगे, परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया था। अंजलि ने खुद ही अपनी माँ को फोन किया।
1: हेलो माँ, तुम कैसी हो? माँ, छोटी भाई और भाभी की सालगिरह आ रही है, क्या घर में पार्टी नहीं होगी?
3: पता नहीं बेटा, पर मैंने सुना तो था, वो फोन पर होटल बुक करने की बात कर रहे थे।
1: अच्छा, लगता है कोई सरप्राइज पार्टी रखेंगे, मैं तो जरूर आऊंगी। मैंने भाई के लिए शर्ट और भाभी के लिए सूट लिया है गिफ्ट के लिए।
2: बिना बुलावे का इंतजार किए अंजलि छोटी भाभी की सालगिरह के लिए अपने मायके पहुंच जाती है और तनुजा के कमरे में जाकर सालगिरह की बधाई देने के लिए जैसे अंजलि ने तनुजा को गले लगाना चाहा, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया।
0: अरे अरे दीदी, अभी अभी तो मैं बाल सेट करवा के आई हूँ।
1: ओ सॉरी सॉरी भाभी, आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी, आप लोगों ने तो बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं ही आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ गई।
0: थैंक्स दीदी, वो हमने बाहर का प्रोग्राम रखा था तो किसी को बुलाया नहीं, थोड़ी देर में आपके भाई आने वाले हैं, फिर हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे।
1: हम दोनों? मतलब आप लोगों ने कोई पार्टी नहीं रखी है?
0: दीदी, पार्टी तो रखी है, लेकिन हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है।
1: और फैमिली?
0: अरे दीदी, वो क्या है ना, वहाँ ड्रिंक वगैरह होगा तो फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
1: पर भाभी।
0: और हाँ, हम आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर देंगे, आप सब खा लेना, और हमें आने में देर हो जाएगी।
4: तनुजा, तुम रेडी होगी या नहीं? जल्दी करो।
0: हाँ, मैं

0: हूँ। पर भाई,
1: क्या हुआ अंजलि?
0: भाई, पार्टी तो घर में होनी चाहिए, या सभी को यहीं बुला लो।
1: अंजलि, क्या कह रही हो तुम?
0: भाई, बड़ी भाभी और भैया भी तो घर में ही पार्टी करते हैं और पूरी फैमिली एंजॉय करती है।
1: अरे, पूरा साल फैमिली के साथ ही तो रहते हैं, और एक दिन हम बाहर पार्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? और हाँ अंजलि, बने बनाए मूड को खराब मत करो।
0: क्या, मैं आपका मूड खराब कर रही हूँ? बड़े भाई भाभी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं।
1: अंजलि तुम जाओ, नहीं तो हमें पार्टी के लिए देर हो जाएगी।
0: ठीक है, मैं जा रही हूँ। और अंजलि सोचने लगती है और माँ के पास जाकर सारी बात बताती है कि किस प्रकार छोटे भाई और भाभी ने फैमिली के साथ शादी की सालगिरह ना मनाकर दोस्तों के साथ होटल में जाकर पार्टी करना सही समझा।
2: माँ, बड़ी भाभी ने तो आज तक परिवार के बिना कभी कोई सालगिरह और कोई जन्मदिन नहीं मनाया। केक भी माँ के हाथों से ही कटवाती है और कितना आदर और सम्मान से बुलाती है। और एक हम है जो उसके बुलाने पर नखरे करते हैं। और छोटी भाभी ने कितनी सहजता से बोल दिया, फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
3: अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी ना हो तो कोई हमें रोटी भी ना दे, और एक हम है जो उसकी कदर ही नहीं करते।
2: हाँ माँ, तुम ठीक ही कहती हो। आज मैं भी अपनी गलती और बड़ी भाभी के साथ किए हुए व्यवहार से शर्मिंदा हूँ।
4: और तनुजा और छोटा भाई विजय भी तैयार होकर होटल के लिए चले जाते हैं। शांति जी और अंजलि उनका मुंह देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है, लेकिन उनके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। तभी बड़ी बहू शशि ने आकर पूछा,
5: दीदी, माँ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना ठंडा हो रहा है।
3: बहू, वो मेरे पेट में ना गैस बन रही है, मैं ये भारी तला हुआ खाना नहीं खा सकती। बेटा, तुम मेरे लिए दलिया बना दे।
5: जी माँ जी, ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ।
0: भाभी, मैं भी दलिया ही खाऊंगी, मेरे लिए भी दलिया बना दो। ये खाना बहुत तीखा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
4: शशि मुस्कुराते हुए रसोई में गई और दलिया बनाकर ले आई। आज वो दलिया दोनों माँ बेटी को बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें शशि का अपनापन और सम्मान जो मिला था।

0: श्रोताओं, हम किसी की भावना और अपनेपन को दौलत से नहीं माप सकते। शशि गरीब घर की जरूर थी, परंतु उसमें सबके लिए सम्मान की और आदर की भावना थी। हमें कभी भी किसी को उसके पैसे या पोशाक देकर सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और उसके अच्छे कार्य को देखना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।
1: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
2: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। बस कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत संगीत। तो आइए शुरू करते हैं आज का फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और सुनिए सबसे पहले अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में ये दिलकश गाना। फिल्म है दिल है कि मानता नहीं, धुन तैयार किया है समीर ने। आइए सुने इस फिल्म का यह गाना।

इस प्यारे से गाने के बाद आइए सुनते हैं हम अगला गाना। अगला गाना हमने लिया है फिल्म जीत से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत नदीम श्रवण का है और शब्द रचना है समीर की।

0: एक बहुत ही प्यारा गाना अभी आपने सुना। सच में इस गाने को हमने लिया था फिल्म खुदा हाफिज से। आवाजें थी मिथुन विशाल मिश्रा और आशीष कौर की। संगीत तथा शब्द रचना मिथुन का था। इस गाने के बाद लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विराम के बाद आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी गंधा।

फिल्म साजन से लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और धुन दिया है समीर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम से ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। धुन तैयार किया था समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। और इसी गाने के साथ आज का फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रजनी को दीजिए विदा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुर्खियों में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग, जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक एक क्षेत्र है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
2: यदि हम इंडोनेशिया और भारत को देखें तो बहुत लंबे सभ्यतागत रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ध्वजावाहक इंडोनेशिया भी है और 2018 तक तो 1949 से जो राजनयिक कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे बहुत अच्छे चले। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की यात्रा की तो इन संबंधों को एलिवेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमने शुरुआत की और इसके बाद से हमने देखा कि कैसे जो एक क्रिटिकल महत्व के सामरिक क्षेत्र है इसमें न सिर्फ दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बल्कि यदि हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को देख लें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। और इसमें अब ये देखना सुखद है कि इस बार की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी डील तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील को माना जा रहा है जिसमें इंडोनेशिया हमारी होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स को न सिर्फ लेगा बल्कि फिर आगे को प्रोडक्शन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा भागीदार होगा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लेकर के, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और हमारे इलेक्टोरल मैनेजमेंट की जो सराहना की है इंडोनेशिया ने तो EVM मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए और विकास को विस्तार देने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल बनाए रखने के लिए, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने के लिए ये समझौते आगे चल करके बहुत कारगर साबित होंगे।
1: प्रोफेसर अंशु जोशी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का जो एक अगर रक्षा सहयोग की हम बात करें तो दशकों पुराना एक साझेदारी जरूर रही है लेकिन पहले ये खाली एक संयुक्त, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर जो होते थे, एक संयुक्त जिसमें कि हम कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ये सीमित था लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी।
2: कमल जी, पहले तो हम ये समझे कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना

0: बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक ज्वाइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुद्रिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको सरल बनाते हुए इसमें जो दूसरे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको शामिल करने की बात है। तो हम दोनों देशों की ओर देखें तो बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और इंडोनेशिया, तो इससे फिर जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट को भी हम मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग प्रकार के तकनीकी साझा करने को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इक्विपमेंट के आदान प्रदान को लेकर के, और इसके अलावा अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग शुरू हुए हैं दोनों देशों के बीच में और जो कार्यक्रम होंगे ये भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जी कम
1: तो आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाले पक्ष हैं वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में?
0: कमल जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आज की तारीख में यदि उसकी शक्ति के संचालक तत्वों को हम देखें तो उसमें उसकी आर्थिक शक्ति का एक बड़ा महत्व होता है। तो जब हम भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापार की ओर दृष्टि डालें तो विगत कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं ये संबंध। आज 38 बिलियन यूएसडी का लगभग व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड पाम ऑयल को इंडोनेशिया से मंगाता है। वहीं हम इंडोनेशिया की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक जो है हम यहाँ से अपने यहाँ से इंडोनेशिया को भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में तो विशेषकर जैसे स्टील के क्षेत्र में ये देखना सुखद रहा कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और इंडोनेशिया के जो क्रकाताऊ स्टील है उन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को साथ में को डिवेलप कर सकते हैं इसको लेकर के एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स को भी शुरू किया गया है और इसके साथ साथ हम यदि देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ावा देते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हम कैसे उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ा सकते हैं इसको लेकर के भी समझौते देखने को मिले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से निश्चित तौर पर रिश्ते नई उड़ान ले रहे हैं और द्विपक्षीय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आसियान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया हमारे साथ। तो फिर जब ऐसे देश हमारे साथ द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो फिर आर्थिक दृष्टि से चाहे हम ऐसे व्यापार समझौतों की बात करें या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो वहां फिर आसियान जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परमानंद मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बीच हुए सहयोग के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: तो जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध है उनको नई दिशा देने में किस तरह से ये सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा और आज जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही परमानंद मंदिर की उस पर भी आप क्या कहेंगी?
0: कमल जी, ये आपने चर्चा में बहुत ही सुंदर आयाम जोड़ा है और यदि हम भारत के इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति को देखें तो वो हमें इंडोनेशिया में भरपूर दिखाई पड़ती है। उसका ध्वजा वहां के अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का यहाँ सम्मान है, भारत की अलग अलग भाषाओं का सम्मान है और इसके साथ हम रामायण और महाभारत की धरोहर को जिस तरह से इंडोनेशिया द्वारा संभाले जाते देखते हैं वो अपने आप में अनोखी है। मुद्रा पर यहाँ की गरुड़ अंकित है, गणेश की पूजा होती है। तो ऐसे में जो ये बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना और भारत द्वारा इस बात का बीड़ा उठाया गया है कि इस पूरा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार, इसकी तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता भारत करेगा, तो किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी

0: शिकार बने हुए हैं। और ऐसे में जब भारत, हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इंडोनेशिया जैसे देश एक बहुत सशक्त साझेदार के रूप में खड़े दिखाई पड़ते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर हम देखें तो ब्रिक्स के मंच पर, G20 के मंच पर, आसियान के मंच पर, और ये भारत की महासागर डॉक्ट्रिन में जो ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स की बात हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से की थी। इसके पहले सागर की बात की थी तो इसमें ये सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, प्रॉस्परस बनाए रखने की ही बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद निरोधी हम कैसे अलग अलग तकनीकें हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी भी बात है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में घिरे संकट का समाधान भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जैसे भारत टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इसको पूरे विश्व को ध्यान से समझना चाहिए और पश्चिम एशिया के देशों को इसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आतंकवाद निरोधी जो उपाय हैं उनको जब उन्होंने अपनाने की बात की तो यहाँ पर तकनीकी कहीं ना कहीं सहयोग के स्तर पर, नियमन के सहयोग के स्तर पर, और फिर एक जनता की दृष्टि से भी देखिए जिस प्रकार का लोगों का यहाँ से साथ हमको मिलता है, इस बात को मिलता है, इस लड़ाई को मिलता है, तो भरपूर सहयोग इंडोनेशिया का जो है भारत को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी इस बात का पक्षधर है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद में।
1: इंडोनेशिया में बसे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Our language, I would say, Falizon, Minister of Culture, our language was 50% from Sanskrit. Many of our names are Sanskrit names. And therefore, there is this closeness and we welcome more close cooperation.
1: आखिर में प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे दोनों देशों के बीच 1200 किलोमीटर की एक लंबी समुद्री जो सीमा है वो साझा होती है, तो किस तरह से महासागर विजन और इस तरह के जो समुद्री सहयोग हैं उसमें दोनों देशों की एक मजबूत साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में।
0: इंडोनेशिया की और दृष्टि करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण या सहयोगी देश है, और महासागर विजन की दृष्टि से भी देखें तो इंडोनेशिया की जब हम लोकेशन को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर थे और ये तमाम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने ये देश हैं इनकी ओर भारत का ध्यान है, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई, एक नेगेटिव कूटनीति भारत को घेरने के लिए या इन सामुद्रिक क्षेत्रों में अपना असर्शन दिखाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके और इन सामुद्रिक क्षेत्रों को किसी भी देश के प्रभुत्व से मुक्त रखा जा सके। इंडोनेशिया इसमें भारत का बिल्कुल साझेदार सहयोगी है, इसके रूप में नजर आता है। और इस नीति के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के और रक्षा सहयोग को लेकर के बातें भारत करता है, और इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस ऐसे देशों को बड़ा अपना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो ये देखना सुखद रहा कि इंडोनेशिया का जो महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार से बहुत करीब है, और यहाँ भारत जो है इस पोर्ट के विकास के लिए अपना आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा, इससे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में भी सहायता मिलेगी, और भारत को जो जियो स्ट्रेटेजिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया से लगी है, इसका अर्ली और टाइमली एक्सेस जो है वो भारत को मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया को भारत के सबांग एयरपोर्ट को विकसित करने से व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की जो महासागर नीति है वो ये तमाम लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, व्यापार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की है। तो इसमें इंडोनेशिया के साथ एक भविष्य की जो रूपरेखा है वो भारत ने तय कर ली है और अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं।
1: जी निश्चित तौर पर, और जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसके अलावा जो एक वैश्विक साझा विकास है, इस दिशा में दोनों देशों की साझेदारी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है और इन समझौतों से इस साझेदारी में और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार कमल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। बस कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में

0: भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्स्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक तैयार जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है। जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आई।

0: the momentum this month to accelerate possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyukova, Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। दिफाई तहकीको तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडवांस की है। मॉनसून में बेहतरी से राहत मिली है। जरात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवियत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब हाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगु भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे मां तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरक प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर भाया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने तजुर्बा करार दिया।
3: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: भारत और रूस ने आज अक्वामे मुत्तहदा ब्रिक्स ईएजी

बात मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को।
1: इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिस उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मॉनसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर

0: वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है, होम मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरी जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एलनीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
0: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक सीट हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि

0: एग्रीकल्चर वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी। और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहां, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हो जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहना मतलब कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहां का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
1: जी,
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी,
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ही मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिए, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चर

0: इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने डेवलप किए हैं, बट इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहां से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कम्प्लीट सोल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, एआई की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: अनिल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं।

0: मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है। वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इम्पोर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है, तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी, यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले परसेंट रेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
0: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यावहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब यह देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है चाहिए, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहां जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है, और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
0: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: कौन कौन है भाई सुबह सुबह? अरे तू तू
1: प्रणाम पापा, प्रणाम।
0: आ आ आ, खुश रहो, चिरायु हो, आजा अंदर तो। हा हा, दरवाजा बंद कर दे। हा हा, बैठ। अरे बिना बताए अचानक?
1: बहुत दिन हो गए थे पापा आपको देखे हुए, बस मन बेकल हो गया, चला आया।
0: अच्छा किया, अच्छा किया। आ, सामान अपने कमरे में रख दे।
1: अपना कमरा?
0: हाँ बेटा, तेरा अपना कमरा, तुम दोनों के, तेरे और ईशु के कमरे हैं ना।
1: पर पापा, उन्हें तो किराए पर लगा दिया है ना।
0: अरे ऊपर का हिस्सा लगाया है किराए पर, जगह की देखभाल, साफ सफाई हो जाती है और थोड़ी आमदनी भी, रास्ता भी अलग है, और क्या। अच्छा तू आराम कर ले या सो जा थोड़ी देर, नहीं तो तू एक काम कर, तू नहा के फ्रेश हो जा।
1: ट्रेन में सोते हुए ही तो आया हूं पापा, मैं तैयार हो जाता हूं बस। पापा पापा, किचन में आप क्या कर रहे हैं?
0: अरे सैंडविच बना रहा हूं, आलू उबाले हैं, ब्रेड रात को ले आया था, रात में छोटा पैक नहीं मिला तो बड़ा ले लिया, देख काम आ गया।
1: छोड़िए पापा, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अरे मैं बनाता हूँ, आप छोड़िए छोड़िए ये सब।
0: अरे प्रथम
1: आप किचन से जाइए पापा, मैं बनाता हूँ नाश्ता आपके लिए बस।
0: अरे नाश्ता बनाने आया है यहाँ तू?
1: मैं आपको नाश्ता नहीं बनाने दूंगा पापा, सैंडविच मैं बना देता हूँ, आप जाइए नहाइए और तैयार होइए।
0: अच्छा अच्छा पापा, अच्छा। अरे बढ़िया सैंडविच बनाया है तूने, भला मुझसे इतना टेस्टी बनता? अरे तू खा नहीं रहा है, मेरी ओर क्या देख रहा है?
1: बहुत कमजोर हो गए हैं पापा आप।
0: अरे नहीं। अरे उम्र का असर है बेटा। अच्छा ये बता, कितने दिनों के लिए आया है?
1: जब तक आप मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होते।
0: जब तक आप। अच्छा बेटा सुन, तेरे मलायक सब्जियां ले आऊंगा, आशा बना देगी।
1: आशा?
0: हाँ हाँ, खाना बना देती है, साफ सफाई कर देती है, कपड़े धो देती है, रात का खाना बनाकर फ्रिज में रख देती है, गरम करके खा लेता हूँ।
1: और दिन भर रात भर अकेले रहते हैं आप पापा?
0: अकेले? जीवन में कभी कोई अकेला नहीं रहता प्रथम, यादें किसी को अकेला नहीं छोड़ती, यादें रहती हैं साथ, उम्र भर की यादें, समझा?
1: यादें धीरे धीरे भुला दी जाती है पापा।
0: जो भुला दी जा सके वो यादें नहीं होती बेटे, यादें आखिरी सांस तक साथ रहती हैं, आखिरी सांस तक। शायद आशा आई है, देखता हूं।
2: नमस्कार दादा।
0: ओ रंजन, आओ आओ बैठो बैठो।
2: ठीक ठीक।
0: प्रथम ये मनोरंजन बाबू हैं, बगल वाला मकान इन्हीं का है, और ये बड़ा बेटा प्रथम पुणे से आया।
3: नमस्ते अंकल।
2: अरे सुखी रहो सुखी रहो। दादा आपका मनपसंद चीज लाया है, खीर।
0: फिर वही बात। अरे रंजन तुझे कितनी बार कहा है, पहले बता दिया कर, अब देख हमने सैंडविच बना रखे हैं।
2: सैंडविच? अरे बाबा।

0: अब फिर तो और भी मजा आएगा। खीर का साथ सैंडविच, आहा की जलखबर। अरे बेटा, अरे तुम भी खाओ, हम और लेके आता है।
1: इतना काफी अंकल, सफिशियंट।
2: अरे हाँ रंजन, इतना काफी है, तुम बैठो बैठो और लो ये सैंडविच खाओ, प्रथम ने बनाए हैं।
0: अच्छा,
2: बहुत टेस्टी है।
0: अच्छा, जरा हमको भी देना, देखो देखो।
1: लीजिए अंकल।
0: खूब भलो सैंडविच बेटा। अरे हमको भी सिखाना तो, इतना टेस्टी कैसे बनता है।
3: गुड मॉर्निंग दादाजी।
2: मॉर्निंग, आओ आओ।
3: दरवाजा खुला हुआ है। अरे रंजन अंकल, आप भी। नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।
2: ये आशा है। आशा
3: जी।
2: ये बड़ा बेटा प्रथम।
3: नमस्ते। मैं आपको भाई कहूं?
1: कह सकती हो।
0: अरे बाबा, ये कैसा होगा, दादा का बेटा तो चाचा होगा ना।
1: अरे इतनी उम्र नहीं हुई है मेरी अंकल।
3: मैं भी तो छोटी नहीं हूँ, मैं तो भाई ही कहूंगी।
2: तुम जानो और प्रथम जाने।
3: अरे आपने खुद ही नाश्ता बना लिया दादाजी, मैं लेट भी नहीं हूँ लेकिन।
0: अरे सैंडविच प्रथम बना है
1: और अच्छा? खीर अंकल लाए हैं।
3: ओह, माने नाश्ता फिनिश
1: जी।
3: ठीक है, अब बताइए खाने में क्या बनाऊं?
2: जो प्रथम कहे,
1: जो आपका मन हो।
2: बता दो ना। अरे आशा खाना अच्छा बनाती है।
1: आप ही बता दीजिए ना पापा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है। आशा
3: जी,
2: ऐसा करो, मटर के पराठे, आलू की सब्जी, धनिया की चटनी, अचार और पापड़, है ना
3: जी।
2: मेरी तरह प्रथम को भी बहुत पसंद है ये। सब्जियां सब हैं और हाँ दही भी।
3: ठीक है भाई, साथ में टमाटर की मीठी चटनी कैसी रहेगी?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन लेकिन डिनर यानी रात का खाना हम बाहर खाएंगे। और अंकल आप भी फाइनल।
0: हमको कोई ऐतराज नहीं है।
1: आशा
3: जी,
1: केवल दिन का खाना।
3: ठीक है भाई, ठीक है।

0: अंकल अंकल अंकल,
1: अरे प्रथम क्या बात है, इतना घबराए हुआ क्यों है
0: अंकल? वो पापा
1: पापा, क्या हुआ पापा को?
0: पापा पापा घर में नहीं अंकल।
1: घर में नहीं है मतलब?
0: पापा घर में नहीं है।
1: क्या घर में नहीं है?
0: जी
1: चलो चलो तो देखे। दादा दादा दादा ईश्वर दादा, अरे ओ ईश्वर दादा, दादा तो नहीं है, कहाँ गया होंगे? अच्छा मॉर्निंग वॉक से आ गया थे ना?
0: नहीं अंकल, बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए हैं।
1: अच्छा सब्जी लाने तो नहीं चला गए? एक खाना का कोई सामान?
0: वो सब मैं शाम को ले आया था अंकल।
1: अरे फिर कोथाए जा सकते हैं?
2: अरे क्या बात है, चाचा भतीजा दोनों सुबह सुबह एक साथ?
1: एक तो।
0: पापा पापा आप कहाँ चले गए थे बिना बताए?
2: अरे वो डॉक्टर के यहाँ चला गया था।
0: डॉक्टर? तबीयत खराब थी तो मुझे बताते पापा।
1: दादा प्रथम बहुत घबरा गया है।
2: अरे घबराने जैसी कोई बात नहीं है भाई। मॉर्निंग में डॉक्टर हेमंत भी आते हैं ना, वही अपने साथ ले गए थे, तुम तो जानते हो रंजन।
1: दादा आप ठीक तो हैं ना?
2: अरे हाँ भाई हाँ, डॉक्टर हेमंत से पूछ लो, प्रथम को जगाना।

0: ठीक नहीं समझा? सुबह देर से उठता है ना?
1: पापा मैं जल्दी उठता हूँ, टाइम से ड्यूटी पर पहुँचना होता है।
2: अच्छा दादा, अभी आप आराम करो, हम चाय लाता है।
0: अरे डॉक्टर ने चाय बिस्कुट खिला दिया है, प्रथम ने चाय नहीं पी होगी।
1: पहले तैयार हो जाओ पापा, फिर चाय पियो।
2: ठीक है ठीक है दादा, तो आप आराम करो। हाँ हम आता है, है? प्रथम ये ताड़ी चोरी होके चाय खाने वास्ते हमारे पास आओ।
1: हाँ जी अंकल। आशा
3: जी,
1: आशा
3: जी,
1: हम दोनों के कपड़े रोज साफ करती हो?
3: दादाजी का ऑर्डर है।
1: क्या
3: आशा, मेरा कमरा साफ हो चाहे नहीं हो, प्रथम और ईशु का कमरा रोज साफ करना, भूलना मत। ईशु आपके छोटे भाई का नाम है ना?
1: हाँ। आशा
3: जी,
1: एक बात पूछूं?
3: जी।
1: सच सच बताना।
3: भाई पहले कभी झूठ बोल भी लेती थी, पर जब से दादाजी का साथ मिला है सपने में भी झूठ नहीं बोलती। विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए।
1: तो फिर पापा को कोई बीमारी?
3: आप भी ना भाई, बस यही पूछना था। दादाजी को कोई बीमारी सीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ है एकदम।
1: तो वो डॉक्टर?
3: अरे मॉर्निंग वॉक का उनका दोस्त है, जब तब चेकअप करते रहते हैं। पर भाई बुढ़ापा अपने आप में बीमारी होती है, उस पर से अकेलापन इस उम्र में। भाई मेरा घर परिवार है, दो बेटे हैं, पति है, ससुर है, नहीं तो मैं ही दादाजी के पास रह जाती। भाई उन्हें अकेला मत छोड़ना।
1: तुम यहाँ हो तो कपड़े धोने की आवाज आशा?
3: दादाजी अपनी गंजी नीकर मोजे रुमाल खुद धोते हैं रोज। हाँ
2: आए प्रथम। प्रथम
1: जी अंकल।
2: अरे बाबा तुम आया नहीं, तुम्हारे आंटी चाय बना के रखा है, ताड़ी चलो।
1: लेकिन अंकल।
2: अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अरे तुम नहीं चलेगा तो तुम्हारे आंटी एतो राग करेगा जो हम बोलने नहीं सकेगा। ए आशा, ए प्रथम चाय खा के आता है।
3: ठीक।
2: अभी ठीक है। प्रथम
1: जी अंकल,
2: तुम रात में कहाँ सोया था?
1: क्यों अपने रूम में?
2: एक बात तो बोलता है। हाँ देखो तुम ना दादा के रूम में सोया करो, अकेला मत छोड़ो रात में, अकेला इस उम्र में।
1: रात में कौन सोता है पापा के पास?
2: अरे हम सोता है, वो फोल्डिंग बेड रखा है ना उधर उस तरफ, उस पर हम सोता है, अकेला नहीं छोड़ता है।
1: फिर तो आंटी अकेली?
2: ओ बाबा, अरे लड़का बहु पोता है तो टूर पे गया है पूरी, चार पांच दिन में आ जाएगा। अरे सुनो तुम जब तक है दादा के पास सोना, ठीक है? यही बोलने के लिए तुमको हम इधर लाया, समझा? अकेला नहीं छोड़ना बेटा। हाँ ठीक है। ओ विभा, विभा ऐसो ऐसो, ऐ तुम्हारा आंटी। ऐ
1: नमस्ते आंटी।
4: खुश रहो, खूब खुश रहो। ऐ बोशो बोशो बोशो,
2: कैमन भालो चातो?
1: वाह बहुत बहुत अच्छी चाय है आंटी, इतनी अच्छी चाय आज तक मैंने नहीं पी।
4: रोज एक कप चाय दादा को खिलाता है। ए चिष्ट खाओ। अपना हाथ का बनाया है, बाजार का नहीं है, समझा?
2: बहुत जिद करना होता है तब शाम का चाय साथ में खाता है।
4: दादा बाबा की भद्र लोग, दारुण, बहुत अच्छा है,
2: बहुत अच्छा।
4: जानता है ये बारिठो दादा दिलाया है।
1: पापा ने दिलाया है ये मकान?
2: है दादा दिलाया है बारिठो।
4: हम बहुत बोला है जो हमारे पास खाइए। कितना तो बोला बाबा,
1: तो फिर खाते क्यों नहीं?
2: देखो देखो, बोलते हैं जे साफ सफाई और कपड़ा खींचने के लिए तो किसी को रखना ही है।
1: जी,
2: आशा तो अच्छा लड़की है, और एक तो सेवा करने वाला आ जाता है, उसका भी काज चलता है, हैं? यही सब बात है।
4: और एक बात सुनो, जब तक इधर है रात का खाना हमारे साथ खाना है।
1: लेकिन आंटी।
2: अरे बाबा, हम दादा को बोल देगा, सब साथ में खाएंगे, ठीक?
4: हाँ, और अपना पसंद का कुछ खाना है ना तो बोल देना, हम बना देगा, एकदम बना देगा।
1: जी आंटी, चलता हूँ, नमस्ते। पापा पापा पापा पापा, दूध?
0: अरे तू, अरे मैं खुद ही ले लेता, तू मेरी आदत बिगाड़ देगा। ला, ओ गरम है, ज्यादा गरम दूध नहीं पीता मैं,
1: ठंडा कर देता हूँ पापा।
0: अच्छा, हो जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत कर। आंख लग गई आज, जल्दी सो जाता हूं ना। तेरा मन नहीं लगता होगा रात में ना अकेले?
1: आपका मन लग जाता है पापा रात में?
0: अरे मेरी रात 10 बजे खत्म हो जाती है, 10:15 बजे सो जाता हूं, सुबह 4:30 बजे जागता हूं, नींद आती है गहरी, रात बहुत आराम देती है।
1: सोने से पहले पापा, शाम के बाद दोपहर के 3-4 घंटे अकेलापन?
0: अरे हम अकेले कभी नहीं रहे बेटे, हमारे पास समय था, भरपूर समय। देख, जीवन का आनंद तभी है जब हाथ में समय हो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, समझा ना?
1: जी जी।
0: तुम लोगों के जीवन में समय रहा ही नहीं, ना अपने लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए, अकेले तुम हो बेटे, एकदम अकेले।
1: हम आपको अकेला नहीं रहने देंगे पापा।
0: अच्छा प्रथम, तुम्हें जल्दी लौट जाना चाहिए, निधि वहां अकेली है ना?
1: रायपुर गई है पापा।
0: साथ ले आते यहाँ?
1: आपको हमारे साथ चलना है पापा।
0: मैं नहीं जा सकता बेटे।
1: ओ, मकान हमसे ज्यादा जरूरी है पापा।
0: मकान? ये केवल मकान नहीं है प्रथम, मकान तो ईंट गारे से बना एक ढांचा होता है, पर इस ढांचे में एक घर, एक परिवार रहता है बेटा। मकान एक आसरा है, सुरक्षा है, पहचान है, मकान सुख है, सम्मान है।
1: आप भी तो गांव से आए थे पापा।
0: हाँ, तुम्हारे दादा नहीं आए, आते जाते रहे, गांव नहीं छोड़ा। मैंने भी आज तक गांव नहीं छोड़ा, गांव का सुख अभी भी हम सबको मिल रहा है, पुरानी जड़ों के साथ नई पहचान, नया घरौंदा, नई ठाव बनाई। ये ऐसी छांव है जो हर दुख तकलीफ में शरण देती है। इसे कभी मत छोड़ना बेटा।
1: नहीं छोड़ी है पापा मैंने अपनी पहचान, गांव, घरौंदा, कुछ भी नहीं छोड़ा।
0: तो फिर मुझे यहां से जाने को क्यों कहता है? पेड़ कितना भी हरा भरा हो, जड़ से कट जाए तो हरा भरा

0: नहीं रह सकता बेटे। डालियां चाहे जितनी दूर फैल जाए, जड़ से जुड़ी रहे, तभी वो हरी भरी रह सकती है। समझा? तभी वो हरी भरी रह सकती है।
1: अब आपको नींद आ रही है पापा, आप सोइए।
0: अच्छा जा, तू भी सो जा।
1: मैं यहीं सोऊंगा पापा, आपके पास। मैंने बेड लगा लिया है पापा।
0: अच्छा।

0: पापा पापा चाय उठिए पापा। पापा चाय।
1: अरे कितने बज गए। अरे इतनी देर सोया रहा आज।
0: चैन की नींद सोए हैं पापा आज, जाने कितने दिनों के बाद।
1: देख शायद दूध वाला है, आज दूध लाने नहीं गया ना।
0: दूध वाला नहीं, दूध पीने वाला आया है पापा।
1: दूध पीने वाला?
0: जी
1: कौन?
2: गुड मॉर्निंग पापा। पापा
1: अरे
2: पापा
1: अरे
2: पापा पापा
1: इशू
2: पापा
1: इशू
2: पापा
1: अरे इशू चाय गिर जाएगी बेटा।
2: पापा
1: अरे तू आया कब? सामान कहाँ है? और ये सब्जी भरा थैला?
2: सब्जी लाने गया था पापा, सामान कमरे में है।
0: सुबह ही आ गए थे और आप सोए थे पापा।
2: पापा एग्जाम एग्जाम सब कंप्लीट।
1: अच्छा
2: बस आराम ही आराम, मस्ती ही मस्ती।
1: अच्छा
2: खूब मस्ती करूंगा पापा आपके साथ।
0: और काम कौन करेगा?
2: अरे मस्ती के साथ काम करूंगा भैया। पापा पापा पापा आंख बंद कीजिए।
1: अच्छा
2: आंख बंद कीजिए ना पापा।
1: अरे अरे
2: हाँ
1: ले कर ली।
2: वन टू थ्री। हाँ अब खुली भाभी।
1: निधि बेटा, निधि बेटा।
3: प्रणाम पापा जी।
1: सौभाग्यशाली हो बेटा, तू तो मायके गई थी ना।
3: इन्होंने फोन किया तो चली आई।
0: मैंने नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं नहीं तो इशू ने किया होगा पापा।
2: सीधी सी बात है पापा, पापा अब अकेले नहीं रहेंगे आप।
0: बिल्कुल
3: हाँ पापा जी, मैं भी यहीं रहूंगी।
2: अरे भाई तो फिर भैया अकेले हो जाएंगे।
0: इशू
2: थोड़े दिनों के लिए चलेगा। वैसे पापा एक बात है।
1: क्या?
2: घर में एक नया मेहमान आने वाला है।
1: अरे कौन मेहमान?
2: ओहो पापा पापा
1: है?
2: आप दादा बनने वाले हैं। हाँ पापा आप दादा बन जाएंगे। पापा दादा बन जाएंगे। पापा दादा बन जाएंगे।
4: আরে বাবা এত হাল্লা গুল্লা কেন করছো তোমরা? কি হলো?
2: নমস্কার অঙ্কল।
4: এই এই এই দুষ্ট ছেলে ইসু, দুষ্ট।
2: আপনি মুঝে কেসে পছানা অঙ্কল?
4: আরে বাবা হনুমান মাফিক আর কোন নাচেগা কুদেগা হাল্লা গুল্লা করেগা
0: বন্দর।
1: রঞ্জন
4: হ্যাঁ,
1: ইয়ে বহু হে নিধি।
4: ও আচ্ছা।
3: প্রণাম অঙ্কল।
4: আরে সৌভাগ্যশালী থাকো, সৌভাগ্যশালী থাকো
0: অঙ্কল। আজ নাস্তা হামারে সাথ করেঙ্গে আপ লোগ।
3: নাস্তা বানানে কে লিয়ে মে হাজির হু। গুড মর্নিং দাদাজি।
1: গুড মর্নিং, গুড মর্নিং।
3: নমস্তে অঙ্কল।
4: নমস্তে, নমস্তে।
3: নমস্তে ভাই।
0: নমস্তে, নমস্তে
3: ভাই।
0: নিধি তোমারি ভাবি।
3: अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते,
5: नमस्ते
3: नमस्ते छोटे भाई।
2: नमस्ते।
3: ये लीजिए नाश्ता।
4: हाँ, किंतु जल खबर तो हम लेके आया है।
3: हाँ?
4: खाटी बंगाली जल खबर।

0: अच्छा
1: मुड़ी आलू चॉप चा और चिप्स।
0: नाश्ता आप लेकर आए अंकल?
1: अरे वो इशू आया है ना,
0: माने मेरी नौकरी
2: परमानेंट हो गई। निधि बेटा ये आशा है।
3: अंकल अंकल नाश्ता कहाँ है?
4: ए तो ये लो, ये जो नाश्ता तोरी करके लाया है। लो।
0: अरे आंटी आप?
3: आंटी नमस्कार।
4: हाय नमस्कार। ईशु बाबा ना दुष्ट छेले।
1: अरे आए एटा ओर बहु निधि एजे।
4: कुरी बाबा की सुंदर
5: नाम आंटी।
4: हाँ सादा सुहागिंद को, सादा सुहागिंद सुंदर वो दारुण मिष्टी।
3: पापा पापा अब मेरी भी जल्दी शादी कर दीजिए।
4: अच्छा
3: नौकरी शौकरी करूंगा नहीं, अपना काम करूंगा। मुझे यही आपके पास रहना, शादी होगी तो दोनों यहाँ रहेंगे आपके पास, भाभी रहेंगी तो भैया अकेले हो जाएंगे ना।
5: मैं यहीं रहूंगी।
3: भैया छोड़ेंगे तब ना।
1: बदमाश।
4: की मिष्टी दुष्टु चेले शोर।
1: अरे दादा, अरे इसका लिए तो हम खाटी बांगली बो बनेगा।
4: एकदम बांगली बो, एकदम रसगुल्लार मत।
3: फिर तो हमको भी बंगाली सीखने होगा।
1: पापा पापा पापा पापा आप सुन रहे पापा पापा पापा हंस रहे हैं अंकल देखो ना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे नाटक, शीर्षक था घरौंदा खुशियों भरा। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओ, आप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा प्रस्तुत बांसुरी पर रागधानी में आलाप और जोड़ सुनेंगे।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा प्रस्तुत बांसुरी पर रागधानी में आलाप और जोड़ सुन रहे थे। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Paolini on centre court today. 9-seed Linda Noskova booked her place in her maiden Wimbledon semi-final with a 6-3, 7-5 win over Belgian's Elise Martins. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 540.45 बजे यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।